0: कुछ होता है राहुल तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक। Wake up with the sun and the sound of fun.
4: RM2
2: Radio Musty.

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: बिल्कुल, आप भी देख लीजिए आपसे मिलने कौन आई हैं। और हमने कल मिलने का वादा किया था, तो लो जी वादे के मुताबिक हम आज एक बार फिर से मिल रहे हैं ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती। सुबह के 5:07 हो चुके हैं। इट्स अ वंडरफुल वेंसडे मॉर्निंग एंड इट्स अ चिल्ड वेदर आउटसाइड एंड आई एम वेरी श्योर कि सेंट्रल प्लेटू में भी बहुत ही ठंड हो रही होगी। और दिन के दौरान तो इतनी ठंड महसूस नहीं होती है, लेकिन जो सुबह का वक्त होता है और शाम का वक्त होता है, इट्स रियली चिल्ड आउटसाइड। और ऐसे में अगर आप लोग सुबह सवेरे उठ चुके हैं, काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे होंगे, या फिर आप उठ चुके हैं किचन में खाना बनाने के लिए, बच्चे लोग स्कूल जाएंगे या फिर काम पर ही जाते हैं, उनका टिफ़िन तैयार करना है, हमारे हर एक जो महिलाएं हैं उनको हम बहुत ही प्यार से विश करेंगे बों को आज इन द किचन। सुबह सवेरे घर के कामकाज में लगे हुए रहते हैं आप लोग, फिर भी आप लोग मुस्कुराते रहते हैं दिन भर जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। बस आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, क्योंकि अगर आप कंप्लेन भी करेंगे ना तो कुछ चेंज होने वाला नहीं है। इसलिए एक स्माइल के साथ आप हर एक मुसीबत का सामना कर पाएंगे बहुत ही आसानी के साथ। सो चलिए दिव्या का साथ है अभी से लेकर सुबह के 7 तक ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती, जहां पर आपके मैसेजेस का इंतजार रहेगा ऑन 5499 1294। डू लेट अस नो कि आप किस तरीके से आप इस वेंसडे मॉर्निंग को स्पेंड कर रहे हैं। फिलहाल के लिए हमारी छोटी सी कोशिश है आपकी सुबह को और भी सुरीली बनाने के लिए और सुहानी बनाने के लिए।
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2
1: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: क्या बात है, इसको कहते हैं गाने जहां पर सुनने के बाद सुबह से वही मूड एकदम सेट हो ही जाता है। ये समा समा है ये प्यार का, इसमें कोई शक नहीं है। और इस प्यारा सा समा को और खूबसूरत बनाने के लिए हम लेकर आए हैं कुछ और खूबसूरत गीत आप लोगों के लिए। चलिए, यहाँ पर जयशन हरदयाल जी कनेक्टेड हैं हमारे साथ। शुभ बुधवार आपको भी, ओम श्री गणेशाय नमः। एंड यहाँ पर आप कहती हैं नमस्ते माय लवली दिव्या। साधना मुकेश जी कनेक्टेड फ्रॉम लालमाची, थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए। गुड मॉर्निंग, इफ़ यू लाइट अ लैम्प फॉर समबडी इट विल ऑल्सो ब्राइटन योर पाथ। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए। टोनी जी हमेशा पॉजिटिव मैसेजेस के साथ हाजिर हो ही जाते हैं। गुड मॉर्निंग रेडियो मस्ती टीम, प्लीज प्ले द नेक्स्ट सॉन्ग फॉर अब्दुल एंड सैरा बानू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। आपको भी, हैव अ ग्रेट गुड डे अहेड। वी ऑल्सो हैव ज्योति जी और शातु बनागस, नेक्स्ट गाना जाएगा फॉर आशनी रेखा सुरेखा मदब फैमिली। Hi Divya, good morning. I'm Premila of Plenty Papa. Nice selection. Next gana goes out for you. Aapke habhi hai Ranjit aur Shobadi ke naam bhi. I don't know agar itna hi message aaya hai ya fir kuch aur naam aapne add kiya hai, kyunki bas itna hi hame message mila hai. To chaliye isi ke sath hum badhenge kuch aur khoobsurat geeton ke sath. Subah savere aap kudrat ke is karishme ko zarur enjoy kijiyega. Ye nazara bas itna khoobsurat hota hai ki isme खो जाने का मन होता है। सो जस्ट ट्राई टू रोम अराउंड, टहलने निकल जाना अपने आंगन में ही, 5 मिनट के लिए ही सही, लेकिन आपको थोड़ा टाइम चाहिए खुद के लिए। और आप 5 मिनट निकाल के रखेंगे ना खुद के लिए, तो आप देखेंगे दिन भर आप कैसे एनर्जेटिक फील करते हैं। सो ट्राई इट एंड डू लेट अस नो कि आपके लिए ये एक्सपीरियंस कैसा रहा।
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2
1: Radio Musti.

0: Wake up with the sun and the sound of fun.
1: RM2
0: Radio Musty.

पहली नजर हो या फिर पहली सुबह. एंड चलिए यहाँ पर आप लोगों का साथ देने के लिए रेडियो मस्ती हमेशा तैयार है विद द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक. 5:38 ऑलरेडी कुछ ही देर में हम लेकर आ रहे हैं आपके डेली हॉरोस्कोप. स्टे राइट कनेक्टेड.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: वेल 5:45 हो चुके हैं, चलिए बढ़ते हैं आपके डेली होरोस्कोप की ओर। शुरुआत करेंगे एरीज के साथ। मेष राशि, पॉजिटिव जो माइंडसेट है आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से रखना है, क्योंकि पॉजिटिव माइंडसेट विल गिव यू अ पॉजिटिव लाइफ एंड पॉजिटिव रिजल्ट। अपना टारगेट हासिल करने के लिए आपको एक्टिव रहना बहुत ही ज़रूरी है, सफलता मिलेगी, कोई रुका हुआ मामला भी हल हो जाएगा। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें, लेन देन के मामलों पर कोई विवाद हो सकता है, इससे जितना हो सके आप बचकर रहिए। टॉरस वृषभ राशि, प्रॉपर्टी की खरीद और परुखत के लिए उत्तम समय है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई के मनोनुकूल परिणाम मिलेंगी। अत्यधिक जिम्मेदारियां रहेंगी, बच्चों का मार्गदर्शन करते हुए आप अपना जो बिजनेस है वो भी संभाल सकते हैं, आपको ज़रूर प्रॉफिट मिलने वाला है। जेमिनी मिथुन राशि, आज किसी विशेष कार्य में उचित सफलता मिलने वाली है। घर में मेहमानों की आवाजाही रहेगी, दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें, मान हानि होने की आशंका है। कैंसर कर्क राशि, लंबे समय से कहीं रुकी हुई जो पेमेंट है हासिल हो जाएगी। संतान पक्ष की ओर से कोई खुशखबरी मिलेगी, पुरानी नकारात्मक बातों को हावी ना होने दें, किसी भी काम में जल्दबाजी ना करें। लियो सिंह राशि, पिता या पिता समान किसी व्यक्ति का मार्गदर्शन मिलेगा, विदेश जाने में आ रही रुकावट दूर होगी और अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी का हस्तक्षेप ना होने दे, किसी के साथ मनमुटाव होने की आशंका है और जितना हो सके प्लीज़ बी वेरी पेशेंट और कोई मतभेद ना हो इसीलिए आप सोच समझकर ही बात करें। वर्गो कन्या राशि, आपकी तरक्की का कोई द्वार खुल रहा है, विद्यार्थियों को आशा के अनुरूप परिणाम मिलेंगे। अपनी व्यक्तिगत बातें किसी से भी शेयर ना करें, पैतृक संबंधी मामलों में विवाद बढ़ सकता है। लिब्रा तुला राशि, अपनी योजनाओं को कार्य रूप देने का अनुकूल समय है। संतान पक्ष की किसी उपलब्धि से मन प्रसन्न रहेगा, छोटी मोटी नकारात्मक बातों को नज़रअंदाज करें और माता पिता के मान सम्मान का पूरा पूरा ध्यान रखें। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, सम्मानित लोगों का सानिध्य मिलेगा, किसी मूल्यवान वस्तु की खरीदारी भी संभव है। पैसे के लेन देन संबंधी कोई गलती होने से नुकसान हो सकता है और अपने ऊपर अतिरिक्त जिम्मेदारियां जितना हो सके ना लें, क्योंकि आपको प्रेशर फील हो सकता है। सजिटेरियस धनुराशि, किसी व्यक्तिगत समस्या का आज समाधान मिलेगा, युवाओं को अपने करियर संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। कहीं भी वार्तालाप करते समय नकारात्मक शब्दों का प्रयोग ना करें और आज निवेश करना नुकसानदायक हो सकता है, सो ट्राई टू अवॉइड इन्वेस्टिंग समवेयर। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, किसी विशेष प्रयोजन को लेकर चल रहे प्रयास सफल रहेंगे, घर में नवीन वस्तुओं की खरीदारी भी संभव है। अपने बढ़ते खर्चों पर काबू रखें और अपनी योजनाएं किसी से भी शेयर ना करें। एक्वेरियस को भराशि, दिन भर ऊर्जा बनी रहेगी, लाभदायक संपर्क भी बनेंगे, किसी भी विपरीत परिस्थिति में धैर्य और शांति बनाए रखें, युवाओं को और अधिक मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। और आखिर में वी हैव पाइसेस, मीन राशि, आज अपनी सकारात्मक और संतुलित सोच द्वारा परेशानियों का हल निकाल लेंगे, कोई योजना भी साकार होगी और किसी भी गैर कानूनी गतिविधि से दूर रहें और मेहमानों के आगमन से कुछ कार्य रुक भी जाएंगे। सो ये था आपका डेली होरोस्कोप। हैव अ गुड गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।
0: योर डेली होरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती। Wake up with the sun and the sound of fun.
2: RM2
0: Radio Musti.

0: RM2 Radio Musti.
1: वेल फ्रेंड्स 5:54 ऑलरेडी एंड चलिए कुछ ही देर में हम बढ़ने जा रहे हैं 6 बजे के संक्षिप्त समाचारों की ओर. एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात इन द सेकेंड आवर ऑफ राइज एंड शाइन.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by McDonald's.
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
0: Radio Masti.
3: North. South.
0: 103.5.
3: East. West.
0: 96.4.
3: Center.
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
5: घड़ी मिलाते चलिए सुबह के ठीक 6 बजे हैं। आइए सुनते हैं सुबह का पहला फ्लैश न्यूज रजनी जी से। नमस्कार।
6: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं। पुराने व्यवसाय मंत्री सुदेश कालीचरण और पूर्व वित्त मंत्री रंगाराधन पेरियाची कल से हिरासत में। उन्हें फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की ओर से मैरिटाइम मर्सेंटाइल इंटरनेशनल कंपनी की ओर से 2023 में ईंधन खरीदने का एक कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने से संबंधित सवालों के जवाब देने के लिए बुलाया गया था। इन दोनों ही पुरुषों को आज बुधवार को भ्रष्टाचार के अस्थायी आरोप के चलते अदालत में पेश किया जाएगा। दोनों ही पूर्व मंत्रियों पर पब्लिक ऑफिशियल यूजिंग ऑफिस फॉर ग्रेटिफिकेशन फॉर अनदर पर्सन के अस्थाई आरोप। आज बुधवार 17 जून से जल वितरण संबंधी समय सारिणी में बदलाव। माओवाकवा की ओर से जिन इलाकों में पानी मुहैया किया जाता है अब से यहां

0: पर दिन में 5 से 6 घंटे तक पानी उपलब्ध संबंधित इलाके वाक्वा क्यूपिप कैट्रोबोन बोबा सेंट रोसिल मोका सेंपियर और रिवियनो जिले के एक भाग में वाटर रिसोर्सेज कमीशन के निदेशक ने लोगों से पानी जाया न करने और जिम्मेदाराना तरीके से जल का उपयोग करने की मांग की। इन पिछले सप्ताहों के दौरान तापमान में बदलाव के चलते देश में स्वास्थ्य संबंधी इन्फेक्शन के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज। सैनिटरी अधिकारी इस वृद्धि से चिंतित हो चले। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से डॉक्टर फाजिल कोदाबाकस ने कहा कि अभी कई वायरस मौजूद जिसके मद्देनजर ऐसी स्थिति बनी हुई है। विदेश समाचारों में फ्रांस के एवियन शहर में G7 बैठक, आज भारत अमेरिका के बीच होगी द्विपक्षीय बैठक। कैलिफोर्निया के जंगलों में आग, 2000 एकड़ से अधिक का इलाका चपेट में। भारत में मौसम का महा अलर्ट, दिल्ली यूपी समेत 21 राज्यों में भारी बारिश आंधी की चेतावनी, पहाड़ों पर भूस्खलन का खतरा। विश्व फुटबॉल कप वर्ल्ड कप के अंतर्गत खेले गए मैच में अभी तक हाफ टाइम पर अर्जेंटीना अल्जीरिया को 1-0 से हरा रहा है। उधर नॉर्वे ने ईरान को 4-1 से पराजित किया। फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हराकर जीत हासिल की। और फुटबॉल के ही क्षेत्र में किलियान एम्बापे ने फ्रांस में इतिहास रचा। फ्रांस के ऑल टाइम टॉप स्कोरर बने ओलिविये जिरो और जस्ट फोंटेन से भी आगे निकल पड़े। संक्षिप्त समाचार यहीं पर समाप्त हुए। आपने ध्यान दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। कुछ ही समय में मौसम का हाल।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: कमजोर दबाव वाली हवा के साथ जो बादल जुड़े हुए हैं वे हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान लगाया जाता है कि बादल घिरे रहेंगे और रह रहकर बारिश होती रहेगी, मुख्य रूप से देश के पूर्वी इलाके, दक्षिणी इलाके और सेंट्रल प्लाटू पर। दक्षिण पूर्व की ओर से करीब 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिनके झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के उस पार समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिम में 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में तथा पश्चिमी एवं दक्षिणी लगूनों में न जाने की सलाह दी जाती है। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम तापमान 17 और 19 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम 23 एवं 25 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 23 एवं 25 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम तापमान 27 एवं 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। सुबह 6:43 पर सूर्योदय, जबकि शाम 5:38 पर सूर्यास्त। धन्यवाद, नमस्कार।
2: Your weather forecast on RM2
3: Radio Musti. Wake up with the sun and the sound of fun.
2: RM2
3: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: वैसे क्या खूब कहा है हमारे बुजुर्गों ने कि कुछ खोना है तो कुछ पाना भी है, और कुछ खोने के लिए आपको कुछ पाना तो ज़रूर है. इसीलिए ट्राई टू सी अ पॉजिटिव साइड इन ईच एंड एवरी सिचुएशन. अगर आप नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करेंगे तो ज़िंदगी और भी आसान हो जाएगी. वेल सुबह के 6:09 हो चुके हैं. विशिंग यू ऑल अ लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. कैसे हैं आप लोग? सुप्रभात एक बार फिर से टू ऑल दोस जो अभी उनकी नींद खुल रही है और बस अंगड़ाइयाँ लेते लेते सोच रहे होंगे कि हाई ऑलरेडी वेंसडे एंड इस मिड वीक में हम भी थोड़ी मस्ती के लिए लेकर आए हैं कुछ खूबसूरत गाने. एंड चलिए दो दिन और सही और इसके बाद खुशी के दो पल नज़दीक आ ही रहे हैं जिसका नाम है सैटरडे और संडे. चलिए यहाँ पर आपकी मैसेजेस हम तक ज़रूर पहुँच रहे हैं. वेरी गुड मॉर्निंग दिव्या. गुड मॉर्निंग जी, आपका नाम क्या है? आपने बताया ही नहीं. ओके कविता जी साथ दे रही है. कविता जी थैंक यू सो मच. यहाँ पर आप कहती हैं नमस्ते दिव्या जी, ओम श्री गणेशाय नमः. एंड आप डेडिकेट करना चाहती हैं अगला गाना उन तमाम लोगों के लिए जो आपको जानती हैं. और आप हैं सुया बिहारी ऑफ कुंगुमा, थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए. एज यूजुअल वी हैव चित्रकूट वाले दीपक से, मिस्टर किशन राम भरोसे, एंड हैव अ ब्लेस्ड डे एज वेल. और नेक्स्ट गाना गोज आउट फॉर इंदिरा, रेशमा, विमल, अंजू ऑफ मोदाई ब्लॉन्श. एंड यहाँ पर आप कहती हैं नमस्ते दिव्या, वेरी गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग जी. सरिता जी आप हैं गुडलैंड से, आपको भी हम विश करेंगे हैव अ नाइस डे अहेड. यहाँ पर काफ़ी आपके मैसेजेस हम तक पहुँच रहे हैं. हेलो दिव्या, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक. अनुराधा, रूमा जोगी जी कनेक्टेड हैं फ्रॉम गुडलैंड. आज आपकी बेटी का जन्मदिन है. हैप्पी बर्थडे टू अनन्या, विशेज कमिंग फ्रॉम रूमा जोगी फैमिली

0: और राम लोकन फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत सारा प्यार, बहुत सारी शुभकामनाएं। प्रणाम दिव्या, जय श्री गणेश आय नमः। नेक्स्ट कना गुज आउट आपकी बहन के लिए, आपके परिवारों के लिए एंड ऑल योर फ्रेंड्स फ्रॉम एसएसएस कोच मिलती है फ्रॉम मीला राम दी कॉलम मोताई ब्लॉश। एंड वी हैव सोनम भोला कनेक्टेड विद अस। आप कहती हैं कि आइए बाहर को हम बांट लें। यस, हम जितना किसी को हंसाते हैं, खुशी देते हैं, हमारे लिए ही अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल सोनम, साथ देने के लिए थैंक यू एंड आई जस्ट होप दैट यू आर एंजॉइंग ईच एंड एवरी गाना। हाई गुड मॉर्निंग, वॉन्ट टू विश बेटा ऋतिक मोहन अ वेरी हैप्पी बर्थडे। बेस्ट विशेज कमिंग फ्रॉम मामा बबीता, पापा सुनील, दीदी काजल, जीजा जी हैं अश्विन और ऋतिक को हमारी तरफ से भी बहुत बहुत सारा प्यार। टू ऑल दोज सेलिब्रेटिंग द बर्थडे टुडे, आपको हमारी तरफ से मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे।
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
2: RM2
1: Radio Musty.

0: Wake up with the sun and the sound of fun.
1: RM2
0: Radio Musti.
2: वेल फ्रेंड्स, अच्छे बजकर 23 मिनट हो चुके हैं एंड चलिए इसी गाने के साथ हम बढ़ने जा रहे हैं सारे अच्छे बजे के समाचार बुलेटिन की ओर। वक्त ने इजाजत दी तो हमारी और आपकी एक बार फिर से मुलाकात होगी, वरना विल बी हैविंग वेदिता जो 7 बजे आप लोगों के लिए लेकर आएगी मॉर्निंग बीट। सो स्टे वाइड कनेक्टेड।

सुबह के 6:30 बज चुके हैं। पेश है पूरा समाचार बुलेटिन। सुर्खियां इस प्रकार हैं। पुराने व्यवसाय मंत्री सुदेश कालीचरण और पूर्व वित्त मंत्री रंगानाथन पांडे आज

0: टिकर से हिरासत में उन्हें फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की ओर से मैरिटाइम मर्सेंटाइल इंटरनेशनल कंपनी की ओर से 2023 में ईंधन खरीदने का एक कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने से संबंधित सवालों के जवाब देने के लिए बुलाया गया था। इन दोनों ही पुरुषों को आज बुधवार को भ्रष्टाचार के अस्थायी आरोप के चलते अदालत में पेश किया जाएगा। दोनों ही पूर्व मंत्रियों पर पब्लिक ऑफिशियल यूजिंग ऑफिस फॉर ग्रेटिफिकेशन फॉर अनदर पर्सन के अस्थायी आरोप। आज बुधवार 17 जून से जल वितरण संबंधी समय सारणी में बदलाव। महोबाका की ओर से जिन इलाकों में पानी मुहैया किया जाता है अब से यहां पर दिन में 5 से 6 घंटे तक पानी उपलब्ध। संबंधित इलाके हैं वाकवा क्यूपी कैट्रोबोन बोबासर रोजिल मोका सैपियर और रिवियनो जिले के एक भाग में। वाटर रिसोर्सेज कमीशन के निदेशक ने लोगों से पानी जाया न करने और जिम्मेदाराना तरीके से जल का उपयोग करने की मांग की। इन पिछले सप्ताहों के दौरान तापमान में बदलाव के चलते देश में स्वास्थ्य संबंधी इन्फेक्शन के मामलों में बढ़ोतरी। सैनिटरी अधिकारी इस वृद्धि से चिंतित हो चले। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया कि अभी कई वायरस मौजूद जिसके मद्देनजर ऐसी स्थिति बनी हुई है। विदेशी समाचारों में फ्रांस के इवियन शहर में G7 बैठक। आज भारत अमेरिका के बीच होगी द्विपक्षीय बैठक। कैलिफोर्निया के जंगलों में आग। 2000 एकड़ से अधिक का इलाका चपेट में। भारत में मौसम का महा अलर्ट। दिल्ली यूपी समेत 21 राज्यों में भारी बारिश आंधी की चेतावनी। पहाड़ों पर भूस्खलन का खतरा। और विश्व फुटबॉल कप के अंतर्गत खेले जा रहे मैच में अर्जेंटीना और अल्जीरिया 1-0 से हरा रहा था अर्जेंटीना अल्जीरिया को हाफ टाइम पर। अपडेट्स इस बुलेटिन में। नॉर्वे ने इराक को 4-1 से पराजित किया। उधर फ्रांस ने सेनेगाल को 3-1 से हराकर जीत हासिल की। और फुटबॉल के ही क्षेत्र में किलियान एम्बापे ने फ्रांस में इतिहास रचा। फ्रांस के ऑल टाइम टॉप स्कोरर बने ओलिविये जिरू और जस्ट फोंटेन से भी आगे निकल पड़े। सत्रह जून 2026 इस प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और अब समाचार विस्तार से। पुराने व्यवसाय मंत्री सुदेश कालीचरण को कल रात हिरासत में लिया गया। उसे फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन को कल सुबह मैरिटाइम मर्सेंटाइल इंटरनेशनल कंपनी की ओर से 2023 में ईंधन खरीदने के एक कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने से संबंधित सवालों के जवाब देने के लिए बुलाया गया था। उन्होंने संबंधित कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने के फैसले में भाग लिए होंगे। इसके अलावा रंगानाथन पैदयाची को भी कल रात 8:15 इसी जाँच के मामले में गिरफ्तार किया गया। जाँच कर्ताओं के मुताबिक संदिग्ध लोगों के मोबाइल फोन्स के बारीकी से मूल्यांकन की बदौलत इस मामले में जांच में प्रगति हो पाई है। इन दोनों ही पुरुषों को आज बुधवार के दिन भ्रष्टाचार के अस्थाई आरोप के चलते अदालत में पेश किया जाएगा। दोनों ही पूर्व मंत्रियों का प्रतिनिधित्व वकील रऊफ गुलबुल, रोशन संतोखी और नीलकंठ डलू कर रहे हैं। और चलिए अभी वकीलों की प्रतिक्रिया सुनते हैं।
1: पूर्व वित्त मंत्री रंगानाथन पैदयाची ने इस मामले पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, जबकि कॉन्ट्रैक्ट आवंटन के समय व्यापार मंत्री रहे सुदेश कालीचरण का कहना है कि उन्होंने कोई गलत कार्य नहीं किया है।
2: Comme petit ministre commerce, alors depuis ce matin, nous là, l'enquête peut continuer. L'enquête qui est la plus
3: difficile. Est-ce qu'il y a une question qu'on reproche ou par rapport
2: Non, pas du tout.
0: और ये कल दिन के दौरान ऐसा हुआ था। आपको ये भी बता दें कि मैरिटाइम एंड मर्सेंटाइल इंटरनेशनल की निदेशिका कारिना नेसिस तथा एनटीसी के पूर्व महानिदेशक राजेश सवान सिंह को पिछले साल इस मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। सुर्खियों में हम इसका उल्लेख कर रहे थे। टापू का प्रमुख जलाशय माओवाकवा 43.9% भरा है। वाटर रिसोर्सेज कमीशन ने कल प्रकाशित अपने हालिया बुलेटिन में इस बात की जानकारी दी। दूसरी तरफ 7 जलाशय औसतन 62.8% भरे हुए हैं। स्थिति चिंताजनक बताई जाती है। आज बुधवार 17 जून से जल वितरण संबंधी समय सारणी बदल रही है। माओवाकवा की ओर से जिन इलाकों में पानी मुहैया किया जाता है अब से यहां पर दिन में 5 से 6 घंटे तक पानी उपलब्ध। संबंधित इलाके इस प्रकार हैं: वाकवा क्यूपिप कैट्रोबोन बोबासे रोजिल मोका सैपिया और रिवियनो जिले के एक भाग में। वाटर रिसोर्सेज कमीशन के।

0: निदेशक लोमेश ढगू के अनुसार बहुत कम बारिश हुई है। जनवरी से मार्च महीने के बीच 48% वर्षा हुई। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से इस बात का ऐलान किया गया कि जून और जुलाई के महीनों में कम ही बारिश होती है। लोगों से पानी जाया न करने और जिम्मेदाराना तरीके से जल का उपयोग करने की मांग की जाती है। लोमेश ढगू ने हमारी सहयोगी पत्रकार राजमीला सीतामणि को संबंधित जानकारियां दी, उन्हें सुनते हैं। विवरण सुमेरा अकबर अली।
1: Nous finissons que la situation comment peut évoluer si la si la condition climatique n'est pas
2: हमने स्थिति की संभावनाओं पर गौर किया। अगर माहौलियाती हालत बेहतर ना बने, यानी अगर बारिश ना हो, हम देख सकते हैं कि आने वाले महीनों में जलाशयों की स्थिति बहुत खराब होगी। हम सितंबर अक्टूबर की बात कर रहे हैं। ऐसी हालत से बचने के लिए हम ये कदम उठा रहे हैं। अहम है कि हम सब ऐसी मुश्किल घड़ी में एक दूसरे को सहयोग दें।
0: इन पिछले सप्ताहों के दौरान तापमान में बदलाव नोट किए गए हैं, जिसके चलते देश में स्वास्थ्य संबंधी इन्फेक्शंस के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले 8 और 14 जून के बीच स्वास्थ्य संबंधी 5,027 मामले दर्ज किए गए, जबकि इससे पहले हफ्ते में इसकी तादाद 4,424 थी। सैनिटरी अधिकारी इस वृद्धि से चिंतित हो चले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की स्वास्थ्य सेवा के अंतरिम निदेशक डॉक्टर फाजिल कोदाबाकस के मुताबिक अभी कई वायरस मौजूद हैं, जैसे कि सर्दी जुकाम, कोविड-19 और पारा इन्फ्लुएंजा। डॉक्टर फाजिल कोदाबाकस ने निर्मा नारायण रेड्डी को अधिक जानकारियां दी। विवरण सुमेरा अकबर अली।
3: Donc les chiffres sont du 8 juin au 14 juin, nous venons enregistrer 5027 cas.
2: 8 जून से 14 जून के बीच हमने 5,827 मामले दर्ज किए, जबकि इससे पहले वाले हफ्ते के दौरान 4,424 मामले दर्ज हुए थे और इससे पहले भी 8,500 से जायद मामले पाए गए थे। सर्दी जुकाम के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। ठंड और खुश्क माहौल में वायरस का ज्यादा फैलाव होता है। सर्दी जुकाम के अलावा कोविड-19 और दूसरे वायरस हैं। लोगों को सावधानियां बरतने की जरूरत है, खासतौर पर बच्चों को, बुजुर्गों को, बीमारों को जिनको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, दिल की बीमारी या अस्थमा है, उन्हें संगीन ब्रोंकाइटिस या निमोनिया होने का ज्यादा खतरा है।
3: Asthma, personnes plus à risque pour des complications telles que des complications bronchiques, pneumonie, donc des cas très très sévères dans certains cas.
0: सोशल नेटवर्क की ओर से इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन तथा ज्ञान के क्षेत्र में बहुत संभावनाएं प्रदान की जाती हैं। फिर भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्री अविनाश राम दोहल के अनुसार कुछ सामाजिक बुराइयां भी जुड़े हुए हो सकती हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्व याद दिलाते हुए मंत्री ने बताया कि सोशल नेटवर्क की मदद पर हर एक तरह के विचार एक अधिक व्यापक परामर्श किया जाना चाहिए। इसके अलावा मंत्री ने इस बात पर स्पष्टीकरण दिया कि सोशल नेटवर्क पर मनाही का सवाल नहीं उठता है, ना ही किसी निर्धारित उम्र के लोगों पर पहुंच में देरी लाने में। फिर भी उन्होंने प्लेटफॉर्म के कंटेंट्स की जांच करने के महत्व पर जोर दिया। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो पढ़ाई, अनुसंधान और स्कूली कार्यों के लिए मूल्यवान औजार है। मंत्री अविनाश राम दोहल को सुनते हैं, जिनसे बात की निर्मा नारायण रेड्डी ने। विवरण एक बार फिर से सुमेरा अकबर अली।
4: Nous trouvons qu'il y a pas mal de bons pays qui finissent par prendre la direction, c'est-à-dire nous avons l'Australie, la France, maintenant l'Angleterre.
2: बहुत से देशों ने कदम उठा लिया है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन। बच्चों और आने वाली नस्लों की हिफाजत करने के लिए ये एक अच्छा फैसला है। मॉरिशस में हमने अनेक संस्थाओं के साथ सलाह मशवरे किए। उनकी सलाह है कि ये कदम अच्छा है। कुछ लोगों का कहना है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का आदर करना चाहिए। बेशक दीगर राय लेकर ही आगे बढ़ेंगे। इस कानून को अमल में लाने के लिए बहुत से देशों को मुश्किल भी हुई है। टेक्निकी हल जरूरी है।
0: इससे पूर्व हम इसकी चर्चा कर रहे थे कि पुराने व्यवसाय मंत्री सुदेश कालीचंद को कल रात हिरासत में लिया गया। उसे फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन को कल सुबह मैरिटाइम मर्सेंटाइल इंटरनेशनल कंपनी की ओर से 2023 में ईंधन खरीदने के कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने से संबंधित सवालों के जवाब देने के लिए

0: बुलाया गया था। और इसके अलावा रंगानाथन पडियाचे को भी कल रात 8:15 इसी जांच के मामले में गिरफ्तार किया गया। जांचकर्ताओं के मुताबिक संदिग्ध लोगों के मोबाइल फोन्स के बारीकी से मूल्यांकन किए जाने की बदौलत इस मामले में जांच में प्रगति हो पाई है। दोनों ही पूर्व मंत्रियों का प्रतिनिधित्व वकील राउफ गुलबुल, रोशन संतोखी और नीलकंत डल्लू कर रहे हैं। चले वकील राउफ गुलबुल और नीलकंत डल्लू को सुनते हैं।
1: Question que Fidena en relation à un contrat de White Oil qui n'a donné pas la STC en 2023. Je ne veux pas dire plus.
2: Et au client, il peut dire
1: non, on ne va pas dire non. Mais nous avons un processus de répondre à question. Question-réponse, question-réponse.
3: Depuis ce matin, l'IPEDON se fait chaud. L'enquête est terminée. Nous finissons d'être informés par la police qui l'IPEDON. Être placé sous détention policière jusqu'à demain matin à côté pour être traduit en cours de pour lui sud. C'est la STC qui finit à allouer le contrat et non pas le ministre.
4: Pas le ministre.
3: D'alors.
4: C'est the board of STC qui take the decision. Il prend décision, ce qui m'occupe à comprendre, ce qui instruction qui m'est là. C'est dans l'intérêt pays.
0: समाचारों को आगे बढ़ाते हैं। कल रात नया चांद नजर आया और आज से मुसलमान कौम का नया इस्लामी साल शुरू हो गया है। मुहर्रम का 10वां दिन बड़ी अहमियत रखता है। इस दौरान करबला का वाकया पेश आया था। हज़रत मोहम्मद के नवासे हज़रत इमाम हुसैन के हक के लिए एक अजीम कुर्बानी दी थी। ये 1448 हिजरी है। सऊदी अरब में कल पहली तारीख थी और इस मौके पर काबा शरीफ का किस्वा बदला गया। एक खास रिपोर्ट सुमेरा अकबरेली के साथ।
5: इस्लामी तकवीम यानी कैलेंडर में 354 या 355 दिन होते हैं और इसका आगाज मुहर्रम महीने से होता है। आज पहली तारीख से बाकायदा नए इस्लामी साल की शुरुआत हुई है। मजहब इस्लाम में मुहर्रम सबसे अहम माहों में शुमार है और इसे बहुत मुकद्दस माना जाता है। इस महीने की सबसे अहम तारीख 10 मुहर्रम यानी यौम आशूरा है। इस दिन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु और उनके वफादार साथियों ने करबला के मैदान में हक और सच्चाई के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी थी। ये 1448 का साल है। हस्ब दस्तूर नई हिजरे के मौके पर मक्के की बड़ी मस्जिद में काबे का कपड़ा यानी किस्वा को बदला जाता है। मुहर्रम के महीने में कई अहम इस्लामी वाकयात से मंसूब रिवायतें मिलती हैं। सबसे मशहूर वाकया करबला का है, लेकिन रिवायतों के मुताबिक इस महीने में और भी अहम वाकयात हुए, जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को तूफ़ान के बाद बसलामती किनारा मिला था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से निजात मिली थी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को फिरौन से निजात मिली और फिरौन गरक हुआ था, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से निजात पाकर बाहर आए और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी से शिफा मिली। मुहर्रम हमें सब्र, हिम्मत, इंसाफ और दीन का पैगाम देता है। मुसलमान इस महीने में इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की कुर्बानी को याद करते हैं और उनकी तालीमात से रहनुमाई हासिल करते हैं। आशूरा का दिन इबादत, दुआ और नेक आमाल करने की भी अहमियत रखता है। आज रात से मुल्क की कई मस्जिदों में मजलिस मुनक़िद किए जाएंगे, तकरीरें की जाएंगी और जिक्र इलाही के अलावा तिलावत कुरान भी की जाएगी। पूरे मुसलमान कौम को नया इस्लामी साल 1448 हिजरी मुबारक हो।
0: सिरहा लियो में आयोजित इंटरनेशनल केटरिंग कप के फाइनल में हमारे तीन मॉरिशन शेफ हमारे चौरंगे को और ऊंचा उठाने की कोशिश में। जी हां, अगले साल 2027 के जनवरी महीने में फ्रांस में इसका आयोजन होगा। तीन शेफ प्रवेश चतुरी, जूलियो इमानुएल गाबो और जॉन अंतोन रिकॉर्डो कातों आज वे स्वदेश लौट रहे हैं। रात के 8:00 मडागास्कर में वे इस फाइनल के लिए क्वालिफाई हो गए। मॉरिशस शेफ एसोसिएशन की ओर से उनके आगमन पर उनका स्वागत किया जाएगा। इसके अध्यक्ष माये वैनकूपर ने समझाया कि मडागास्कर और मॉरिशस इंटरनेशनल केटरिंग कप के अफ्रीकी सिलेक्शन के दौरान क्वालिफाई हो पाए हैं। पिछले 13 और 14 जून को अंतनारिवो में इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। विदेशी समाचारों में फ्रांस के शहर एवियों में G60 शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड

डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल मंगलवार को एक संक्षिप्त मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया, फिर थोड़ी देर बातचीत की। सूत्रों के अनुसार ये मुलाकात अनौपचारिक रही, जबकि आज देर शाम दोनों नेताओं के बीच औपचारिक द्विपक्षीय बैठक प्रस्तावित है। फरवरी 2025 में वाशिंगटन में हुई पिछली बैठक के लगभग 16 महीने बाद इनकी ये पहली आमने सामने की मुलाकात है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आज दिल्ली, यूपी, बिहार और राजस्थान समेत देश के 21 राज्यों में भारी बारिश, आंधी तूफान और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और आगे बढ़ते मानसून के प्रभाव से उत्तर व मध्य भारत के मौसम में ये बड़ा बदलाव आया, जिसके कारण कई इलाकों में 60 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की पूरी संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी। पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में धूल भरी आंधी के साथ झमझमा बारिश का अलर्ट है। कई क्षेत्रों में आकाशीय बिजली वज्रपात गिरने की भी चेतावनी दी गई है। साधन कैलिफोर्निया में लगी आग, जंगल की आग लगातार बढ़ रही है। तेजी से फैल रही आग ने रिवरसाइड काउंटी में 2000 एकड़ से अधिक क्षेत्र को झुलसा दिया है। अधिकारियों के अनुसार आग की लपटें तेज हवाओं के कारण तेजी से फैल रही है, जिससे दमकल विभाग की टीमें पूरे क्षेत्र में संघर्ष कर रही है। आग वर्तमान में अनियंत्रित बताई जा रही है और इसमें कई संरचनाओं को खतरा है। स्थानीय निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए निकासी के आदेश जारी किए गए। कैलिफोर्निया फायर डिपार्टमेंट और अन्य एजेंसियां आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर और ग्राउंड टीमों के साथ लगातार काम कर रही है। और फुटबॉल के क्षेत्र में फ्रांस के युवा फुटबॉल खिलाड़ी किलियान एम्बापे बने दुनिया का नया लेजेंड। फीफा वर्ल्ड कप में उन्होंने अपना शानदार परफॉर्मेंस प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 जीतने के दावेदार फ्रांस ने अपने स्टार किलियान एम्बापे के रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन के दम पर सेनेगाल को 3-1 की धमाकेदार जीत दर्ज की है। और आपको ये भी बता दें कि विश्व फुटबॉल कप के अंतर्गत खेले गए मैच में अभी भी अर्जेंटीना और अल्जीरिया के बीच मैच चल रहा है। हाफ टाइम पर 1-0 से अर्जेंटीना की जीत हो रही थी, जबकि हालिया खबरों के अनुसार लियोनेल मेसी ने 3 गोल बना दिए हैं अब तक, यानी कि 3-0। नॉर्वे ने इराक को 4-1 से पराजित किया। उधर फ्रांस ने सेनेगाल को 3-1 से हरा कर जीत हासिल की। मौसम संबंधी जानकारियां कुछ इस प्रकार है। कमजोर दबाव वाली हवा के साथ जो बादल जुड़े हुए हैं वे हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान लगाया जाता है कि बादल घिरे रहेंगे और रहकर बारिश होती रहेगी, मुख्य रूप से देश के पूर्वी इलाके में, दक्षिणी इलाके पर और सेंट्रल प्लाटू पर। दक्षिण पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिनके झोंके कुछ इलाकों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के उस पार समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिम में 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगे। दूर समुद्र में तथा पश्चिमी एवं दक्षिणी लगूनों में न जाने की सलाह दी जाती है। तापमान, सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम तापमान 17 और 21 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम तापमान 23 और 25 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 23 और 25 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम तापमान 27 एवं 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। सुबह सूर्यास्त 6:43 पर, जबकि सुबह सूर्योदय 6:43 पर, जबकि सूर्यास्त शाम 5:38 पर।

0: मौसम संबंधी नई जानकारियों के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। आपने ध्यान दिया इसके लिए बहुत धन्यवाद। साथ ही हम धन्यवाद कहेंगे अपने तकनीकी सहयोगियों कादर और माचिन को। कुछ ही समय में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

इसके बाद दफनाने के लिए अवयध्य का कब्रस्तान फ्यूनरल टुडे एट 11:15 AM नंबर 13 बालगोबिनी स्ट्रीट रॉसिल में नंबर 13 बालगोबिनी स्ट्रीट रॉसिल में 81 साल की 81 ईयर्स ओल्ड की बीबी आइदा फोजिया मजारा मोबाकराबी जमाल खान बीबी आइदा फोजिया मजारा मुबारकराबी जमाल खान पैदाशी नाम नूदिर जो नेला नाम से भी जानी जाती थी का इंतकाल हो गया है। उनका जनाजा आज दिन के 12 बजे उनके मकान नंबर 13 बालगोबिनी स्ट्रीट रोजिल से उठाकर दफनाने के लिए सैमौतेका कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट नून। रॉयल रोड गॉन पैंतो पीमो में रॉयल रोड गॉन पैंतो पीमो में 85 साल की 85 ईयर्स ओल्ड की श्री इंद्रदेव परेश जो विजयता यो नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 12 बजे उनके घर रॉयल रोड गॉन पैंतो पीमो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गॉन पैंतो पीमो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे एट नोन। नंबर 53 फोकुआ गली क्यूपिप में 74 साल के 74 ईयर्स ओल्ड के श्री गौतम चरितर जो राजेश नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के सवा बारह बजे उनके घर नंबर 53 फोकुआ गली क्यूपिप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थॉमा मेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे एट 9:15 मोसेलमोसुना अलीब्रियों कास्टेल में 68 साल के 68 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती बिस्वंती गोकुल पैदाशी नाम ब्रिज मोहन जो पंडिता गोकुल नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के डेढ़ बजे उनके पति श्री रामानंद गोकुल के घर मोसेलमोसुना अलीब्रियों कास्टेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए अलीब्रियों कास्टेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे 1:30 PM एनएचडीसी ग्रांबोआ में 74 साल के 74 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती अफरोजा लुत्फन जो जुबेद नाम से भी जाने जाते थे का अंतकाल हो गया है। उनका जनाजा आज दिन के एक बजे उनके घर एनएचडीसी ग्रांबोआ से उठाकर दफनाने के लिए टोंबो मेबग का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। रुतबासे कैट्रोबोर्ड में 71 साल के 71 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती लक्ष्मी परयानन पैदाशी नाम गोइंदन जो राधा नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के दो बजे उनके घर रुतबासे कैट्रोबोर्ड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे एट 2 PM कतकारो ओकुले में 59 साल के 59 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती कुमारी सलोनी हनुन्योन पैदाशी नाम बुधन जो सलोनी नाम से भी जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह साढ़े नौ बजे उनके घर कथकाओ ओकुले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिकाहा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे 8:09 AM मोसेलमो रे बेले रिवेसेश में 79 साल के 79 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती तारामती मुखलाल पैदाशी नाम रामलोचन जो बिंदु नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे उनके बेटे श्री धनराज मुखलाल के घर मौसल महोय बेलेर वैसेश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लालूसी बिल्डिंग बेलेर वैसेश की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे एट 1 PM रॉयल रोड बोबासा में 65 साल के 65 ईयर्स ओल्ड के श्री हेमराज जोगू श्री हेमराज जोगू

0: कुक्कू जो बाबू कॉन्ट्रैक्टर नाम से भी जाने जाते थे और पहले नंबर 27 डॉक्टर पिपे स्ट्रीट बोबासा रहते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी लाशापेल औदौत एलियनसन रॉयल रोड बोबासे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कॉलेविये की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट क्वार्टर पास्ट नून। जंबो रोड शमे ग्रेनिये में ला ग्रोट के बगल में 77 साल के 77 ईयर्स ओल्ड के श्री सत्यानंद येरिया जो आत्मानंद नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे उनकी पत्नी श्रीमती सरस येरिया के घर जंबो रोड शमेग्रेनिये लागौत के बगल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोंगोपाल शमेग्रेनिये की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। शुक्रवार इन सभी परिवारों के साथ हमारी दिली हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: Wake up with the sun and the sound of fun.
1: RM2.
2: Radio Musty.

से आया है। नाम है लियोनेल मेसी। इस वर्ल्ड कप का पहला हैट्रिक और वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने के रिकॉर्ड की बराबरी अर्जेंटीना का लियोनेल मेसी। फुटबॉल का बादशाह अर्जेंटीना की जीत हुई 3-0 से अल्जीरिया के खिलाफ। मेसी मेसी मेसी, तीनों गोल मेसी की ओर से। अद्भुत, लाजवाब शब्द कम पर जाएंगे मेसी के लिए। इधर फ्रांस का ऑल टाइम लीडिंग गोल स्कोर बना किलियान एम्बापे। वर्ल्ड कप 2026 के अपने ओपनिंग मैच में ही एम्बापे ने 2 गोल स्कोर करके ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। एम्बापे के पास अब 58 गोल हैं। ये रिकॉर्ड पहले ओलिवर जिरू के पास था। फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हराया। सब कुछ सेकंड हाफ में हुआ। पहला गोल किलियान एम्बापे ने स्कोर किया, फिर बाकोला। इंजुरी टाइम के 5वें मिनट में एनजाए ने सेनेगल के लिए गोल स्कोर किया। केवल 1 मिनट बाद फिर से सेनेगल ने कहा बाप रे बाप, जब एम्बापे ने अपना डबल पूरा किया और फ्रांस के लिए सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने का रिकॉर्ड तोड़ा। फ्रांस का अगला मैच इराक के खिलाफ होगा 22 जून को, जबकि सेनेगल खेलेगा नॉर्वे के खिलाफ 1 दिन बाद। मैन ऑफ द मैच माइकल ओलीजे को दिया गया। फ्रांस में एम्बापे हैं तो नॉर्वे में अर्लिंग अलोन इराक की उम्मीदों को राख में बदल डाला एक शानदार डबल के साथ। इराक 1-4, अलोन का डबल, 1 गोल ओस्टिगार्ड का और 1 गोल ऑन गोल रहा। नॉर्वे के लिए अलोन 57 गोल स्कोर कर चुका है। ग्रुप जे में वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटीना की एंट्री हुई। अल्जीरिया के खिलाफ पहला गोल और कौन, द गोट लियोनेल मेसी। केवल 17 मिनट लगे मेसी को ताला खोलने में और वो भी एक लाजवाब गोल, अ स्टनर टू किक ऑफ द वर्ल्ड कप कैंपेन। आज के अन्य मैच सुबह 8 बजे ऑस्ट्रिया वर्सेस जॉर्डन, ये अर्जेंटीना वाला ग्रुप जे है। फिर रात के 8 बजे ग्रुप के की बारी, पोर्टुगल वर्सेस कोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की एंट्री। और मिडनाइट किक ऑफ ग्रुप एल में इंग्लैंड वर्सेस क्रोएशिया। कल सुबह 3 बजे ग्रुप एल में ही गाना का मुकाबला पनामा से होगा और 6 बजे उज्बेकिस्तान कोलंबिया। मतलब कल सुबह ग्रुप स्टेज के फर्स्ट राउंड के मैच पूरे हो जाएंगे और कल से ही बैक टू ग्रुप ए दूसरे राउंड के मैच खेले जाएंगे। रात के 8 बजे चेक रिपब्लिक वर्सेस साउथ अफ्रीका और 11 बजे स्विट्जरलैंड बोस्निया। इंग्लैंड का वर्ल्ड कप कैंपेन अभी शुरू नहीं हुआ पर इंजुरी की समस्या सामने है। न्यूकासल यूनाइटेड का फुलबैक चिनो लिवरामेंटो कॉल्फ इंजुरी के कारण वर्ल्ड कप में नहीं खेल पाएगा। उसके स्थान पर चेल्सी से ट्रेवो चालोबा को बुलाया गया है। ट्रांसफर न्यूज, टोटनहम हॉटस्पर में पुनः निर्माण कार्य यानी रिबिल्डिंग जारी है। ब्राइटन से डिफेंडर पॉल वान हेके को साइन करने के लिए मंजूरी मिल गई है। ट्रांसफर फी 52 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग, 52 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग। इधर एसी मिलान का नया बॉस बना रूबेन अमोरिम। मैनचेस्टर यूनाइटेड से निकाले जाने के बाद एसी मिलान में वो गया जहां पर मासिमिलियानो अलेग्री था, पर चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन न मिलने पर उसे निकाल दिया गया। इधर न्यूकासल यूनाइटेड के मिडफील्डर सांड्रो टोनाली ट्रांसफर बाजार का गरम माल बन गया है। आर्सेनल, टोटनहम हॉटस्पर, मैनचेस्टर सिटी, यहां तक कि लिवरपूल सबके सब उसके पीछे हैं। पर न्यूकासल यूनाइटेड अपने हीरे को सस्ते में नहीं जाने देगा, सेस्मिक ऑफर होना चाहिए। योजे मोरिनो मैनचेस्टर सिटी के डिफेंडर रूबेन जार्ज के लिए 80 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग स्वूप के लिए तैयारी कर रहा है। और लगता है बार्सिलोना राशफोर्ड को परमानेंटली साइन नहीं करेगा। यूनाइटेड और बासा के बीच 26 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग का बाय ऑप्शन कल एक्सपायर हुआ। वर्ल्ड कप के बाद राशफोर्ड यूनाइटेड में वापस आएगा। और क्रिकेट में टीम इंडिया और अफगानिस्तान के बीच दूसरा वनडे मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। 3 मैचों की वनडे सीरीज। इंडिया की सीनियर टीम अभी 1-0 से आगे है। और महिला T20 वर्ल्ड कप में कल इंग्लैंड ने आयरलैंड को हराया, श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को चौंकाया और आज भारतीय महिला टीम
India Women versus Netherlands Women. So that's it, the latest from the sports world. चलते चलते प्रमुख खबर आपको फिर से बता दें. गोल स्कोर करने के रिकॉर्ड एक के बाद एक टूट रहे हैं, चाहे

0: एम्बापे की ओर से हो जो फ्रांस का लीडिंग गोल स्कोरर बन गया, या फिर लियोनेल मेसी की ओर से हो जो वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने वाला हो गया है, रिकॉर्ड की बराबरी की मिरोस्लाव क्लोजे के पास ये गोल है। अभी वर्ल्ड कप बाकी है तो ये रिकॉर्ड खतरे में है। तो यहां पर पूरा करते हैं, I'll catch you at 8:30 for the World Cup highlights. Till then, enjoy the music on Radio Masti. Bye bye.
1: Thank you so much, Arvind. मिलते हैं second hour में.
2: This magazine was brought to you by Quality Decor, the floor expert. RM2 Radio Masti.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: वैसे गाना तो था फराटा, लेकिन मॉर्निंग में इस गाने को सुनने के बाद मुंह में तो आलू के पराठे का स्वाद आ गया भाई। चलो आप लोग भी अगर अपना ब्रेकफास्ट ले रहे होंगे तो एंजॉय करें गर्मा गर्म चाय कॉफी के साथ, वरना बाकी म्यूजिक हमारे साथ है। रितेश जी कहते हैं कोई तड़का वड़का लगा दो भाई। लगाएंगे 8 बजे के समाचारों के बाद लगाएंगे, फिर उसके बाद आप भी झूमिएगा हमारे साथ। वैसे गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। चलिए जी, इस अगले गाने के साथ बढ़ते हैं भोजपुरी समाचारों की ओर। मिलते हैं आपसे आपके अपने मॉर्निंग बीट में थोड़ी ही देर में।
0: Morning Beat.
1: James. RM2 Radio Musti in the mix.
3: These are ready.
4: She likes to drop it low, man.

पुराना व्यवसाय मंत्री सुदेश कालीचंद के काल रात हिरासत में लेवल कल ओकरा फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन के खालफजीरी मैरिटाइम सेंट्रल इंटरनेशनल कंपनी के देने से 2023 में ईंधन किने के एगो कॉन्ट्रैक्ट देवे से संबंधित सवाल के जवाब दे खातिर बुलावल कर रहल उनका संबंधित कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने के फैसले में भाग लेवे के समझल जतबा। एक अलावा पुराना वित्त मंत्री रंगनाथन पैदयाची के भी काल रात 8:15 बजे हाइये जांच के मामला में गिरफ्तार करल गल। जाँचकर्ता लोग के अनुसार संदिग्ध आदमी के मोबाइल फोन्स के बारीकी से मूल्यांकन के बदौलत ई मामला में जांच में प्रगति हो सकल। ई दोनों ही पुरुष के आज बुध के दिन भ्रष्टाचार के अस्थायी आरोप के चलते अदालत में पेश करल जाए। दोनों ही पूर्व मंत्री लोग के प्रतिनिधित्व वकील हाउफ बुकुलबुल रोशन संतोखी अंडेलकंद दलु करत हवन। ये बात उल्लेखनीय है कि मैरिटाइम एंड मर्सेंटाइल इंटरनेशनल के निदेशक कार्यालय न्यायस्वस आरएसटीसी के पुराना महानिदेशक राजेश सवान सिंह के गलबरीस ई मामला के संदर्भ में गिरफ्तार कर लेवल कर रहा। टापू के प्रमुख जलाशय मोगोवाक्वा 43.9% भरल बा। वाटर रिसोर्सेज कमीशन काल प्रकाशित अपन हालिया बुलेटिन में ई बात के जानकारी दिलक। दूसर तरफ 7 जलाशय औसतन 62.8% भरल हमन स स्थिति चिंताजनक बतावल जात बा। आज बुध के दिन 17 जून से जल वितरण संबंधी समय सारिणी बदलता। मोगोवाक्वा के देने से जोन इलाका में पानी मुहैया करावल जाला अब से हियाँ पर दिन में 5 से 6 घंटा पानी उपलब्ध हुई। संबंधित इलाका

ई प्रकार से वाक्वा क्यूपिप कैट्रोबोन बुबासे रोजिल मुका सैपिया आरिवियनो जिला के एगो हिस्सा। वाटर रिसोर्सेस कमीशन के निदेशक लोमेश जगू के अनुसार बहुत ही कमती पानी बरसल में जनवरी से मार्च महीना के बीच 48% पानी बरसल। मौसम विज्ञान केंद्र के देने से ये बात के घोषणा करल कर रहा कि जून और जुलाई के महीना में कमती हुए पानी बरसेला। आदमी लोग से पानी जान जाया नहीं करे के और जिम्मेदाराना तरीका से जल के उपयोग करे के मांग करल जात बा। गल पिछला सप्ताह के दौरान तापमान में बदलाव नोट करल कर जेकर चलते देश में स्वास्थ्य संबंधी इन्फेक्शन के मामला में बढ़ोतरी दर्ज करल गल बा। गल 8 और 14 जून के बीच स्वास्थ्य संबंधी 5027 मामला दर्ज करल गल जबकि एकर से आगे होला हफ्ता में एकर संख्या 4424 रहल। सैनिटरी अधिकारी लोग हई वृद्धि से चिंतित हरवन सर स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा के अंतरिम निदेशक डॉक्टर फाजिल कुराबकस के मुताबिक अभी कैयन वायरस मौजूद बा जैसे कि सर्दी जुकाम कोविड-19 आर पारा इन्फ्लुएंजा। सोशल नेटवर्क के देने से इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन और ज्ञान के क्षेत्र में बहुत संभावना प्रदान करा जाला। फिर भी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्री अविनाश राम दोहल के अनुसार कुछ सामाजिक बुराई भी जुड़ल हो सकेला। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व याद दिलाते हुए मंत्री बतैलन की सोशल नेटवर्क की मदद पर हर एक तरह के विचार परी एगो जस्ती व्यापक परामर्श करे के चाहिए। एकर अलावा मंत्री ई बात के स्पष्टीकरण दिलन कि सोशल नेटवर्क पर ही मनाही के सवाल नहीं उठेला ना ही कोनो निर्धारित उम्र के लोग पर ही पहुँच में देरी आने के। फिर भी वो प्लेटफॉर्म के कंटेंट्स के जांच करे के महत्व पर ही जोर दिलन। एकर में से कुछ ऐसन बा जिन पढ़ाई अनुसंधान और स्कूली कार्य खातिर मूल्यवान औजार है। कल रात नवा चांद नजर आल आर आज से मुसलमान कौम के नवा इस्लामी बरिस शुरू हो गल। मुहर्रम के दसवां दिन बड़का महत्व रखेला। ये दिन करबला के वायका पेश आवेला। हजरत मोहम्मद के नवासा हजरत इमाम हुसैन के हक्या खातिन एगो अजीम कुर्बानी देवल का रहल। ई 1448 हिजरी है। सऊदी अरब में काल पहला तारीख रहल आर ई मौका पर ही काबा शरीफ के किस्वा बदलल गल। सिरहाल यो में आयोजित इंटरनेशनल केटरिंग कप के फाइनल में हमनी के तीन मॉरिशन शेफ लोग हमनी के चौरंगा के आर ऊंचा उठावे की कोशिश में हवन सर। जी हाँ, आवत बरिस 2027 के जनवरी महीना में फ्रांस में एक आयोजन हुई। तीन शेफ प्रवेश चतुरी जूलियो इमानुएल गाबू और जॉन अंतोन रिकॉर्डो कातो आज उ लोग स्वदेश लौटत हवन सर रात के 8 बजे। मारागास्टर में उ लोग की ई फाइनल कैटिन क्वालिफान हो गए सर। मॉरिशस शेफ एसोसिएशन के देने से उ लोग के आगमन पर ही उ लोग के स्वागत करा जाए। एक अध्यक्ष माइवन कुपेन समझाइलन कि मारागास्कर और मॉरिशस इंटरनेशनल केटरिंग क्लब के अफ्रीकी सिलेक्शन के दौरान क्वालिफाई हो सकलन सर। गल 13 और 14 जून के अंटानारिवो में ये प्रतियोगिता के आयोजन हो रहा। दूसरा देश के समाचार में फ्रांस के शहर रिव्यों में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच काल मंगल के दिन एक संक्षिप्त भेंट होल। ई दौरान दोनों नेता गर्मजोशी के संगे हाथ मिलैलन सर फिर तनी बतैलन सर भी। सूत्र के अनुसार ई मुलाकात अनौपचारिक रहल जबकि आज देर सांझ के दोनों नेता के बीच औपचारिक द्विपक्षीय बैठक प्रस्तावित बा। फरवरी 2025 में वाशिंगटन में होल पछला बैठक के लगभग 16 महीना बाद उलो के ई पहल का आमना सामना मुलाकात है। साधन कैलिफोर्निया में लगल भीषण मोटका जंगल के आग लगातार बढ़ते जात बा तेजी से ई फैलते जात बा। ई आग रिवरसाइड काउंटी में 2000 एकड़ से जस्ती क्षेत्र के झुलस दिले बा। अधिकारी लोग के अनुसार आग के लपटा जोन बा तेज हवा के कारण तेजी से फैलत आते। भारत मौसम विज्ञान विभाग आज से दिल्ली यूपी बिहार और राजस्थान समेत देश के 21 राज्य में भारी पानी आंधी तूफान और वज्रपात के अलर्ट जारी कर लेगा। और स्पोर्ट्स की दुनिया में फ्रांस के युवा फुटबॉल खिलाड़ी किलियान एम्बापे दुनिया के नवा लेजेंड बन गल हवन। फीफा वर्ल्ड कप में उलो के अपन शानदार परफॉर्मेंस प्रदर्शन से सबके प्रभावित कर दिले हवन। फीफा वर्ल्ड कप 2026 जीते के दावेदार फ्रांस अपन स्टार किलियान एम्बापे के रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन के दम पर ही सेनेगाल पर 3-1 के धमाकेदार जीत दर्ज कर लग। पहला हाफ के खेल में भले ही फ्रांस के खेल सेनेगाल के खिलाफ फीका नजर आवत रहल बाकी दूसर का हाफ में मैच पलट गल।

0: आ रहा है। ये भी बता दीजा कि विश्व फुटबॉल वर्ल्ड कप के अंतर्गत कुछ वक्त आगे ही अर्जेंटीना और अल्जीरिया के बीच खेला गल मैच में अर्जेंटीना अल्जीरिया के 3-0 से हरा दिलक। लियोनेल मेसी खेल के 77वां, 60वां और 76वां मिनट पर एक गोल डालन। इस तरह से वो 3 गोल बनैलन विश्व कप के इतिहास में गोल बनावे होला सबसे हाईएस्ट स्कोर बन गल हवन। और हमें बता दीजा कि नौवे इराक के 4-1 से पराजित कर दिलक। फ्रांस से निकाल के 3-1 से हरा के जीत हासिल कर लक। भोजपुरी के समाचार हिंगे पर ही पूरा भल ध्यान दिला जा। बहुत ही धन्यवाद।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.
2: Nous fin arrive demi-finale débat climat saison 4. Ban demi-finaliste pour nous autres rendez-vous pour une soirée bien animée au climat. Débat climat, c'est une initiative MCB et Creative Gandhi Science Center avec collaboration Dr. François Gemène, spécialiste dans l'environnement. Rendez-vous samedi 20 juin à partir 8h30 à soir au MBCN et MBC7. N'a pas raté ça!
3: Morning Beat! A good beat for your morning show! James.
4: RM2, Radio Musty, in the mix.

0: गाड़ी के अंदर कितने सारे लोग बैठे होंगे अभी स्टीयरिंग पकड़ के और कहते हैं कि काश हमें काम पे नहीं जाना होता। रोने वाली कोई बात नहीं, हंसने वाली बात है। सुबह के 8:16 हुए हैं। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू रेडियो मस्ती। ये है आपका मॉर्निंग बीट बीरिता के साथ। चलिए जी, खुश रहिए, मुस्कुराइए, और मौसम कैसा रहेगा ये जानने के लिए चले मिलते हैं रजनी से।
1: इट्स द वेदर ब्रॉडकास्ट विद विनर्स।
2: ओनली टू विनर्स।
3: कमजोर दबाव वाली हवा के साथ जो बादल जुड़े हुए हैं वे हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान लगाया जाता है कि बादल घिरे रहेंगे और रह रहकर बारिश होती रहेगी, मुख्य रूप से देश के पूर्वी इलाके, दक्षिणी इलाके और सेंट्रल प्लाटो पर। दक्षिण पूर्व की ओर से करीब 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिनके झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के उस पार समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिम में 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में तथा पश्चिमी एवं दक्षिणी लगूनों में न जाने की सलाह दी जाती है। तापमान सेंट्रल प्लाटो पर न्यूनतम तापमान 17 और 19 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम 23 एवं 25 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 23 एवं 25

0: चलो दोस्तों, जिंदगी की बड़ी खुशियों का इंतजार करते करते कभी कभी आपने नोटिस किया है कि हमारी छोटी छोटी खुशियां जो है ना वो मिस हो जाती हैं। एक मुस्कान, एक अच्छी चाय या किसी अपने के साथ गुजारा हुआ कोई ऐसा पल जिंदगी को कितना खूबसूरत बना देता है ना। हम अक्सर सोचते हैं कि जब कोई बड़ा गोल अचीव होगा तब खुश होंगे, लेकिन असली सुकून रोज़ की छोटी छोटी खुशियों में छुपा होता है। सुबह की फ्रेश हवा, किसी दोस्ती का मैसेज या अपनी प्रोग्रेस का एक छोटा स्टेप, जब हम इन मोमेंट्स को अप्रिशिएट करना शुरू कर लेते हैं ना, तभी हमें लगता है कि भाई ज़िंदगी में कुछ हो रहा है। हर दिन कम से कम 3 छोटी खुशियों को नोटिस करो और उसके लिए ग्रेटफुल रहो। ये हैबिट हैप्पीनेस को नेचुरली बढ़ाती है। खुशियों का इंतज़ार मत करो, उन्हें खुद क्रिएट करो। छोटी छोटी बातों में मुस्कुराने की वजह ढूंढो, क्योंकि खुशी अक्सर मिलती नहीं है, उनको बनाई जाती है। अभी देखो, हम आपसे बात कर रहे हैं, आपसे कुछ शेयर कर रहे हैं, आ गई ना आपके होंठों पे मुस्कान। बाहर देखो, नज़ारा देखो, कितना अच्छा नज़ारा है। क्या पता ड्राइव करते करते किसी पे नज़र पड़ जाए और उन्होंने स्माइल कर दिया आपके साथ, तो ये भी एक तरह की खुशी होती है। कोई आपको जाने ना जाने, पहचाने ना पहचाने, बस खुशी जो है दिल से निकलनी चाहिए, है ना।
1: Avant de défi, de long shift, de premier pas qui capable sans tous audi, il a toujours une pause, un souffle. Un moment. Nescafé First. Après tout fait une différence. Il pas une simple tasse. Il un nouveau départ, un nouveau l'énergie, un nouveau vision. Peu importe ta mission, peu importe ta question. Commence par une bonne décision. Nescafé. Avant ton défi, ton long shift. Commence par une bonne décision. Nescafé.
2: A good beat for your morning show. Morning beat. RM2.
3: Radio Musty.

0: show.
1: James.
2: RM2, Radio Musty, in the mix.

0: पुकारना तो हमें भी है किसी को, समय हो गया है, चलिए मिलते हैं उनसे।
1: Get ready for the biggest World Cup ever!
2: 2026 FIFA World Cup.
1: पहली बार होंगी 48 teams, 104 matches. रेडियो मस्ती की टीम के साथ चलिए यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और

0: Christian, guided home. That's two for Messi. The second leading scorer in the history of the World Cup now. And Argentina's talisman delivers yet again. Gonzalez. Back to Messi. Messi! And it's a record setter of one, never to be replicated. Lionel Messi stands alone in Argentine lore and now tied with Miroslav Klose the most goals at the World Cup.
1: Well, it's special. A special moment for an incredibly special player. The way that he strokes this home.
2: लाजवाब अद्भुत ऐसा खिलाड़ी एक बार आता है और किस प्लैनेट से आया है द गोट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम लियोनेल मेसी इस वर्ल्ड कप का पहला हैट्रिक और वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने के रिकॉर्ड की बराबरी अर्जेंटीना का लियोनेल मेसी फुटबॉल का बादशाह मैच में 3-0 की जीत अल्जीरिया के खिलाफ तीनों गोल मेसी की ओर से उधर फ्रांस का ऑल टाइम लीडिंग गोल स्कोरर बना किलियान एम्बापे वर्ल्ड कप 2026 के अपने ओपनिंग मैच में ही एम्बापे ने दो गोल स्कोर करके ये रिकॉर्ड अपने नाम किया एम्बापे के पास अब 58 गोल हैं ये रिकॉर्ड पहले ओलिविये जिरू के पास था फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हराया सब कुछ सेकंड हाफ में हुआ पहला गोल किलियान एम्बापे ने स्कोर किया फिर बाकोला इंजुरी टाइम के 5वें मिनट में एंजाई ने सेनेगल के लिए गोल कम किया एक मिनट बाद फिर से सेनेगल ने कहा बाप रे बाप जब एम्बापे ने अपना डबल पूरा किया और फ्रांस के लिए सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने का रिकॉर्ड तोड़ा फ्रांस का अगला मैच इराक के खिलाफ होगा 22 जून जबकि सेनेगल अगले दिन खेलेगा नॉर्वे के खिलाफ मैन ऑफ द मैच माइकल ओलिजे रहा फ्रांस में एम्बापे हैं तो नॉर्वे में अर्लिंग अलॉन गोल स्कोर करता है भूत की तरह इराक की उम्मीदों को राख में बदल डाला एक शानदार डबल के साथ इराक 1-3 ग्रुप जे में अर्जेंटीना की एंट्री हुई बताया आपको 3-0 की जीत और ये जो पहला गोल रहा वर्थ वॉचिंग अ स्टनर आज के अन्य मैच सुबह 8 बजे से ऑस्ट्रिया जॉर्डन शुरू हुआ है और ये अर्जेंटीना वाला ग्रुप है ग्रुप जे फिर रात के 8 बजे ग्रुप के की बारी पोर्टुगल वर्सेस कोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो की एंट्री होगी पोर्टुगल के साथ और मिडनाइट किक ऑफ ग्रुप एल में इंग्लैंड वर्सेस क्रोएशिया कल सुबह 3 बजे ग्रुप एल में ही गाना वर्सेस पनामा और 6 बजे उज्बेकिस्तान वर्सेस कोलंबिया मतलब कल सुबह ग्रुप स्टेज के फर्स्ट राउंड के मैच पूरे हो जाएंगे और कल से ही बैक टू ग्रुप ए दूसरे राउंड के मैच रात के 8 बजे चेक रिपब्लिक साउथ अफ्रीका और 11 बजे स्विट्जरलैंड वर्सेस बोस्निया इंग्लैंड का वर्ल्ड कप कैंपेन अभी शुरू नहीं हुआ है पर इंजुरी की समस्या सामने है न्यूकासल यूनाइटेड का फुल बैक चिनो लिवरामेंटो कॉल्फ इंजुरी के कारण वर्ल्ड कप में नहीं खेल पाएगा उसके स्थान पर चेल्सी से ट्रेवो चालोबा को बुलाया गया है फुटबॉल पंडितों का मानना है कि इंग्लैंड के डिफेंस में फिटनेस की समस्या है जॉन स्टोन्स अनुभवी हैं पर प्रीमियर लीग उसे इंजुरी का सामना करना पड़ा वहां पर केवल 5 प्रीमियर लीग मैचों में वो शुरू कर पाया था यहां तक कि मैनचेस्टर सिटी ने उसे जाने दिया चेल्सी का कप्तान रिकी जेम्स भी पिछले सीजन इंजुरी के कारण केवल 20 मैचों में खेल पाया इन दोनों के फिटनेस पर सवाल उठ रहे हैं इंग्लैंड की टीम का पहला मैच क्रोएशिया के खिलाफ है सो वर्ल्ड कप स्पेशल यहां पर पूरा हुआ विद अ स्पेशल प्लेयर लियोनेल मेसी व्हाट ए प्लेयर उसके लिए अभी पिक्चर बाकी है डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना को रोकना आसान नहीं होगा
3: थैंक यू सो मच अरविंद
4: फीफा वर्ल्ड कप 2026 11 जून से 19 जुलाई कैच ऑल द न्यूज व्यूज प्रीव्यूज एंड लेटेस्ट अपडेट्स

0: A good beat for your morning show. RM2.
1: Radio Musty.
2: 846, good morning and welcome to Radio Musti. जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ विदितार, आप साथ दे रहे हैं. हमारा मॉर्निंग बीट प्रोग्राम चल रहा है. कहाँ तक पहुँचे, पहुँच गए ना. चलो आराम से, टेंशन नहीं लेने का, ना टेंशन किसी को देने का. जानते हो मॉर्निंग में ट्रैफिक में फंसना इतना आसान नहीं होता. कहने वाली बात होती है भाई, कहने वाले कह देते हैं कि पेशेंस रखो, लेकिन अब है ही नहीं तो रखा क्या. नहीं है ना पेशेंस तो रखेंगे क्या, जाहिर सी बात है. लेकिन आपको काल्म होना चाहिए और अपने आप को आदत डालनी चाहिए. देखो आप रोज निकलते हो उस टाइम पे, रोज आपके साथ यही होता है, तो अब तो आदत डालनी देनी चाहिए ना आपको. क्योंकि जब हमें पता होता है कि जब दूध गर्म है उसको पियेंगे तो हमारा मुँह जल जाएगा, तो हम क्या करते हैं, हम वेट करते हैं, पेशेंस रखते हैं कि थोड़ा ठंडा हो जाए फिर हम पिए. तो वैसे ही होता है, आप ट्रैफिक लाइट भी जब तक रेड है तब तक तो आपको वेट करना पड़ेगा ना. इसी टाइम पे अपने मूड को आपको समझाना होता है. यही टाइम होता है जब अपने आप से बात करनी होती है, स्पेशली जब आप गाड़ी चला रहे हो और आप अकेले होते हो. तो लोग कहते हैं भाई हम तो ड्राइव कर रहे हैं, अकेले हैं, तो कोई बात नहीं, आप अपने आप से बात क्या करो. नहीं नहीं, लोग नहीं बोलेंगे आप पागल हैं, कहते हैं मैं पागल हूँ, मैं खुद से बात करूँगा. अपने आप से बात करना चाहिए, अपने आप को समझाना चाहिए. अपने आप को बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अपने से ही करना पड़ता है. जैसे कि आपको रिपीट करना पड़ता है कि आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा, तो आज का दिन डेफिनेटली अच्छा होगा क्योंकि आपने अपने दिमाग को ट्रेन कर दिया कि आज का

0: दिन अच्छा है तो कुछ भी हो जाए, आज का दिन तो मस्त ही होगा।
1: मॉर्निंग बीट, अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो।
2: RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स।

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: भाई गाना तो मैंने सुना है, सीने में दिल में है धड़कन.
3: हाँ, लेकिन दिल और धड़कन में सेम एक्टर्स नहीं है. तुमने देखा
2: दिल और धड़कन में?
3: नो, क्या बात कर रही हो, ये अलग है, बिल्कुल पिक्चर ही अलग है.
2: तो आमिर था हाँ, और धड़कन में सुनील शेट्टी. और
3: मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा. हाँ, वही वाला
2: अंजलि.
3: अब तू कहाँ चले?
2: अंजलि, मुझे अभी जाना है, थोड़ी देर में, अभी नहीं जा रही, थोड़ी देर में जाऊँ.
3: लेकिन सुबह से सब कोई मैसी मैसी कर रहे हैं, मैंने सुना. और गोट, तुम्हें पता गोट क्या होता है?
2: ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल.
3: लड़की बहुत पढ़ाई करके आई हो. माय गॉड,
2: तुम्हें मैं बोलूंगी बकरी.
3: नहीं, गोट कौन? Right, ladies and gentlemen, यहाँ पर मस्ती चल रही है. और वैसे स्पोर्ट्स की दुनिया से इतनी सारी खबरें मिली गई और इतने बड़े बड़े मैचेस, लेकिन इंग्लैंड फुटबॉल टीम अभी खेलनी बाकी है. देखते क्या कमाल करते हैं. और साथ ही में नॉट टू फॉरगेट, अरे कॉकटेल 2 इज राइट देयर बड़ी स्क्रीन पर आने के लिए.
2: कॉकटेल को छोड़ो, ये बोलो बाहर का मौसम कैसा है और बाहर का मौसम
3: अभी
2: कैसा है?
3: अभी बिल्कुल ठीक है. हाँ, ट्रैफिक की बात करें तो 8:15, 8:20 पर फिनिक्स का जो फ्लाईओवर है वो काफी मुश्किल हो जाता है. हाँ, हमेशा की तरह.

0: वाह वाह वाह क्या बात है
1: अरे अरे जो तुमने पान खिला दिया बहुत कमाल का है। इसमें कहूंगा इसमें जो कट्ठा है जो स्टाइल है वो बहुत कमाल का। मजा आ गया भाई भाई खा के पान लाल हो गई जवान। ओहो हो पनवाड़ी का पट्टा हो जाए थोड़ा सा अपना भी भलम पिचकारी। अरे तूने मारी

चलिए भाई, इसी के साथ हमारे जाने का टाइम हो गया है। इनको पान खाने देते हैं और घर का काम करने देते हैं, कुछ रेसिपीज, कुछ इधर उधर की बातें होंगी, हम आपसे मिलने आएंगे जरूर बहुत जल्द आपके अपने रेडियो मस्ती मॉर्निंग बीट में। हाँ बिल्कुल, मैं उड़ती हूँ और विकास को आने देती हूँ।

0: टाइम चेक एग्जैक्टली 9 AM वक्त हो गया संक्षिप्त समाचार का।
1: बुधवार 17 जून और समाचारों को लेकर उपस्थित हो चुके हैं रजनी जी। नमस्ते रजनी जी।
2: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं। सबसे पहले स्थानीय खबरें। पुराने व्यवसाय मंत्री सुदेश कालीचंद को कल रात हिरासत में लिया गया। उससे फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन को कल सुबह मर्सेंटाइल इंटरनेशनल कंपनी की ओर से 2023 में ईंधन खरीदने के कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने से संबंधित सवालों के जवाब देने के लिए बुलाया गया था। उन्होंने संबंधित कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने के फैसले में भाग लिए होंगे। इसके अलावा वित्त मंत्री पुराने वित्त मंत्री रंगारादन पदयाची को भी कल रात 8:15 बजे इसी जांच के मामले में गिरफ्तार किया गया। इन दोनों ही पुरुषों को आज बुधवार के दिन भ्रष्टाचार के अस्थायी आरोप के चलते अदालत में पेश किया जाएगा। ये भी बता दें कि दोनों ही पूर्व मंत्रियों पर पब्लिक ऑफिशियल यूजिंग ऑफिस फॉर ग्रेटिफिकेशन फॉर अनदर पर्सन के अस्थायी आरोप लगाए गए हैं। ये बात उल्लेखनीय है कि मैरिटाइम एंड मर्सेंटाइल इंटरनेशनल की निदेशिका कारिना एसएस तथा एसटीसी के पूर्व महानिदेशक राजीव सवान सिंह को पिछले साल इस मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। टापू का प्रमुख जलाशय महोबा का 43.9% भरा है। वाटर रिसोर्सेज कमीशन ने कल प्रकाशित अपने हालिया बुलेटिन में इस बात की जानकारी दी। दूसरी तरफ 7 जलाशय औसतन 62.8% भरे हुए हैं। स्थिति चिंताजनक बताई जाती है और आज बुधवार 17 जून से जल वितरण संबंधी समय सारिणी बदल रही है। महोबा की ओर से जिन इलाकों में पानी मुहैया किया जाता है अब से यहाँ पर दिन में 5 से 6 घंटे तक पानी उपलब्ध। इस तरह संबंधित इलाके वाक्वा, क्यूपिप, कैटरबोन, बोबासेन, रोजिल, मोका, सैंपिया और रिवियनो जिले के एक भाग हैं। वाटर रिसोर्सेज कमीशन के निदेशक लोमेस जगू ने लोगों से पानी जाया न करने और जिम्मेदाराना तरीके से जल का उपयोग करने की मांग की है। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो पिछले सप्ताहों के दौरान तापमान में बदलाव नोट किए गए हैं, जिसके चलते देश में स्वास्थ्य संबंधी इन्फेक्शंस के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और कल रात नया चांद नजर आया है। आज से मुसलमान कौम का नया इस्लामी साल शुरू हो गया। मुहर्रम का 10वां दिन सबसे अहमियत रखता है। विदेशी समाचारों की ओर बढ़ते हैं। फ्रांस के शहर रिवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक संक्षिप्त मुलाकात हुई कल। इस दौरान दोनों नेताओं ने कर्मजोशी से हाथ मिलाया और सूत्रों के अनुसार मुलाकात अनौपचारिक रही, फिर भी आज देर शाम दोनों नेताओं के बीच औपचारिक द्विपक्षीय बैठक निर्धारित है। और स्पोर्ट्स न्यूज़, फ्रांस के

0: फीफा फुटबॉल खिलाड़ी किलियान एम्बापे बने दुनिया का नया लेजेंड। जी हाँ, फीफा वर्ल्ड कप में उन्होंने अपने शानदार परफॉर्मेंस प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 जीतने के दावेदार फ्रांस ने अपने स्टार किलियान एम्बापे के रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन के दम से सेनेगाल पर 3-1 की धमाकेदार जीत दर्ज की। और ये भी बता दें कि विश्व फुटबॉल कप के अंतर्गत कुछ समय पहले अर्जेंटीना और अल्जीरिया के बीच खेले गए मैच में अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हरा दिया। लियोनेल मेसी ने खेल के 70वें, 60वें और 76वें मिनट पर गोल डाला। इस तरह उन्होंने 3 गोल बनाए, विश्व कप के इतिहास में गोल बनाने वाले सबसे हाईएस्ट स्कोर बन गए। संक्षिप्त समाचार यहीं पर समाप्त हुए, आपने ध्यान दिया, धन्यवाद, नमस्कार, शुभ दिन।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: नौ शून नौ मिनट. हेलो, वेलकम. 17 जून 2026. नमस्कार, स्वागत, गुड मॉर्निंग. स्वागत है आप सभी का रेडियो और ये कमाल का फिल्मी स्टाइल बिल्कुल शुरू फुल ऑन एंटरटेनिंग मॉर्निंग शो के अंदर आपका स्वागत. क्लॉक ने बजा दिए 9, तो अब टाइम हो गया है कि ट्रैफिक को हल्का करने का, वर्कलेट को थोड़ा सा साइड पे रखने का,

0: और बॉलीवुड के सुपर गानों के साथ अपनी मॉर्निंग को एकदम ब्लॉकबस्टर बनाने का। मैं विकास और 9 से 12 के बीच में मस्ट मॉर्निंग शो, जहां पर बी टाउन की बातें होती होती हैं, आपके मैसेजेस साथ में हासिल देखो टिप्स, और हम चाहें कि आप ऐसे ही एनर्जेटिक रहें, मुस्कुराते रहें, बस पॉजिटिविटी और ढेर सारी फिल्मी बातों के साथ मैं आपके साथ जुड़ने वाला हूं। बस आज का मंत्र, स्माइल करो, क्योंकि जिंदगी की पिक्चर में इंटरवल अभी बहुत दूर है, और जब बैकग्राउंड में बॉलीवुड के सुर बज रहे हो तो हर चैलेंज भी थोड़ा आसान सा ही लगता है।
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings. Radio Musty.

0: जाने दे
1: योर डेली हॉरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती
2: तेजा वक्त हो गया कि आपके सितारों की चाल जाने और शुरुआत करते हैं विद
3: एरीज मेष राशि।
2: आज का दिन आपके लिए नई उम्मीदें और पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएगा। कार्य क्षेत्र में कोई नई जिम्मेदारी या पद मिलने की संभावना है जिससे आपका आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगा। स्टूडेंट को अपनी मंजिल पाने के लिए पूरी एकाग्रता के साथ मेहनत करनी होगी क्योंकि यही समय है उनके लिए भविष्य की नींव रखने का।
3: टॉरस वृषभ राशि।
2: आज आपके अंदर खुद को साबित करने की जबरदस्त ऊर्जा दिखाई दे रही है। भाई ऐसा है कि आप अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, सम्मान बढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए काम भी करना पड़ेगा, जिम्मेदारियों पर खरा उतरना पड़ेगा। लंबी यात्रा का योग बन सकता है जो अनुभव और नई सीख लेकर आएगी।
3: जेमिनी मिथुन राशि।
2: आपको हर परिस्थिति में धैर्य और संतुलन बनाए रखने की जरूरत होगी। व्यवसाय में बड़ा जोखिम उठाने से बचें क्योंकि धीरे धीरे और समझदारी से बढ़ना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। काम में स्पष्टता आप बनाए रखें, उलझनों से बचने में मदद मिलेगी और माता पिता के साथ समय बिताना, उनकी सेवा करना मन को शांति देगा।
3: कैंसर कर्क राशि।
2: भाई कर्क राशि, आज आपकी लीडरशिप की क्षमता सामने

0: खुलकर आएगी। टीम के साथ मिलकर किया गया काम आपको नई पहचान और सम्मान दिला सकता है। वैवाहिक जीवन में प्रेम और समझदारी बनी रहेगी, जिससे मन को सुकून मिलेगा। छोटे बच्चों की खुशी के लिए आप अपना कोई प्लान कर सकते हैं, कोई छोटा सा उपहार ला सकते हैं, कोई आउटिंग प्लान कर सकते हैं, और खोई हुई कोई प्रिय वस्तु वापस मिल जाने से खुशी मिल सकती है।
1: लियो सिंह राशि।
0: लियो, जो भी मिले उसको समय रहते कर दियो। वैसे तो नौकरी पेशा लोगों के लिए बेहद खास रहने वाला दिन है। मनपसंद काम मिलने से उत्साह बढ़ेगा, नॉर्मल सी बात है। मेहनत का अच्छा परिणाम भी देखने को मिलेगा और उससे खुशी, और साथ साथ में आपको मिलेगा एक मौका कुछ नया करने का। नए लोगों से मुलाकात भविष्य में लाभदायक साबित हो सकती है और काम में स्पष्टता बनाकर रखनी जरूरी होगी, नहीं तो ये प्रॉब्लम्स बनती है। अरे सफलता की चाबी तो है ये।
1: वर्गो कन्या राशि।
0: आज का दिन सफलता और संतोष दोनों लेकर आएगा। रिश्तों में प्रेम और सहयोग की भावना बढ़ेगी, जिससे घर का माहौल खुशनुमा रह सकता है। पुराने लेन देन निपटाने का समय आ सकता है, इसे आर्थिक मामले में योजना बनाकर आगे चलें। थोड़ी सी प्लानिंग करेंगे तो ज्यादा आसानी होगी।
1: लिब्रा तुला राशि।
0: करियर के लिहाज से आज का दिन आपके लिए बेहद शुभ संकेत दे रहा है। रुका हुआ फंसा हुआ धन वापस मिलने की राहत महसूस होगी। कोई बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
0: भाई जो भी है अपनी प्लानिंग के हिसाब से करें। भाई अगर योजना है तो सही तरीके से काम करेंगे, सफलता भी मिलेगी। परिवार में चल रही अनबन बातचीत से दूर हो सकती है और रिश्ते में अपनापन लौट कर आएगा।
1: सजिटेरियस धनुराशि।
0: आज दिन तरक्की और उपलब्धियों के लिए नया रास्ता खोल सकता है। वेरी गुड, निकल पड़ो। कार्य क्षेत्र में बड़ी जिम्मेदारी मिलने से आपकी पहचान और पद दोनों मजबूत होंगे, साथ ही वेतन बढ़ने के संकेत है। ओहो, हालांकि कोई मित्र अनजाने में आपके काम में रुकावट डाल सकता है, इसलिए सतर्क रहें। नया काम शुरू करने का विचार अच्छा रहेगा, लेकिन परिवार और भाई बहन की सलाह लेनी जरूरी है।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
0: भाई आज का दिन क्रिएटिविटी पर दस्तक देगा। नई योजनाएं या फिर आप कुछ नया करने का सोच रहे हैं, उसमें काफी मन लगेगा। जरूरतमंद की मदद करने से आपको आत्मिक सुकून मिल सकता है। वैसे सम्मान मिलने की पूरी पूरी संभावना है, लेकिन पुरानी गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ना भी जरूरी है।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि।
0: आज अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। आसपास के लोगों को अच्छी तरह से पहचाने, क्योंकि कुछ लोग आपके रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपकी प्लानिंग अच्छी है तो सब कुछ ठीक। किसी अजनबी की सलाह पर निवेश करने से बचना आपके लिए बेहतर होगा।
1: पाइसेस मीन राशि।
0: Yes, last but not the least, Pisces, आज का दिन सम्मान और उपलब्धियों का संकेत दे रहा है। कार्य क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और नए अवसर सामने आएंगे। सहकर्मियों का सहयोग रहेगा और आपको हर काम में मजबूती मिलेगी। हालांकि अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटी सी बात भी गलत फहमी पैदा कर सकती है।

0: चलिए बॉलीवुड की दुनिया में एंट्री मारते हैं और पहुंचते हैं इस मूवी की तरफ जिसका नाम है जवानी तो इश्क होना है। वैसे बहुत ही कैची उसका टाइटल है, बहुत ही कमाल का। वैसे बात करें इनके गानों की तो वो भी बहुत कमाल के चले, एंड स्पेशली चुनरी चुनरी, चलिए सही वहां पे स्लॉट का जरूर आया लेकिन फिर भी बहुत ही फेमस। कहते हैं कि ये जो लास्ट कोलैबोरेशन थी पापा और बेटे के बीच में यानी कि डेविड धवन वरुण धवन की और है जवानी इश्क, ये एक्चुअली रिलीज हुई ऑन 5th June और फिल्म को अच्छा वीक मिल रहा है एट द बॉक्स ऑफिस। कॉमेडी है
1: Let's go.

0: क्या साल के गाने थे नहीं? ये दौर अलग था और अभी ये दौर है अलग, लेकिन सब अलग अलग गानों को लेकर मैं शामिल यहीं पर कंटिन्यू टिल 12।
1: वेलकम टू RM2
2: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।
0: चल मॉर्निंग शो, और मॉर्निंग शो का यही है मंत्रा कि जिंदगी को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, कंसिस्टेंसी को अपनाओ। भाई ऐसा होता है कि हम सब मोटिवेशन के पीछे भागते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि लॉन्ग टर्म सक्सेस मोटिवेशन से नहीं, डेली हैबिट्स और कंसिस्टेंसी से

0: आती है, चाहे फिटनेस हो, करियर हो, सेविंग्स हो या रिलेशनशिप्स, रोज के छोटे छोटे पॉजिटिव एक्शंस ही बड़े रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। तो आज से कोशिश शुरू कर दो, छोटी छोटी सही लेकिन कंसिस्टेंट। तो बस आज का मंत्र यही कि 1% बेटर एवरी सिंगल डे। अगर आप हर दिन सिर्फ थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करते हैं तो एक साल बाद आप खुद को देख पाएंगे कैसे ट्रांसफॉर्म हो गए, कैसे बेहतर हो गए, हैरान हो जाएंगे। तो आज एक छोटा सा स्टेप लीजिए, 10 मिनट का वॉक या फिर एक हेल्दी मील, एक पॉजिटिव थॉट या किसी अपने को एक फोन कॉल या एक छोटा सा मैसेज। याद रखिए, बड़े सपने रोज के छोटे छोटे एफर्ट से ही पूरे होते हैं। मैं आपका दोस्त विकास आपके साथ ऑन RM2, जहां पर म्यूजिक के साथ साथ मिलती है बेटर बनाने की जिंदगी की इंस्पिरेशन।
1: वेलकम टू RM2 मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: RM2 Radio Musty.
1: चलिए म्यूजिक जहाँ पे चल रहा है वहीं पर कई लोग हैं जो अपना स्पेशल डे बना रहे हैं, सो ऑल द बेस्ट, एंजॉय योरसेल्फ। और यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल एक विश आ गई है, कहते हैं सिस्टर लॉ का बर्थडे है भाई, बहुत ज़रूरी है। वैसे कहते हैं कि आधी घरवाली होती है साली, बस ये शादी के टाइम पर ऑफर मिलता है, उसके बाद सच नहीं होता। लेकिन कहते हैं प्यार से गाना है स्पेशल, उनके नाम अरुणा, उनका नाम है अरुणा गणपत, जो रहती हैं प्लेन मायो। हैप्पी बर्थडे फ्रॉम द होल टीम, जिंदगी जी लो जी भर के।

जीजा कमलेश की तरफ से अरुणा आपको हैप्पी हैप्पी बर्थडे। आज कुछ स्पेशल तो होगा ना, चलिए उसके बीच में म्यूजिक को शामिल करना ना भूलें। आरएम टू

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: अबे जितने भी लेडीज हैं घर पर काम कर रही हैं उनको बहुत सारा काम तो करने होता है, वहीं पर घर के बारे में भी सोचना होता है कि कहाँ फर्नीचर लगेगा, कैसे सेटिंग होगी और जाने क्या क्या। वैसे कभी कभी बताएं कि एक छोटा स्पेस को अगर बड़ा दिखाना है तो मिरर्स को या मिरर शीशे को अपना मैजिक टूल बना सकते हैं। राइट, अगर इंटीरियर डिजाइनर्स आपकी मदद करें तो वो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली प्लेस करते हैं मिरर्स को, किसी भी रूम को ज्यादा स्पेशियस और ब्राइट और एलिगेंट बना सकते हैं। अगर आप लिविंग रूम या डाइनिंग एरिया में मिरर को विंडो के ऑपोजिट लगाते हैं तो नेचुरल लाइट रिफ्लेक्ट होकर पूरे रूम को और भी एरी और वेलकमिंग बना देता है। ऑफ कोर्स पर्सनल चॉइस पर डिपेंड करता है, लेकिन एक सिंपल सी डेकोरेशन रूल की कहानी यही है कि लेस क्लटर मोर चार्म, यानी कि चीजों को इधर उधर फैलने मत दीजिए कि रखी हुई हैं, उससे क्लटर बहुत हो जाता है। हर सीजन में बस एक बार शेल्व्स, टेबल्स और कॉर्नर्स को डीक्लटर कीजिए। जब घर में काफी सामान इधर उधर पड़ा हो तो फिर स्पेस कम लगता है। डेकोरेशन पीसेस भी ज्यादा हाईलाइट होते हैं जब आप उनको सही जगह रखते हैं, उनको स्पेस देते हैं। फ्रेश फ्लावर्स, इंडोर प्लांट्स या फिर एक स्टाइलिश लैंप भी रूम को इंस्टेंटली चेंज कर सकता है। और आज का मंत्र यही है, क्लीन स्पेसेस हैप्पी फेसेस। छोटे छोटे डेकोर चेंजेस आपके घर को बना सकते हैं, दे सकते हैं एक फ्रेश लुक बॉलीवुड स्टाइल के साथ।
0: वेलकम टू आर एम टू
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by McDonald's.
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
0: Radio Masti.
3: North. South.
0: 103.5.
3: East. West.
0: 96.4.
3: Center.
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty. Feel the
5: Musty. Oh, good morning, time check. Exactly 10 a.m. स्टूडियो में रश न्यूज से मिलते हैं, जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार।
6: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं। सबसे पहले स्थानीय खबरें। पुराने व्यवसाय मंत्री सुदेश कालीचरण और पूर्व वित्त मंत्री रंगानाथन पर्याची कल से हिरासत में। उन्हें फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की ओर से मैरिटाइम मर्सेंटाइल इंटरनेशनल कंपनी की ओर से 2023 में ईंधन खरीदने का एक कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने से संबंधित सवालों के जवाबों को लिए बुलाया गया था। इन दोनों ही पुरुषों को आज भ्रष्टाचार के अस्थायी आरोप के चलते अदालत में पेश किया जाएगा। दोनों ही पूर्व मंत्रियों पर पब्लिक ऑफिशियल यूजिंग ऑफिस फॉर ग्रेटिफिकेशन फॉर अनदर पर्सन के अस्थायी आरोप हैं। आज बुधवार 17 जून से जल वितरण संबंधी समय सारणी में बदलाव। महोवाक्वा की ओर से जिन इलाकों में पानी मुहैया किया जाता है, अब से यहां पर दिन में 5 से 6 घंटे तक पानी उपलब्ध। संबंधित इलाके हैं वाक्वा, क्यूपिप, कैट्रोबोन, बोबासे, रोजिल, मोका, सैंपिया और रिवियनो जिले के एक भाग में। वाटर रिसोर्सेज कमीशन के निदेशक लोमेश जगू ने लोगों से पानी जाया न करने और जिम्मेदाराना तरीके से जल का उपयोग करने की मांग की। और इन पिछले सप्ताहों के दौरान तापमान में बदलाव के चलते देश में स्वास्थ्य संबंधी इन्फेक्शन के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इस तरह सैनिटरी अधिकारी इस वृद्धि से चिंतित हो चले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा जा रहा है कि अभी कई वायरस मौजूद हैं जिसके मद्देनजर ऐसी स्थिति बनी हुई है। बढ़ते हैं विदेशी समाचारों की ओर। अमेरिका और ईरान के बीच प्रारंभिक शांति समझौते पर सहमति बनी, जिसके बाद अमेरिकी नाकेबंदी हटने से ईरानी बंदरगाहों से जहाज गुजरे और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई। अमेरिका और ईरान के बीच बहुप्रतीक्षित प्रारंभिक शांति समझौते पर सहमति बनने और उस पर ई हस्ताक्षर होने के बाद पश्चिम एशिया में सभी पक्षों का ध्यान अब लेबनान में युद्ध विराम पर टिक गया है। विश्व फुटबॉल वर्ल्ड कप के अंतर्गत अर्जेंटीना और अल्जीरिया के बीच खेले गए मैच में अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हरा दिया। लियोनेल मेसी ने खेल के 17वें, 60वें और 76वें मिनट पर गोल डाले। इस तरह उन्होंने 3 गोल बनाए, विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल बनाने के रिकॉर्ड की बराबरी की। उधर किलियान एम्बापे फ्रांस का रिकॉर्ड गोल स्कोरर बन गए। संक्षिप्त समाचार यही पर समाप्त हुए। आपने ध्यान दिया, धन्यवाद, नमस्कार।
0: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: जैसे आप पहुंच गए इन द सेकंड आवर 10:07 और अभी भी हम साथ साथ हैं और साथ की बात करें तो तारीख भी 17 है 2026 और वेंसडे का दिन हफ्ते के बिल्कुल मिडिल के अंदर होता है कि मंडे ट्यूसडे थोड़ा सा निकल जाता है वक्त सब कुछ सेटल करने में, वेंसडे तक सिचुएशन थोड़ी सी ठीक होती है, उसके बाद पता है कि थर्सडे फ्राइडे सब कुछ स्मूथ होगा। नहीं चलिए, बाकी की प्लानिंग ठीक है लेकिन जिंदगी में म्यूजिक के साथ थोड़ा सा वक्त बताएंगे तो अपने आप को काफ़ी पॉजिटिव और म्यूजिकल पाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि सुर ताल को ले संभाल, उसके बाद होगा कमाल ही कमाल। चलिए एक बार फिर से आपके मैसेजेस और साथ साथ में कुछ बातें करते हैं, हाउसहोल्ड डेकोर टिप्स, जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें, लाइफस्टाइल। एक बार ये सेट हो जाए तो सब कुछ ठीक ही लगता है। चलिए, लाइफ है लेकिन स्टाइल ऐड करने का फॉर्मूला है यहाँ मिला।
0: वेलकम टू RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।
3: दोनों जगह दोनों एक दूजे के होने लगे, अब ना हल्की सी भी आए कभी दूरी।

0: मजा आता जब ये अलग अलग फ्लेवर्स ऐड होते हैं. म्यूजिक के फ्लेवर्स कुछ अलग ही दुनिया.
1: Welcome to RM2. Musty Mornings Radio Musty.
0: चलो कुछ मैसेजेस के बाद चलते हैं हम कुछ किचन टिप्स की तरफ थोड़ी देर में. और वहीं पर कहते हैं गुड मॉर्निंग. बस एक इंटेंशन के साथ सुबह उठो कि आपको आगे बढ़ना है. एक पर्पस के साथ शाइन करो और आपकी स्पिरिट और सोल बस चमकेगी और साथ में ले जाएगी आपको इन द राइट डायरेक्शन. ओम गंग गणपते नमः. क्या बात है आरती जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस बहुत ही प्यारे पॉजिटिव मैसेज के लिए. और वैसे कहते हैं हवा में मिल जाती है एक अलग सी मिठास जब आरएम ट्यून में आता है विकास. ओ हो क्या बात है आशनी. और कहते हैं भूत भाषा से साथ दे रही हैं और कहते हैं बस वो सारे ब्राज़ील के फैंस के लिए. राइट. वैसे ब्राज़ील को अभी कुछ काम करना बाकी है. नहीं, काफ़ी मुश्किल रहा उनके लिए. आंशी आशनी. और राइट आशनी, वैसे रात रात को इतने मैचेस देखने और उसके बाद एक बार फिर से तैयार हो जाना फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग, नॉट ईजी. आप भी वर्ल्ड कप में वाई गॉड उतनी संघर्ष कर रहे हैं, उतनी कोशिश करेंगे. गायत्री जी गुड मॉर्निंग. सब कुछ ठीक चल रहा है, बस एक गाना हमारे लिए चला दीजिए अगर हो पाया तो. चलिए नोट कर लिया. गुड मॉर्निंग आपको भी. कहते हैं बहुत ही प्यारे गानों के साथ जुड़ गए हैं. और अनीता जी, अनीता जी आपका स्वागत. हैप्पी वेंसडे सभी को. फिक ऑफ फ्लैग से हमारे साथ दे रही हैं. और गुड मॉर्निंग जी आलेश, क्या हाल है. और कहते हैं कि चाय की चुस्की हो, बातें इसकी उसकी हो और साथ में कमाल का म्यूजिक, तो क्या बात.

0: कि दुनिया की तरफ, और जब एक रेफरेंस मिलती है एक मूवी की तो जो फैशन सेंस है और समझ में आती है। नहीं, बात करते हैं दिल चाहता है। ये जो मूवी रिलीज हुई थी ना, तब से बॉलीवुड फैशन को एक नया कूल फैक्टर दिया था। आमिर सैफ, विनाक्षा खन्ना के कैजुअल टीज या लिनन शर्ट्स, कार्गो पैंट्स या एफर्टलेस स्टाइलिंग ने यूथ फैशन का ट्रेंड बदल दिया था। इस मूवी से मिलता है आज का स्टाइल सीजन। फिट मैटर्स मोर देन फैशन। चाहे आउटफिट सिंपल हो, अगर फिटिंग परफेक्ट है तो स्टाइलिश बहुत ही ऑटोमेटिकली हो जाती है। ओवरसाइज या ओवरली टाइट क्लोज की जगह अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से फिट को चूज कीजिए। और एक प्रैक्टिकल टिप, न्यूट्रल कलर्स जैसे कि व्हाइट, नेवी, बेज या फिर ब्लैक टू मिक्स एंड मैच करना आसान हो जाता है। ऐसे होता है कि कम कपड़ों में भी ज्यादा आउटफिट कॉम्बिनेशंस क्रिएट किए जा सकते हैं। तो बस आज का फैशन मंत्र यही है कि ट्रेंड को फॉलो करने से पहले अपनी पर्सनालिटी को फॉलो करो, क्योंकि असली स्टाइल वही है जो आपको कंफर्टेबल, कॉन्फिडेंट और नेचुरली फील कराए।
1: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हलकोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स। RM2
2: रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: चल चलते हैं कुछ और बातों की तरफ जो अक्सर हमारी जिंदगी में शामिल होती हैं। तो बात करें खाने पीने की तो किचन के अंदर बहुत सारे काम होते रहते हैं। स्मार्ट किचन यानी कि इजी कुकिंग। भाई अगर किचन में कोरिएंडर, मिंट या करी लीव्स जल्दी मुरझा जाते हैं जिनका अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो उन्हें वॉश करके कम्प्लीटली ड्राई कर लीजिए। जी हाँ, बात करें कोरिएंडर की, मिंट की या करी लीव्स की, वॉश करके उनको ड्राई कर लीजिए कम्प्लीटली और फिर एक एयर टाइट कंटेनर में टिश्यू पेपर के साथ, क्योंकि वो जो वेटनेस है या फिर जो भी उसमें डैम्पनेस है या पानी है वो सब सोख लेगा। ये सिंपल ट्रिक उनकी फ्रेशनेस को कई दिन तक मेंटेन रखने में मदद करती है, एयर टाइट कंटेनर। और एक और यूजफुल हाक ये है कि जब प्याज या अनियंस बहुत रुलाता है ना, क्या करें, लेकिन काटने से पहले नाइफ को थोड़ा सा ठंडे पानी में रिंस कर लीजिए। इसके बाद कटिंग थोड़ी आसान हो जाएगी और आंखों में जलन भी कम महसूस होगी। और जैसे वीकेंड आता है ना, तो थोड़ी सी प्लानिंग कर लो, जैसे कि गार्लिक, जिंजर या अनियन, जो बेसिक प्रिपरेशन होती है ना, वो करके फ्रिज में डाल दीजिए। बस आपको उसको एयरटाइट कंटेनर में ही रखना है और बिजी वीकडेज में कुकिंग टाइम काफ़ी कम हो जाता है और मील प्रिपरेशन स्ट्रेस फ्री बन जाती है। काफ़ी लोग इसको छोटे छोटे क्यूब्स बना के फ्रीज कर लेते हैं। वैसे गार्लिक जिंजर पेस्ट तो बन ही जाता है घर पे, वैसे भी मतलब थोड़ी सी प्लानिंग पहले से हो तो फिर काम जल्दी जल्दी नहीं। सो आज का मतलब ये कि प्रिपरेशन एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। अगर थोड़ी सी प्लानिंग और रोज की कुकिंग बन जाती है क्विक, इन्हीं के चलते तो क्यों ना करें। बस RM2 पर म्यूजिक के साथ साथ मिलते रहेंगे ऐसे ही स्मार्ट हाउस होल्ड और लाइफ स्टाइल के टिप्स, साथ जुड़े रहिए।
0: You're listening to RM2, a Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: चलिए बॉलीवुड की बात करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ किस्से होते हैं बॉलीवुड मूवी से जुड़े जिनके बारे में हमें अक्सर नहीं पता होता। करिश्मा कपूर ने एक ऐसी बात सामने रखी है, द मूवी इज कॉल्ड दिल तो पागल है। भाई आइकॉनिक फिल्म 1997 की। और वैसे कहते हैं कि ऐसा हुआ, बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने मना कर दिया कि वो रोल करेंगी इस मूवी के अंदर क्योंकि वो बहुत इंटीमेटेड हो गई थी बिकॉज ऑफ माधुरी दीक्षित। उनके साथ नाचना मतलब समझ में आता नहीं। वैसे तो अभी करिश्मा एंड माधुरी अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर आगे बहुत एक्साइटेड हैं, लेकिन जब दोनों की बात करें तो ये कहानी कुछ अलग ही थी क्योंकि करिश्मा ने ये बताया कि उनको बहुत एक कमाल की एक्ट्रेस माना जाता था माधुरी को, और जब वो बनने लगी तो हर कोई सोचने लगा कि ये कैसे होगा। तो बस कहानी क्या हुई चलिए बताते हैं।
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: यस यस, चोपड़ा साहब उनके डायरेक्शन में बनी मूवी, और एक ऐसा सीन था जिसके अंदर फेस ऑफ था, यानी कि डांस करना था माधुरी के साथ ऑपोजिट, और ये आपने देखा मूवी के अंदर हुआ, राइट? अपने रोल की बात करते हैं, उन्होंने कहा कि निशा, उन्होंने उसने वो कन्वेंशनल मोल्ड ऑफ अ हिंदी फिल्म हीरोइन उसको तोड़ दिया। निशा की कैरेक्टर के साथ ये जो बॉलीवुड में था ना कि स्टेरियोटाइप एक्ट्रेसेस, उनका जो मोल्ड था वो टूट गया, और ऐसा लगता कि जैसे अब आगे कहानी चलेगी, क्या होगा दोनों के प्यार में, किसकी जीत होगी। गूज़बम्प्स। नॉर्मली हीरो को लगता है कि वो हीरोइन को प्यार करे, लेकिन यहाँ पर एक लड़की सोच रही थी कि उसको क्या हो रहा है, इसको इतना प्यार करती हूँ। इमोशनल जर्नी थी और इतना स्पेशल था, करिश्मा ने शेयर किया। लेकिन कमाल की बात यह है कि दोनों के दोनों इतने कमाल के एक्टर्स हैं, कमाल के डांसर्स भी हैं, आमने सामने आना तो आइकॉनिक मूवी तो बननी ही थी। एंड दिल ले गई, ये जो कहानी थी ना वो जो गाने के साथ, वो बहुत ही फेमस होगी। चलिए इस गाने को एंजॉय करते हैं, वापस लौट कर आते हैं कुछ और किस्से, बिट्स एंड पीसेस फ्रॉम बी टाउन।
1: You can find me in the club, bottle full of bub, my mind got... You're listening to Musty Mornings.
3: I'm a Karina, kisi din aale pyaar mundiya tu...
1: Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

Face can't really forget जब face off हुआ था करिश्मा and माधुरी दीक्षित का दिल ले गई. अगर आपको भी ऐसे लग रहा है कि आपकी सांसें ले गया ये गाना, तो अभी आपको चाहूंगा बताना कि आप next gonna be another song जो लेके जाएगा सीधा 11 बजे के समाचारों की ओर. खाने पीने की बात है तो गाना साथ है.

0: अच्छा आपको याद है कि स्कूल के अंदर कभी कभी होता था कि टीचर देख रहा है लेकिन किसी को पेट में गुड़ गुड़ तो आवाज यही आती थी कि
1: भूख लगी जोरों की भूख लगी, मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी।

0: टाइम चेक एग्जैक्टली 11 एम स्टूडियो में आगे रश्मि जी उनसे मिलते हैं जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार. नमस्कार.
1: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार. समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं. सबसे पहले स्थानीय खबरें. सबसे पहले ये खबर, एक पुलिस वृहत पुलिस कार्रवाई चलाई गई. असल में ये कार्रवाई कल पोर्टलिस के उत्तर में चलाई गई जिसके दौरान 101 लोगों को गिरफ्तार किया गया. इस कार्रवाई का नाम रखा गया थंडर स्ट्राइक ऑपरेशन. असल में सुबह के 3 बजे से दिन के 2 बजे के बीच उत्तर के पुलिस डिवीजन की ओर से ये कार्रवाई चलाई गई और इसके दौरान कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया. कई इकाइयों को भी तैनात किया गया था और काफ़ी लंबे समय से संदिग्ध लोगों की तलाश की जा रही थी. कई जुर्म के लिए उन्हें भी गिरफ्तार किया गया. पुराने व्यवसाय मंत्री सुदेश कालीचरण और पूर्व वित्त मंत्री रंगानाथन पदयाचिकर से हिरासत में है. असल में दोनों ही पूर्व मंत्रियों पर पब्लिक ऑफिशियल यूजिंग ऑफिस फॉर ग्रेटिफिकेशन फॉर अनदर पर्सन के अस्थाई आरोप हैं. बता दें कि उन्हें फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की ओर से मैरिटाइम मर्सेंटाइल इंटरनेशनल कंपनी की तरफ से 2023 में ईंधन खरीदने का एक ट्रक दिए जाने से संबंधित सवालों के जवाब उन्हें देने थे. इन दोनों ही पुरुषों को आज बुधवार को भ्रष्टाचार के अस्थायी आरोप के चलते अदालत में पेश किया जा रहा है. आज बुधवार 17 जून से जल वितरण संबंधी समय सारिणी में बदलाव. असल में मोगाबाकवा की ओर से जिन इलाकों में पानी मुहैया किया जाता है अब से यहाँ पर दिन में 5 से 6 घंटे तक पानी उपलब्ध. इसके अंतर्गत वाटर रिसोर्सेज कमीशन के निदेशक लोमिस जगू ने लोगों से पानी जाया न करने और जिम्मेदाराना तरीके से जल का उपयोग करने की मांग की. बढ़ते हैं विदेशी समाचारों की ओर. अमेरिका और ईरान के बीच प्रारंभिक शांति समझौते पर सहमति बनी जिसके बाद अमेरिकी नाकेबंदी हटने से ईरानी बंदरगाहों से जहाज गुजरे और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई. अमेरिका और ईरान के बीच बहुप्रतीक्षित प्रारंभिक शांति समझौते पर सहमति बनने और उस पर ई हस्ताक्षर होने के बाद पश्चिम एशिया में सभी पक्षों का ध्यान अब लेबनान में युद्ध विराम पर टिक गया है. विश्व फुटबॉल कप के अंतर्गत अर्जेंटीना और अल्जीरिया के बीच खेले गए मैच में अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हरा दिया. लियोनेल मेसी ने खेल के 17वें, 60वें और 76वें मिनट पर गोल डाला. इस तरह उन्होंने 3 गोल बनाए, विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल बनाने के रिकॉर्ड की बराबरी की. उधर किलियान एम्बापे फ्रांस का रिकॉर्ड गोल स्कोरर बन गए. संक्षिप्त समाचार यही पर समाप्त हुए. आपने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद. कुछ ही समय में एक शोक समाचार. मिशन क्रॉसरोड लालमाची में 69 साल के 69 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती ज्ञान्ति सुबा. श्रीमती ज्ञान्ति सुबा पैदाशी नाम ज्योति, जो अनीता नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी आज दिन के ढाई बजे उनकी बेटी प्रियंका सुबह के घर मिशन क्रॉस रोड लालमाची से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लालमाची की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रोमेशन टुडे एट 2:30 PM. शुभमय डूबे इस परिवार के साथ हमारी दिली हमदर्दी है.
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: Here's back with the music, ladies and gentlemen. हम तो चाहते हैं कि आप हमारे साथ यूं ही रहें और 11 बजे से पहले मैंने चला दिया था कुकड़ू को, because I know it's the right time for you. यानी कि खाने पीने की बात हो ही जाती है. ऐसे बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि घर से थोड़ा खाना वाना प्लान करके, भाई तू तो ऐसा ही ये ले आई हो, मैं ये ले आऊंगा और मैं अपना खाली पेट खा लेना इससे पहले कि हो जाए लेट. हाँ, जरूरी है टाइम पे खाना. वैसे आप सोचिए कि इंसान भागा दौड़ी करता है, काम करता है, मेहनत करता है, परिश्रम करता है, सब कुछ करता है, लेकिन फाइनली खाने का टाइम ही नहीं मिलता. कैसी जिंदगी है. बस अपना मी टाइम होना बहुत जरूरी है. चलिए खाने पीने की बात करेंगे, लाइफ स्टाइल की बात करेंगे, हेल्थ एंड हैप्पीनेस की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये कहेंगे कि जहाँ पर म्यूजिक हो, मस्ती हो, साथ में हेल्थ, तो ये है परफेक्ट कॉम्बिनेशन. रेडियो कुछ ऐसा जो पसंद करता है पूरा नेशन.
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: अच्छा कुछ शाम पहले बात करते हैं कि कैसे आप गार्लिक या जिंजर को पेस्ट बनाकर रख सकते हैं फ्रिज के अंदर। काफी टाइम तक उसको रखा जा सकता है, लेकिन कई लोग उसमें थोड़ा सा ऑयल भी डाल देते हैं, वो जो टॉप होता है ना, हाँ इसलिए क्योंकि वही फंगस या कोई भी मुश्किल ना हो। वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए। इट्स ऑलवेज नाइस कि आप इसमें शामिल होते हैं। अच्छा ये भी कहते हैं कि जब आलू को स्टोर करना हो तो उनको प्याज के साथ मत रखो। ऐसे नहीं कि दोनों जानी दुश्मन हैं, लेकिन उनके बीच में ना गैसेस रिलीज होती हैं जिनसे जल्दी वो ख़राब हो जाते हैं। सो ठंडी और डार्क जगह उनके लिए बेस्ट होती है। सो नेक्स्ट टाइम आप सोचें उनको स्टोर करना है कहाँ पर, वहाँ पर जहाँ दोनों अलग अलग हों।

0: नहीं तो दोनों के बीच में कहीं प्यार ना हो जाए और प्यार की गैसें छूट ना जाए।
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings. Radio Musty.

0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: Hey guys, very good morning. 11:26, 17th of June, Wednesday का दिन और दिन हो रात हो गर्मी बरसात हो कैसे भी मौसम हालात हो आपका साथ हो तो क्या बात हो. Right on. विकास आपके साथ एंड दिस इज योर मस्ट मॉर्निंग शो. इससे पहले कि 12 बजे खाने पीने का प्लान बने हमारे पास बहुत सारे विजिटर्स यहाँ पर. आई जस्ट वांट टू से हेलो. ये किसने स्टूडियो में इन्वेजन कर दिया है? कौन आ गया है? लेट मी टेल यू, माउंट व्यू स्कूल से आ गए यहाँ पर बहुत सारे बच्चे. एंड इट्स ऑलवेज नाइस टू सी दिस यंग एनर्जी, ये स्माइल्स और ये देखना कि ये रेडियो चलता कैसे है. सो अभी हमारे साथ कौन है, चलिए उनसे मिल लेते हैं. हाय, गुड मॉर्निंग.
3: हाय, गुड मॉर्निंग.
2: Okay, Yusuf हमारे साथ हैं and he was the one who said, okay, I'm going to be in front of the mic. So tell me a little, Yusuf, coming to the studio, MBC Radio, how's the feeling?
3: Hi, my name is Yusuf. I'm from Mount View.
2: Mm-hmm. And how do you like it being in the studio? Tell me.
3: It feels good.
2: It's I know it's a little stressful because, you know, putting the headphones on in front of the mic, something you haven't done, but it's part of the learning process, right? So school ke saath yahan par aaye hain, kuch seekhne ka mauka mil raha hai aur kuch janne ka mauka mil raha hai radio ke saath. Ali, tell me, what kind of songs you like?
3: I don't really listen to music.
2: Mm-hmm. Okay. And when you look at the exam papers, then some music starts playing in your head, no? What is this question? Ab kya karu? Itna sab kuch hota hai. But always nice. I think it's good to be connected with music. Jaise kehte hain ki music day is right here. You know, when is music day?
3: Yes.
2: Tell me. It's in which month? Exam time. Tell me. Anybody out there? June. Right, it's June, 21st of June, right? So, जहाँ पर हम हमेशा हर दिन म्यूजिक को सेलिब्रेट करते हैं वहीं पर हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ते हैं रेडियो के जरिए, इंटरनेट के जरिए और यहाँ पर स्टूडियो में भी आकर. So, अभी यूसुफ, any message you would like to pass on to your fellow students, your friends and all those listening in the studio? You want to say something? Nothing at all. He just wants to smile and say thank you. Do you want to say thank you?
3: Thank you.
2: All right. Thank you so much for paying us a visit. And let me tell you, बहुत मजा आ रहा है जब बच्चों से कुछ सीखने का मौका मिलता है. कैसे मुस्कुराएं, जिंदगी को ऐसे ही बाहें खोल के गले लगाएं.
0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio.

अच्छा आप देखो कि काफ़ी लोग जो घर से शुरुआत करते हैं एक बहुत ही हैप्पी मूड के साथ और काम पर जाते हैं, इट्स ऑलवेज अ पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव सोच एंड अप्रोच, और काम भी बिल्कुल फिट एंड फाइन होता ही है ना। तो बस अपने घर को एक ऐसी जगह बना लीजिए जहाँ पर आप आकर खुशियों को महसूस कर पाएं, अपने आप को रिचार्ज कर पाएं। नो डिफरेंसेस, नो ब्रिजेस टू कवर, खुशियाँ चारों ओर।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: यहाँ पर कुछ मैसेजेस और उनके बाद चलते हैं कुछ और किचन टिप्स की तरफ. और यहाँ पर कहते हैं प्लीज एक गाना टू वासेन और 61 इयर्स के हो गए हैं पद्मिनी जैनसेन, साथ में लीना है, उनकी पूरी फैमिली मालेन, साथ में रुदेश हैं, जो वेन विमी की तरफ से बहुत सारा प्यार है, थैंक यू सो मच. वहीं पर अनीता जी, उन्होंने कहा कि अच्छा कभी कभी होता है कि आपने नींबू छोड़ा है अपने फ्रिज में और वो बड़े बड़े सूख जाते हैं.

ये तो सर बात है, अब करें तो क्या करें। अगर आपके पास भी ऐसे ही नींबू हैं जो सूख गए, तो कट करने से पहले 10-15 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव में हल्का सा वार्म कर लीजिए, उसके बाद हाथों से थोड़ा रॉक एंड रोल, नहीं रॉक को छोड़ दीजिए, थोड़ा सा रोल कर लीजिए, उसके बाद देखेंगे कि ज्यादा जूस निकलेगा और एक भी बूंद अंदर नहीं फंसी रहेगी। नाउ टोटली अप टू यू, लेकिन कभी अगर आपको लगता है कि ये जो नींबू है फेंकने पड़ेंगे, एक्चुअली इनको माइक्रोवेव में डालकर आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। गिव इट अ ट्राई और हमें बताइए 5499-1294 पर।

अरे साहब, दिल की बात करें तो दिल कभी कभी बातें नहीं कह पाता, लेकिन इट्स ऑल अबाउट पुटिंग योर वर्ड्स एंड थॉट्स इनटू मैसेजेस 5491294 पर। आप नेक्स्ट गोना बी निल मनी रेट्रो रिदम।

0: RM2 Radio Musti.
1: The time is brought to you by McDonald's.
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
0: Radio Musti.
3: North. South.
0: 103.5.
3: East. West.
0: 96.4.
3: Center.
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: दिन के 12 बजे है। चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे रजनी जी नमस्कार।
6: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं। पूर्व मंत्री सुदेश कालीचरण और रंगानाथन पादयाची को भ्रष्ट

0: चार के अस्थाई आरोपों के चलते आज पोटली अदालत में पेश किया गया है। दोनों ही पुराने मंत्रियों पर पब्लिक ऑफिशियल यूजिंग ऑफिस फॉर ग्रेटिफिकेशन फॉर अनदर पर्सन के अस्थाई आरोप हैं। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की तरफ से मैरिटाइम मर्सेंटाइल इंटरनेशनल कंपनी की तरफ से 2023 में ईंधन खरीदे जाने के एक कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उन्हें बुलाया गया था और दोनों को भी गिरफ्तार किया गया। आज बुधवार 17 जून से जल वितरण संबंधी कैलेंडर में बदलाव। जी हां, वागोवाका की ओर से जिन इलाकों में पानी मुहैया किया जाता है अब से यहां पर दिन में 5 से 6 घंटे तक पानी उपलब्ध। संबंधित इलाके वाकवा क्यूपी कैट्रबोन बुबासे रोजिल मुका सैपिया और वियनो जिले के एक हिस्से हैं। वाटर रिसोर्सेज कमीशन के निदेशक ने पानी जाया न करने और जिम्मेदाराना तरीके से जल का उपयोग करने की मांग की। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले सप्ताहों के दौरान तापमान में बदलाव के चलते देश में स्वास्थ्य संबंधी इन्फेक्शंस के मामलों में वृद्धि देखी गई है। सैनिटरी अधिकारी इस वृद्धि से चिंतित हो चले। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि कई वायरस मौजूद हैं जिसके मद्देनजर ऐसी स्थिति बनी हुई है। विदेशी समाचारों में वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आज करीब 1% की गिरावट दर्ज की गई क्योंकि निवेशक और कारोबारी इस संभावना का आंकलन कर रहे हैं कि ईरान से जुड़ा संघर्ष समाप्त हो सकता है और हॉर्मुज जल मार्ग फिर से खुल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.72% गिरकर $78.39 प्रति बैरल आ गया है, जबकि अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड लगभग 1% फिसल कर $75.35 प्रति बैरल पर पहुंच गया। पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के अंतरिम समझौते से जुड़ी जानकारी सामने आने के बाद बाजार में बिकवाली का दबाव बढ़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तेहरान परमाणु हथियार हासिल नहीं करेगा, जबकि एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद ईरान को तेल बेचने की अनुमति दी जाएगी। और स्पोर्ट्स न्यूज, विश्व फुटबॉल कप में अर्जेंटीना और अल्जीरिया के बीच खेले गए मैच में अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हरा दिया। लियोनेल मेसी ने खेल के 17वें, 60वें और 74वें मिनट पर गोल डाला। इस तरह उन्होंने 3 गोल बनाए, विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल बनाने के रिकॉर्ड की बराबरी की। उधर किलियान एम्बापे फ्रांस का रिकॉर्ड गोल स्कोरर बन गए। फ्रांस और सेनेगाल के बीच खेले गए मैच में फ्रांस ने सेनेगाल को 3-1 से हराया, जबकि नॉर्वे ने ईराक को 4-1 से पराजित किया। संक्षिप्त समाचार यहीं पर समाप्त हुए। आपने ध्यान दिया इसके लिए बहुत धन्यवाद। कुछ ही समय में एक शोक समाचार। मिशन क्रॉसरोड लालमाची में 69 साल के 69 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती ज्ञानती सुबा, श्रीमती ज्ञानती सुबा पैदाशी नाम ज्योति जो अनीता नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ थी आज दिन के ढाई बजे उनकी बेटी प्रियंका सुबह के घर मिशन क्रॉस रोड लालमाची से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लालमाची की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM। शोक में डूबे इस परिवार के साथ हमारी दिली हमदर्दी है।
1: Retro Rhythm
2: RM2 Radio Musti.

0: Retro Rhythm. गुड आफ्टरनून, 12:11 हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं नमनी और आप सुन रहे हैं अभी आपका अपना रेट्रो रिदम, जहां हर एक गाना एक याद है, हर एक धुन एक कहानी है और हर सुर आपको ले जाएगा उन सुनहरे 70s, 80s एंड 90s के दौर में। तो तैयार हो जाइए क्योंकि नॉस्टैल्जिया के इस म्यूजिक जर्नी के लिए, क्योंकि अगले कुछ घंटों में, यानी कि उन 2 घंटों में आप तक खूबसूरत सा गीत पहुंचाने वाले हैं। तो आप यहीं पर जुड़े रहिए हमारे साथ और एंजॉय कीजिए। अगर अभी आप लंच कर रहे हैं तो आपको विश करती हूँ बन अपेटी।
1: रेट्रो रिदम RM2 रेडियो मस्ती।

0: रेट्रो रिदम।
1: आज तो नशा ऐसा चढ़ा है पूछो ना यारो। अरे गाने के बोल एग्जैक्टली यही सीन डिस्क्राइब कर रहे हैं। मस्ती आफ्टरनून जारी है अभी आपके रेट्रो रिदम में नमनी के साथ। पुराने गानों की बरसात हो रही है 70s से लेकर 90s तक और आपके मैसेजेस भी आ रहे हैं फुल स्पीड पर। तो कुछ ही देर में पढ़ने वाले हैं आपके मैसेजेस डेडिकेशंस को और अगर है कोई स्पेशल आपके जिंदगी में तो उनके लिए इजहार कर दीजिए 5499-1294 पर।
0: Retro Rhythm
2: RM2 Radio Musti

मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं ये चांद है या तुम्हारा कंगन सितारे हैं या तुम्हारा आंचल हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो कहीं नहीं हो मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो यहीं कहीं हो

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है उधर भी।

0: रेट्रो रिदम।
1: ये कहाँ आ गए हम, अरे सही जगह पर आए हो। आरएमजू रेडियो मस्ती के साथ आप कनेक्टेड हुए हो। गुड आफ्टरनून। सो एज प्रॉमिस्ड आपके मैसेजेस को पढ़ते हैं। अब है सोनिया जी, कह रहे हैं नाइस सिलेक्शन, गाना चांद मेरा दिल मांग रहे हैं। जरूर जी, ढूंढ कर आपके लिए चिल्लाएंगे। जरूर आपने मांगा है, थोड़ी मना कर सकते हैं। हमारे बड़ी यालेज भी साथ दे रहे हैं सुखनाम से। हेलो, कैसे हो आप? आप विश कर रहे हैं सभी को हैप्पी वेंसडे। हाउ स्वीट ऑफ यू। हमारे साथ कनेक्टेड अभी है ज्योति जी भी, जो शातू बनारस से है। नेक्स्ट गाना आशी रेखा सुरेखा एंड माधव फैमिली, और मेरे लिए भी थैंक यू। जना जी भी कनेक्टेड है, यशवंत जातू जी को भी बड़ा सा हेलो। तो साथ देते रहिए ऐसे ही अपने रेट्रो रिदम में। नेक्स्ट गाना डेडिकेटेड है आप सभी सुनने वालों के नाम। हैव अ ग्रेट आफ्टरनून वाइबिंग विद यू आरएमटू रेडियो मस्ती।
0: यू आर लिसनिंग टू आरएमटू रेडियो मस्ती।

0: Retro Rhythm.
1: जीने के हैं दिन बस चार। उषा जी को सब पता था, एंड ऑल्सो 90s के बच्चे याद करेंगे वो कैसेट रिवाइंडिंग का जमाना, वॉकमैन का क्रेज और रेडियो के सामने बैठकर फेवरेट गाना रिकॉर्ड करने का एक्साइटमेंट। और इसी दौर से आ रहा है एक ऐसा गीत जो शायद आपके दिल लग के किसी कोने में भी आज बसा हुआ है, तो आपको फिर से उन खूबसूरत पलों को याद कराने के लिए रेट्रो रिदम का ये शो बना है। तो यही पर मेक श्योर स्टे कनेक्टेड आरएम2 रेडियो मस्ती पर।

0: को देखने दो,
1: जल भी रहे हैं।
0: अरे तो चलने दो,
1: खुली सड़क है बाबा।
0: तो क्या हुआ पाई?
1: हाँ तो हट जाए
0: हो जाए।

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: दिन के एक बज रहे हैं। सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे सुमेरा नमस्कार।
4: नमस्कार रौदाब। पुरानी वित्त मंत्री रंगाना देन पर्याची और पूर्व श्रम मंत्री सुदेश कालीचरण ने कल रात पुलिस हिरासत में बताई। आज दोनों करप्शन के अस्थाई इल्जाम के तहत पोटली की इंटरमीडिएट अदालत में पेश हो रहे हैं। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की जांच के दौरान मर्केंटाइल एंड मैरिटाइम ग्रुप की मॉरिशस शाखा की निदेशिका करीना निक्जिशक के फोन से प्राप्त कुछ जानकारियों के आधार पर इन दो पूर्व मंत्रियों से पूछताछ की जा रही है। पिट्रोली पैदावारों की खरीद के लिए 30 बिलियन रुपए के ठेके के संदर्भ में रंगानादेन पर्याची और सुदेश कालीचरण पर मुकदमा चल रहा है। 16 जून की तारीख दक्षिण अफ्रीका के लिए प्रतीकात्मक है। युवा दिवस मनाया जाता है जो 1976 में सोवियतो की घटना की याद में है। हजारों की तादाद में छात्रों ने उस वक्त भेदभाव के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। आज 50 साल बाद मॉरिशस में दक्षिण अफ्रीका की सफारत ने ओरेम गॉर्डन थियानो में एक औपचारिक रिसेप्शन का आयोजन किया। कल मनाए गए इस दिवस के मौके पर गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर

0: कुल और प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम खास मेहमान थे। कूटनीतिक दल के मेंबरानों को भी की भी हाजिरी रही है। आज मुसलमान कौम के लिए नए साल का आगाज हुआ है। ये 1448 हिजरी है। मुहर्रम महीना एक मुकद्दस माह माना जाता है। सबसे अजीम वाकया करबला का है जब हजरत मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन ने दीन और हक के लिए अपनी जान दी थी। इस महीने की 10वीं तारीख बड़ी अहमियत की हामिल है जिसे यौम आशुरा कहा जाता है। विदेश में G7 शिखर सम्मेलन में सभी नेता वचनबद्ध रहे हैं कि रूस की अर्थनीति पर दबाव बढ़ाना चाहिए, नए संकल्प का समर्थन करने और इसे तेजी से अमल में लाने के लिए हवाई प्रतिरक्षा ताकतों के अलावा इंटरसेप्टर्स को फराहम किया जाएगा। नेताओं ने कहा कि वो गैस और तेल के क्षेत्रों में रूस पर अपनी पाबंदियां और ठोस करेंगे। और फुटबॉल में एक बार फिर फैंस ने मैदान के शेर लियोनेल मेसी का कमाल देखा। उन्होंने अपना पहला वर्ल्ड कप हैट्रिक कायम कर दिया। अपने 16वें गोल करके लियोनेल ने साबित कर दिया कि उम्र की कोई सीमा नहीं होती। मेसी ने अल्जीरिया के मुकाबले में अर्जेंटीना के लिए 3 गोल कर दिए। फुटबॉल परस्तारों के लिए ये मैच काफी यादगार रहेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। रॉयल रोड वादिजा मुगत में 51 साल के 51 ईयर्स ओल्ड श्री सूर्यदेव सीबर्न, जो सूरज के नाम से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल साढ़े ग्यारह बजे इनकी पत्नी रेशमा सीबर्न के घर रॉयल रोड वादिजा मुगैद से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोम्बोलेन मेबर्ग की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11:30 AM। अली ब्रियम वाकवामी 63 साल के 63 ईयर्स ओल्ड श्री सुखबीर रामचंद, जो स्वराज के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थे कल 11 बजे इनकी पत्नी मालिनी रामचंद के घर आली ब्रियों वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आली ब्रियों की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। NHDC ग्रांबेलिया में 52 साल के 52 ईयर्स ओल्ड श्री मोगानादेन किस्नासामी, जो अजागेन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थे कल साढ़े बारह बजे इनके घर NHDC ग्रांबेलिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिवियादी ख्याल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 12:30 PM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
1: NBC Play, NBC Radio.tv. Retro Rhythm. RM2.

0: Retro Rhythm.
1: अगर बॉलीवुड म्यूजिक एक बगिया है तो किशोर कुमार जी उनके सबसे रंगीन कली थे। उनकी आवाज में शरारत भी थी, रोमांस भी था, दर्द भी था, इसीलिए आज भी उनके गाने हर प्लेलिस्ट का हिस्सा है। गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका वंस अगेन आरएमटू रेडियो मस्ती पर ही। तो जारी रखते हैं आपके रेट्रो रिदम के इस खूबसूरत सफर को। इट्स नमनी 2 बजे तक आपका साथ देते रहेंगे, सो मेक श्योर टू स्टे कनेक्टेड यहीं पर।

0: Nasty
1: Retro Rhythm.
2: 90s में अगर किसी ने अपनी मुस्कान और डांस से सबका दिल जीता था ना, तो वो थी माधुरी दीक्षित। चाहे एक दो तीन हो या धक धक करने लगा, उनके गाने और डांस स्टेप्स आज भी आइकॉनिक है। एंड फिलहाल में ही वो नजर आई माँ बहन की मूवी में, एंड अभी भी उनके स्टेप्स कह सकते हैं अप्सरा से कम नहीं है। तो चलिए और एक नगमा हो जाए आप सभी के नाम जो कनेक्टेड है अभी हमारे साथ अपने ही रेट्रो रिदम के इस खूबसूरत सफर में।
1: Retro Rhythm
0: RM2 Ready.

0: सर।
1: नमस्कार।
0: कहिए क्या सुनेंगे आप?
1: अरे पहले ये कहिए कहाँ थी आप?
0: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।
1: कैसे?

0: रेट्रो रिदम।
1: इंतजार तो आप भी कर रहे थे कि कब नीलमणि पढ़ेगी द रेस्ट ऑफ योर व्हाट्सएप मैसेजेस, तो चलिए आपको और इंतजार नहीं करवाएंगे। इटली से आप है राजन देवी जी, नाइस प्रोग्राम। अगर हो सके तो मेरे लिए झूम बराबर झूम शराबी का गाना आप चला देना, बेस्ट क्वालिटी सॉन्ग था, डेडिकेटेड है आपके डीबी ब्रदर्स के लिए जो वाकवा के रहने वाले हैं। कॉटेज से वी हैव यशवंत जातू जी, स्पेशल रिक्वेस्ट मांग रहे हैं मुकेश जी का गाना क्या खूब लगती हो। अरे आपने तो मेरे अगले गाने क्रिस्टल बोल में देख लिया क्या, डेडिकेट कर रहे हैं आप जट्टू फैमिली के लिए जो मोटा लोंग के रहने वाले हैं। जना जी की तरफ से भी बेटी रीमा, जेनिता, यूवी, शेषता, कृषि, शिवशरण फैमिली फ्लैग के लिए गाना, तो हो जाए सॉन्ग्स खास आपके नाम और जो भी कनेक्टेड है वो नीलमणि इन योर रेट्रो रिदम।
0: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: हो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: रेट्रो रिदम।
1: गाने में अगर इंस्ट्रूमेंट्स जैसे गिटार या ड्रम्स हो तो गाना परफेक्ट हो जाता है और कानों को भी और सुनने का मन करता है। लेकिन बट इट्स टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ, मगर आप यहीं पर रहना क्योंकि नेक्स्ट शो बॉम्बे टॉकीज का है, जहां पर बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज आपको मिलने वाले हैं अलोंग विद सम अमेजिंग लेटेस्ट म्यूजिक। तो यहीं पर रहना कि नेक्स्ट डे हैव अ नाइस आफ्टरनून विद योर आरएमटू रेडियो मस्ती।
0: रेट्रो रिदम
2: आरएमटू रेडियो मस्ती।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है सुमेरा अकबर अली। आपको नमस्कार और आदाब।
1: नमस्कार और आदाब। पुराने वित्त मंत्री रंगानाथन पर्याची और पूर्व श्रम मंत्री सुरेश कालीचंद ने कल रात पुलिस हिरासत में बताई आज दोनों करप्शन के अस्थायी इल्जाम के तहत पोटली की इंटरमीडिएट अदालत में पेश हो रहे हैं। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की जांच के दौरान मर्केंटाइल एंड मैरिटाइम ग्रुप की मुर्शिद शाखा की निदेशिका करीना निक्जिस के फोन से प्राप्त कुछ जानकारियों के आधार पर इन दो पूर्व मंत्रियों से पूछताछ की जा रही है। पेट्रोली पैदावारों की खरीद के लिए 30 बिलियन रुपए के ठेके के संदर्भ में रंगानाथन पर्याची और सुरेश कालीचंद पर मुकदमा चल रहा है। 16 जून की तारीख दक्षिण अफ्रीका के लिए प्रतीकात्मक है। कल युवा दिवस मनाया गया जो 1976 में सोवियतों की घटना की याद में है। हजारों की तादाद में छात्रों ने उस वक्त भेदभाव के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। आज 50 साल बाद मुर्शिद में दक्षिण अफ्रीका के सफारत ने ओरम गॉर्डन थियानो में एक औपचारिक रिसेप्शन का आयोजन किया। मौके पर गणराज्य के राष्ट्रपति धर्म

0: बीर गोकुल और प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम खास मेहमान थे। कूटनीतिक दल के मेंबरानों ने भी हिस्सा लिया। आज मुसलमान कौम के लिए नए साल का आगाज हुआ है। ये 1448 हिजरी है। मुहर्रम महीना एक मुकद्दस माह माना जाता है। सबसे अजीम वाकया करबला का है, जब हजरत मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन ने दीन और हक के लिए अपनी जान दी थी। इस महीने की 10वीं तारीख बड़ी अहमियत की हामिल है, जिसे यौम अशूरा कहा जाता है। मुसलमान कौम को नए इस्लामी साल की बधाई। G7 शिखर सम्मेलन में सभी नेता वचनबद्ध रहे हैं कि रूस की अर्थनीति पर दबाव बढ़ाना चाहिए, नए संकल्प का समर्थन करने और इसे तेजी से अमल में लाने के लिए हवाई प्रतिरक्षा ताकतों के अलावा इंटरसेप्टर्स को फराहम किया जाएगा। नेताओं ने कहा कि वो गैस और तेल के क्षेत्रों में रूस पर अपनी पाबंदियाँ और ठोस करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार और आदाब।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: So well friends, 2:06 हो गए हैं afternoon time and warm welcome आपका. It's time for your Bombay Talkies, जहां पर हमारी जो talking time है ये तो चलता रहता है. आपके साथ हम बातें करते करते बी टाउन की खबरें आप तक पहुंचाते हैं. And I do hope that आज का ये जो Wednesday है आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए. मिड वीक तक पहुंच चुके हैं हम एंड आई डू होप मंडे ट्यूजडे वेंट रियली वेल. और अब आज वेडनेसडे आ गया है तो हम भी आपकी इस आफ्टरनून को खास स्पेशल बनाने वाले हैं. बी राउंड की अपडेट्स लेकर आए हैं आपके लिए विद सम लेटेस्ट सॉन्ग्स. ऐसा साथ देते रहिए, मैं हूं परी आपके साथ टिल 4 पीएम. गुड म्यूजिक एंड बी राउंड की लेटेस्ट अपडेट्स परोसेंगे आपको, कहीं मत जाइए. स्टे वेल कनेक्टेड.

So well friends, it's time for your Bombay Talkies, जहां पर बी टाउन की अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते हैं. So आपको बता दें, सनी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी और अली फैजल जैसे सितारों से सजी फिल्म बटवारा 1947 चर्चाओं में है. बीते दिन फिल्म की रिलीज डेट सामने आई थी, जब आमिर खान प्रोडक्शन ने सितारों के किरदारों से रूबरू कराते हुए पहली झलक साझा की थी. इस फिल्म का डायरेक्शन राजकुमार संतोषी कर रहे हैं, वहीं फिल्म का डायरेक्शन प्रोड्यूसर यानी कि प्रोडक्शन जो है वो आमिर खान ने संभाला है. और आपको बता दें दैट दमदार और इमोशन से भरपूर मोशन पोस्टर के बाद मेकर्स ने फिल्म के किरदारों को पोस्टर में साझा किया है. सितारों के किरदारों की झलक मजबूती, मासूमियत और अटूट जज्बे को दिखाती है और ये फिल्म बंटवारे की त्रासदी को दिखाएगी. साथ ही देश प्रेम की पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म में इमोशंस भरपूर देखे जाएंगे. फिल्म को लेकर बढ़ते उत्साह के बीच मेकर्स ने उन किरदारों से पर्दा उठाया है जो उस दौर में साहस और उम्मीद के प्रतीक बनकर उभरे थे. ऐसे वक्त में जब उनके आसपास की दुनिया बिखर रही थी, दिग्गज एक्ट्रेस शबाना आजमी दुर्गावती देवी माई के किरदार में नजर आएंगी और इस फिल्म के लीड हीरो सनी देओल सिकंदर मिर्जा के रूप में नजर आने वाले हैं. पोस्टर उन लोगों की कहानी बयां करता है जिन्होंने बंटवारे के कठिन दौर में भी हार नहीं मानी और अपने हौसले से मिसाल कायम की. सनी देओल पोस्टर पर बिलख कर रोते नजर आ रहे हैं. प्रीति जिंटा को हमीद बेगम के रूप में दिखाया गया है. पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा, बिखरी हुई दुनिया में उनकी कहानी हिम्मत की मिसाल थी, मिलिए उनसे जिन्होंने ये सब सहा है. फिल्म में सनी देओल के बेटे करण देओल भी नजर आने वाले हैं. करण को जावेद मिर्जा के रूप में दिखाया गया है और बता दी दैट बंटवारा 1947 इस साल 14 अगस्त को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है. और आपको बता दी दैट एक्टर अली फैजल, हबीब अनवर

0: के रूप में अभिमन्यु सिंह, याकूब खान और बाकी भी बहुत सारे कलाकार हैं जो डिफरेंट डिफरेंट किरदारों में नजर आने वाले हैं। सो आपको बता दें दैट यहाँ पर जो लिरिक्स है वो जावेद अख्तर ने लिखे हैं और फिल्म का प्रोडक्शन आमिर खान ने संभाला है और साथ ही हम आपको बता दें म्यूजिक दिया है A.R. रहमान ने। सो ये तो हम जानते हैं कि भाई एकदम दमदार स्टारकास्ट तो है ही, साथ ही साथ म्यूजिक बाय A.R. रहमान, लिरिक्स बाय जावेद अख्तर। सो लग तो रहा है कि काफी दमदार कुछ होने वाला है, काफी स्पेशल कुछ होने वाला है। सो दैट्स बंटवारा 1947 आपके लिए जो रिलीज होने वाली है ऑन 14th of August 2026।
1: More music in the mix.
2: आज आजादी है
3: बॉम्बे टॉकीज़ रेडियो मस्ती।
4: रेडियो मस्ती।

क्या 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरी, लिख ले कहीं, चल निकले कहीं आ।

आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा। रहने दे, मुंह बंद रख, आंखें जो कहती है कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन।

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: एंड वेल फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मूवी अल्फा की, जिसके टीजर के बाद काफ़ी लोग जो है वो इस फिल्म को ट्रोल कर रहे हैं, काफ़ी लोग को ये पसंद आ रही है। लेकिन कहते हैं ना, एनी काइंड ऑफ पब्लिसिटी इज़ अ गुड पब्लिसिटी जब बॉलीवुड की बात होती है। सो वेल, आपको बता दें, अल्फा गर्ल्स शर्वरी और आलिया भट्ट को फैंस कुछ यही कहकर पुकार रहे हैं। दोनों यशराज फिल्म के बैनर तले बनी फिल्म अल्फा में नजर आएंगी और ये एक स्पाई यूनिवर्स फिल्म है। बीते दिनों फिल्म का टीजर जारी किया गया था। आज बुधवार को आलिया भट्ट ने सोशल मीडिया पर शर्वरी के साथ कुछ फोटोज शेयर की है और अल्फा गर्ल्स, जी हाँ, इसी नाम से ये दोनों अभी आजकल फेमस हो रखी हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या है खबर। आलिया भट्ट ने जो तस्वीरें शेयर की है उनमें वो शर्वरी के साथ ट्विनिंग करती नजर आ रही है। दोनों ने अल्फा प्रिंट वाली एक जैसी सफेद यानी कि व्हाइट रंग की टी शर्ट पहनी हुई है। तस्वीरों के साथ आलिया ने कैप्शन में लिखा है, शर्वरी कहाँ हो। उनके पोस्ट पर शर्वरी ने कमेंट कर लिखा है, हाजिर हूँ मैम। दोनों एक्ट्रेसेस काला चश्मा लगाकर पोज देते हुए नजर आ रही है और दोनों का एक जैसा अंदाज देख नेटिजन्स उनको जुड़वा बहने बता रहे हैं। कुछ यूजर्स तारीफ में लिख रहे हैं, अल्फा गर्ल्स का अंदाज ही अलग है, और कुछ लिख रहे हैं, दोनों शानदार एक्ट्रेसेस एक फ्रेम में। वहीं निर्माता आदित्य चोपड़ा की स्पाई यूनिवर्स की फिल्म अल्फा का डायरेक्शन शिव रवेल कर रहे हैं और ये फिल्म 3 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। सो अभी के लिए तो शर्वरी एंड आलिया भट्ट जिन्हें हम देख पाएंगे उनकी अपकमिंग रिलीज अल्फा में, जो आजकल हो रही है काफी काफी पॉपुलर। सो चलिए दोस्तों, अभी के लिए ऐसी बी टाउन की खबरें हम लेकर आए हैं आपके लिए। कुछ गर्मा गर्म बॉलीवुड अपडेट्स आप तक पहुंचा रही हैं दैट्स योर बॉम्बे टॉकीज़। मैं हूं परी आपके साथ टिल 4 PM right here on RM2 Radio Musty।

0: listening to Radio Masti.
1: The time is brought to you by McDonald's.
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
0: Radio Masti.
3: North. South.
0: 103.5.
3: East. West.
0: 96.4.
3: Center.
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
5: Time check, exactly 3 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है सुमेरा अकबर अली. आपको नमस्कार और आदाब.
6: नमस्कार और आदाब. अदालती कार्रवाई की ये खबर से शुरू करते हैं. मैरिटाइम एंड मर्केंटाइल इंटरनेशनल की स्थानीय शाखा की निदेशिका करीना निजस और पूर्व मंत्री रंगनादेन पर्याची और सुरेश कालीचरण के बीच फोन पर हुई बातचीत के दौरान ईंधन की खरीद को लेकर ठेका प्रदान करने की बात हुई थी, जबकि मैरिटाइम एंड मर्केंटाइल इंटरनेशनल बिडिंग एक्सरसाइज में नहीं था. ये बात एफसीसी के प्रतिनिधि ने आज सुबह पोटलवी अदालत में कही, जबकि उन्होंने ये कहा कि पूर्व मंत्री रंगनादेन पर्याची और सुरेश कालीचरण को यानी उन्हें इसलिए हिरासत में लिया गया क्योंकि डिजिटल सबूत मिले थे और आज दोनों पोटली अदालत में पेश हुए. उन पर पब्लिक ऑफिशियल यूजिंग ऑफिस फॉर ग्रेटिफिकेशन फॉर अनदर पर्सन का अस्थाई आरोप दर्ज किया गया है. आज शर्त पर उन्हें रिहा किया गया. दोनों को 4 लाख रुपए की 2 जमानतें भरनी पड़ी हैं और कुछ सख्त शर्तें लगाई गई हैं. उन्हें किसी भी तरह करीना निजस और राजीव सरवान सिंह के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बात नहीं करनी होगी. आपको बता दें कि कई समर्थक अदालत में मौजूद थे. और ये चर्चा यानी मर्केंटाइल एंड मैरिटाइम इंटरनेशनल की बात करीब 3 सालों से चल रही है. स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने ईंधन की सप्लाई को लेकर मर्केंटाइल एंड मैरिटाइम इन्वेस्टमेंट लिमिटेड को $691 मिलियन बेशक अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा रुपए का ठेका प्रदान किया था. 16 जून की तारीख दक्षिण अफ्रीका के लिए प्रतीकात्मक. कल युवा दिवस मनाया गया. 1976 में सोवियतों की घटना

0: याद में हजारों की तादाद में छात्रों ने उस वक्त भेदभाव के खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी और मुशरस में दक्षिण अफ्रीका की सफारत ने ओरम गॉर्डन थियानो में एक औपचारिक रिसेप्शन का आयोजन किया। मौके पर गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल और प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम खास मेहमान रहे। कूटनीतिक दल के मेम्बरानों की भी हाजिरी रही है। G7 शिखर सम्मेलन में सभी नेता वचनबद्ध रहे हैं कि रूस की अर्थनीति पर दबाव बढ़ाना चाहिए, नए संकल्प का समर्थन करने और इसे तेजी से अमल में लाने के लिए हवाई प्रतिरक्षा ताकतों के अलावा इंटरसेप्टर्स को फराहम किया जाएगा। नेताओं ने कहा कि वो गैस और तेल के क्षेत्रों में रूस पर अपनी पाबंदियां और ठोस करेंगे। फुटबॉल में एक बार फिर फैंस ने मैदान के शेर लियोनेल मेसी का कमाल देखा। उन्होंने अपना पहला वर्ल्ड कप हैट्रिक कायम कर दिया। अपने 16वें गोल करके मेसी ने साबित कर दिया कि उम्र की कोई सीमा नहीं होती। उन्होंने अल्जीरिया के मुकाबले में अर्जेंटीना के लिए 3 गोल कर दिए। फुटबॉल परस्तारों के लिए ये मैच काफी यादगार रहेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार और आदाब।
1: More music in the mix.
2: Aaj Azadi hai.
3: Bombay Talkies. Radio Musti.
4: Radio Musti.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: वेल फ्रेंड्स, आफ्टरनून टाइम है और आफ्टरनून टाइम में थोड़ा सा तड़का लगाने लेकर आते हैं हमारा ये शो, जहां पर हम बी टाउन की

थोड़ा सा तड़का लगाने लेकर आते हैं हमारा ये शो, जहां पर हम बी टाउन की हम कभी नहीं बुला पाएंगे। तो श्रद्धांजलि टू गुरुकुल एंड ब्रजमोहन परिवार और मामी जी को आप याद कर रहे हैं। सो वेल, यहां पर बहुत सारी गुड विशेज, और जैसे हम कहते हैं कि एक सितारा बनकर वो हमेशा आपके साथ रहने वाले हैं। सो वेल, बहुत सारी गुड विशेज आपके पूरे परिवार को, स्टे स्ट्रांग एंड ऐसे ही गुड विशेज हम आप तक पहुँचाती रहेंगे। साथ ही यहाँ पर अब्दुल अंसायरा बानो कहते हैं दैट हल्की हल्की बारिश हो रही है, थोड़ी सी सर्दियाँ भी शुरू हो चुकी है, ऐसे में एंजॉयिंग द मौसम एंड एंजॉयिंग द सॉन्ग्स, थैंक यू सो मच, गाना होगा आपके नाम। एंड यहाँ पर मिस्टर संगा फ्रॉम फ्रांस हमारा साथ दे रहे हैं आप, गाना होगा आपके नाम। वी ऑल्सो हैव डियरेस्ट लक्ष्मी जयपोल, आप भी हमारा साथ दे रही हैं ऑन द वेव्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती, सो गाना होगा आपके नाम। हमारे अपारू परिवार बरसाती मौसम को एंजॉय करते हुए एंजॉय कर रहे हैं सॉन्ग्स ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती, सो गाना आपके लिए। एंड कहते हैं बरसाती मौसम में हम भी एंजॉय कर रहे हैं इन गानों को, सो गाना आप सभी के लिए। साथ देते रहिए और आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 5499-1294 पर, जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, अपने नॉर्मल मैसेजेस या फिर व्हाट्सएप के जरिए आप अपने मैसेजेस डेडिकेशंस हम तक पहुंचा सकते हैं, नंबर तो यही रहेगा। फॉर नाउ वी हैव एक और ब्यूटीफुल गाना कमिंग अप आप सभी के नाम जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एंजॉय योर टाइम ऑन द वेव्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती।

0: Radio Musti.
1: Your life is not complete until you have a little musty in your life. Radio Musti. All the way. The latest news and the greatest mix of music. Radio Musti.
0: Radio Musti.
2: Well, this one goes out for you, Rekha ji. वैसे कहती हैं सूफी गानों को जब भी सुनती हूँ तो बेटे की याद जरूर आती है, because जो अभी मैशअप हमने चलाया था, it has most of the songs जो आपके बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है. तो well, loads of love to Shreyas. And साथ ही साथ आपके नाम रेखा जी साथ दे रही हैं आप on the waves of RM to Radio Musti. So we have this beautiful गाना हमारे सभी listeners के नाम जो हमारा साथ दे रहे हैं. Afternoon time आपके लिए लेकर आए हैं B Town की updates and some latest songs. Enjoy this one.

सो वेल फ्रेंड्स, अभी के लिए इट्स टाइम कि मैं आपसे लूं अलविदा. और जाने से पहले आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस. आज यहां पर येशना देवी जोयश्री, आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. आप है येशना देवी जोयश्री जगरू, और विशेज आपके लिए ऑन योर बर्थडे, एंड दैट्स कमिंग फ्रॉम योर हस्बैंड आशीष. और साथ में है आपके इन लॉज, आपके पेरेंट्स, आपके सिस्टर्स सिद्धि एंड सरीना, आपको विश करना चाहते हैं वेरी हैप्पी बर्थडे. सो हैप्पीएस्ट बर्थडे टू यू डियर, एंड हैव अ ग्रेट वन. कहते हैं हेलो, इट्स रेनिंग, और इस वक्त हम तो एंजॉय कर रहे हैं इन गानों को. प्लीज़ प्ले अ सॉन्ग फॉर अस. आप जो भी है, आपके नाम करेंगे हम गाना डेडिकेट. आप है आरती शिबू, और गाना होगा आपके नाम, आपके परिवार के लिए. वीना जगे साहब एल बी मोहल से साथ दे रही हैं, और कहती है गाना सभी दोस्तों के नाम, एंड फॉर रेडियो मस्ती टीम, थैंक यू सो मच. आपने हमें याद किया, सो गाना होगा आपके नाम भी. और साथ ही यहाँ पर जीना जोयश्री साथ दे रही हैं आप. सो नेक्स्ट वन गोज आउट फॉर यू, सेंडिंग लोड्स ऑफ लव एंड लोड्स ऑफ गुड विशेज. अमरीका पुरुषोत्तम पोटलू इससे अभी हमारा साथ दे रही हैं डेडिकेटिंग.

गाना फॉर हस्बैंड मदन और सभी परिवार के लिए जो भेज रहे हैं बहुत सारा प्यार एंड स्पेशल विशेस। कॉफी और भजिया एंजॉय हो रहा है वो भी इस बरसाती मौसम में। तारिण श्वेता, रविश पिशा एंड लवशा सभी अपारू परिवार इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं। सो हैव अ वंडरफुल आफ्टरनून। और थोड़ी ही देर में आ रही है गिनी शालेकर और रफ्तार वाइब्स, सो उनका साथ निभाइए। आपकी और मेरी मुलाकात होगी कल सेम प्लेस सेम टाइम 2 से लेकर 4 बजे तक इन योर बॉम्बे टॉकीज।

0: खूबसूरत गानों का ये सिलसिला तो बस चलता ही रहेगा आपके और हमारे बीच में ऑन ऑनलाइन टू रेडियो मस्ती जस्ट चेक योर टाइम इट्स शार्प 4 पीएम ऑन
1: ऑनलाइन टू रेडियो मस्ती
2: द टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय मैकडॉनल्ड्स
3: मैकडॉनल्ड्स आई एम लविंग इट
2: एंड आरकेजी क्लासिक प्योर काउ घी शेयर द टेस्ट शेयर हैप्पीनेस
1: रेडियो मस्ती
4: नॉर्थ South
1: 103.5
4: East West
1: 96.4
4: Center
1: 99.4
5: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
5: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
6: The Musti. The Musti.
0: आइए सुनते हैं समाचार सुमेरा अकबर अली के साथ नमस्कार और आदाब
7: नमस्कार और आदाब आज सुबह पोटली अदालत में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने पुष्टि की सुरेश कालीचरण रंगानाथन पड़ियाची और करीना निजी के बीच फोन पर बात हुई थी मैरीटाइम एंड मर्केंटाइल इंटरनेशनल लिमिटेड को सन 2023 में 30 बिलियन रुपए का ठेका दिलवाने के सिलसिले में बात हुई जबकि उस वक्त ये कंपनी बिडिंग एक्सरसाइज का हिस्सा नहीं थी इन बातचीत से कंपनी को ईंधन की सप्लाई के लिए ठेका मिल गया सुदेश कालीचरण और रंगानाथन पड़ियाची को शर्त पर रिहा किया गया उन्हें किसी भी तरह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी मामले से जुड़े किसी भी व्यक्ति से बात करने का अधिकार नहीं है खासतौर पर करीना निजिस और राजीव सरवान सिंह से दोनों पर पब्लिक ऑफिशियल यूजिंग ऑफिस फॉर ग्रेटिफिकेशन फॉर अनदर पर्सन का अस्थाई आरोप दर्ज है हर एक को 8 लाख रुपए की जमानत चुकानी पड़ी और 10 मिलियन रुपए के रिकॉग्निजेंस फी पर दस्तखत करने पड़े मर्केंटाइल एंड मैरीटाइम ग्रुप का मामला करीब 3 सालों से FCC की एक जाँच की वजह है जिनमें कई गिरफ्तारियाँ भी की गई हैं पुर्तगाल के नए राजदूत ने गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल को अपना परिचय पत्र पेश किया स्टेट हाउस खेजवी में दोनों शख्सियतों ने द्विपक्षीय रिश्तों पर बात की खासतौर पर सहयोग की नई संभावनाओं पर चर्चा हुई जैसी रिन्यूएबल ऊर्जा ब्लू इकोनॉमी वगैरह युवा दिवस कल दक्षिण अफ्रीका के लिए युवा दिवस मनाया गया यानी 16 जून की तारीख दक्षिण अफ्रीका के लिए प्रतीकात्मक है 1976 में सोवियतो की घटना की याद में हजारों की तादाद में छात्रों ने उस वक्त भेदभाव के खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी और मॉरिशस में दक्षिण अफ्रीका की सिफारत ने ओरम गॉर्डन थ्रियानो में एक औपचारिक रिसेप्शन का आयोजन किया मौके पर गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल और प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम खास मेहमान थे विदेश में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि जुमे को ईरान के साथ तय किए जाने वाले समझौते को अंतिम रूप अभी तक नहीं दिया गया है उन्होंने ये बात जाहिर की कि अगर समझौता तय नहीं हुआ तो अमेरिका फिर से बमबारी करने लग सकता है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फ्रांस में G7 शिखर वार्ता में बोल रहे थे तो अभी के लिए बस इतना ही इजाजत दीजिए नमस्कार और आदाब
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: तो चलिए जी, टाइम बीटा चला जा रहा है फिलहाल के लिए, यह 4:15 तो बज चुके हैं और हमारे प्यारे प्यारे जितने भी लिसनर्स हमारा साथ दे रहे हैं, हम तो बस इतना कहेंगे, अरे मेरी जान ड्राइवर्स लोग, स्टीयरिंग को पकड़ो और सीट बेल्ट लगाओ और वॉल्यूम जो है अपने रेडियो का फुल ऑन कर दो, क्योंकि आप सुन रहे हो रेडियो मस्ती, जहां हर बीट में है फुल ऑन रफ्तार और हर गाने में है जबरदस्त तड़का। वैसे चाहे ट्रैफिक हो या हाईवे का सफर, हम तो रखेंगे आपका मूड सुपर चार्ज ऑन RM2 रेडियो मस्ती। तो इंजन गरम रखो मेरी जान और दिल भी, क्योंकि रेडियो मस्ती पे एंटरटेनमेंट कभी ब्रेक नहीं लगाता। ड्राइवर्स जितने भी साथ दे रहे हैं, हम तो कहेंगे कि ड्राइव केयरफुली, आराम से गाड़ी चलाना, हमेशा की तरह हम कहेंगे मेंटेन डिस्टेंस वाइल ड्राइविंग। मौसम ज़्यादा ठीक नहीं है, कई जगहों पे हल्की सी बरसात भी हो रही है और ऐसे बरसाती मौसम में रोड जो है काफ़ी स्लिपरी होते हैं, सो प्लीज़ मेंटेन डिस्टेंस वाइल ड्राइविंग। जो लाइट्स हैं वो ऑन कर लीजिए और रोड पर नज़र और रेडियो मस्ती पर प्यार, यही तो है आप लोगों का आफ्टरनून वाला सफर ऑन रफ्तार वाइब्स। जी हाँ दोस्तों, ये है आपका फेवरेट स्टेशन जो हर सफर को बना देते हैं नॉन स्टॉप पार्टी जैसा। तो वैसे आप हॉर्न कम बजाओ, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाओ और एंजॉय करो धमाकेदार हिट्स के साथ, फुल ऑन रफ्तार वाइब्स के साथ रेडियो मस्ती, जहाँ हर किलोमीटर के साथ जी हाँ हम बढ़ा देते हैं एंटरटेनमेंट का एक्सेलरेटर। सो हियर वी गो, लेट्स हिट दिस वन।
1: RM2 Radio Mastery.

0: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
1: RM2
2: Radio Musti

0: the latest news and the greatest mix of music. Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: बिल्कुल जी, ढेर सारा मस्ती हम लेकर आते हैं आप लोगों का साथ देने के लिए। वैसे रोड पे ट्रैफिक लेकिन मूड पे नहीं होना चाहिए। रेडियो मस्ती के साथ हर ड्राइव बन जाता है फुल ऑन मस्ती राइड। सुबह कल अप टर्न इट अप एंड जस्ट फील द रफ्तार वाइब्स मेरी जान। और फिलहाल के लिए आई गॉट अ गिफ्ट फॉर यू। यस, अगर आप बनना चाहोगे आज का लकी विनर इन योर रफ्तार वाइब्स, इज वेरी इजी। यू जस्ट हैव टू लिसन टू द क्वेश्चन वेरी केयरफुली और बस आराम से आपको मुझे सही जवाब भेजना है ऑन 5499124 पर 94, send me the right answer. आपका फुल नेम, सरनेम एंड फुल एड्रेस के साथ। जी हाँ, तो चलिए जी, फिलहाल के लिए अगर आप खेलोगे ऑन आवर एंटी रेडियो मस्ती, यू कैन विन अ वाउचर वर्थ 500 rupees ऑफर्ड टू यू बाय मिस्टिक वर्ल्ड। वैसे इफ यू आर लुकिंग फॉर द परफेक्ट गिफ्ट आइडिया, आई जस्ट हैव टू टेल यू, क्योंकि mysticworld.mu पर आप डिस्कवर कर सकते हैं एक्सक्लूसिव गिफ्ट कार्ड्स और जो गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी है, ओथेंटिक क्रिस्टल्स एंड स्टनिंग होम डेकोर। mysticworld.mu has exactly what you are looking for, my dear and lovely people. So visit the website today only on mysticworld.mu. Ya aap phone kar sakte hain on 5880-7652, 5880-7652. Aur filhal ke liye sawal bahut hi aasan, sahi jawab on 5499-1294 par. Try your luck and be my lucky winner. You just have to tell me the debut movie of Ranveer Singh in Bollywood. Ranveer Singh ne apni acting ki debut ki thi kaun si movie ke saath in Bollywood? 5499124, send me the right answer, full name, full address ke saath. Best of luck to you. You can be my lucky winner and win a voucher worth 500 rupees offered to you by Mystic World.

0: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
1: और M2
2: स्पोर्ट्स मैगजीन इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो द फ्लो एक्सपर्ट
3: स्पोर्ट्स न्यूज
4: रेडियो मस्ती इन द मिक्स.
5: तो चलिए जी, फुल ऑन सेट हो चुके हैं हमारे स्पोर्ट्स गुरु अरविंद इन द स्टूडियो. गुड आफ्टरनून
6: आपको. गुड आफ्टरनून रेडियो मस्ती लिसनर्स. सो द वर्ल्ड कप अब रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं. आज भी रिकॉर्ड बन सकता है क्योंकि पोर्टुगल की टीम मैदान में उतरेगी. इससे पहले जस्ट रिमाइंड कि आज सुबह अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हराया. तीनों गोल लियोनेल मेसी की ओर से, जो वर्ल्ड कप में ऑल टाइम लीडिंग गोल स्कोरर में बराबरी पे आ गया है. और इसके बाद ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 से हराया. तो काफ़ी गोल बने आज सुबह. आज क्या होगा, आज का जो मैच है इट्स गोइंग टू बी क्वाइट अर्ली, 9 बजे पोर्टुगल और कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बीच. पोर्टुगल की टीम साफ इरादे से सामने आई है, दे वांट टू विन द वर्ल्ड कप और फेवरेट टीमों में से एक है. क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वितिन्हा, ब्रूनो फर्नांडेज, जस्ट टू मेंशन अ फ्यू, इनमें काफ़ी नामी खिलाड़ी हैं जो अपने करियर को पूरा करना चाहेंगे इस वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ. सामने है कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अफ्रीकी टीमों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता. केप वर्दे ने जो किया उधर स्पेन के साथ, पोर्टुगल को वो दिमाग में रखना होगा. लेकिन पोर्टुगल में अनुभवी खिलाड़ी हैं, उनको पता होगा कोंगो को किस तरह से हराना है. और इंग्लैंड का मुकाबला आज है, इट्स मिडनाइट किक ऑफ इंग्लैंड के लिए अगेंस्ट क्रोएशिया. ये ग्रुप एल का पहला मैच होगा इंग्लैंड की एंट्री. इंग्लैंड भी इसी इरादे से आई है, 1966 के बाद इतने सालों का इंतजार पूरा कब होगा, कब फिर से दिल टेक इट बैक होम. इंग्लैंड क्रोएशिया पहला तगड़ा मैच, क्योंकि क्रोएशिया की टीम पिछले वर्ल्ड कप में थर्ड प्लेस पे आई थी, उसमें अनुभव की कमी नहीं है. बड़े बड़े मैचों में वो महारत ही बन जाते हैं. इंग्लैंड की टीम टोमास टुगेल अभी तक टीम को संभाल पाया है. हैरी केन जैसा अनुभवी खिलाड़ी है, हैरी केन जो बालों दो जीतना चाहता है. सो कल लियोनेल मेसी, किलियान एम्बापे, आज पोर्टुगल के लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड व्हाई नॉट हैरी केन इंग्लैंड के लिए क्रोएशिया के खिलाफ. और कल सुबह 3 बजे मैच होगा ग्रुप एल का, गाना वर्सेस पनामा. फिर सुबह 6 बजे ग्रुप के में उज़्बेकिस्तान कोलंबिया. और कल 8 बजे ग्रुप ए में ही चेक रिपब्लिक साउथ अफ्रीका. ये ग्रुप ए वाला मैच है, दैट मींस कल सुबह 6 बजे ग्रुप स्टेज के फर्स्ट राउंड के मैच पूरे हो जाएंगे. उसके बाद ग्रुप ए का जो दूसरा मैच होगा इस राउंड के लिए, सो 6 बजे इट्स गोइंग टू बी 8 बजे चेक रिपब्लिक साउथ अफ्रीका. फिर ग्रुप बी में स्विट्जरलैंड बोस्निया, ये 11 बजे. और सुबह कनाडा का मुकाबला कतार से होगा. ऐसे ही अब सेकंड राउंड के मैच शुरू होंगे. सो फर्स्ट राउंड के मैचों में हमने देखा किस तरह से अफ्रीकी टीमें काफ़ी मजबूत हैं, जैसे मोरक्को को हमने देखा, केप वर्दे को देखा, और सेनेगल ने भी कल अच्छा फुटबॉल खेला. और जो फेवरेट टीमें हैं तेवर दिखाने लगे हैं, जैसे फ्रांस और अर्जेंटीना. अभी इंग्लैंड क्या करेगा ये आज ही पता चलेगा. इसके अलावा एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट द मेसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीट, मास्टर क्लास फॉर एजेस कह सकते हैं. रियल मैड्रिड काफी सक्रिय है ट्रांसफर बाजार में.

0: में चुपके चुपके खिलाड़ियों को साइन करने लगा है और उसने सिल्वा को साइन किया ऑन फ्री ट्रांसफर। रियल मैड्रिड माहिर है फ्री ट्रांसफर में खिलाड़ियों को खरीदने के लिए। सो बेनहोदे सिल्वा रियल मैड्रिड में 2 साल का कंट्रैक्ट और वो मैनचेस्टर सिटी को छोड़ गया था पिछले सीजन। बार्सिलोना और एथलेटिको मैड्रिड भी उसके पीछे थे, लेकिन वो रियल मैड्रिड का दूसरा साइनिंग हो गया है फ्री ट्रांसफर पर। और इससे पहले मार्क कुकुरेला को खरीदा था 52 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर। रियल मैड्रिड अब इंटर मिलान के डिफेंडर डेंजेल डंफ्राइज और फ्रांस के डिफेंडर इब्राहिमा कोनाते को साइन करने के चक्कर में है। और एंटोनियो रुडिगर ने इस सप्ताह अपना कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया है रियल मैड्रिड के साथ। हल सिटी आ गया है प्रीमियर लीग में, लेकिन प्रमोशन लेने के बाद जब उसने मिडलसब्रो को हराया था इन द प्ले ऑफ फाइनल, गारंटी हो गया था कि उनको लगभग 200 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग मिलेगा। लेकिन ट्विस्ट हो गया इस गेम को जीतने के बाद, अब हल को खिलाड़ियों को बेचना होगा ताकि पोटेंशियल पॉइंट्स डिडक्शन न हो। द टाइगर्स ये लोग ओवर स्पेंड किए थे अराउंड 6 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग से, और PSR यानी प्रॉफिट एंड सस्टेनेबिलिटी कैलकुलेशन के अंतर्गत ये एक ब्रीच है और ऐसे में उनको खिलाड़ियों को बेचना होगा, नहीं तो पेनाल्टी पॉइंट्स यानी प्रीमियर लीग शुरू होने से पहले ही इनको कहना होगा कम अंक करो। क्रिकेट आज दो मैच चल रहे हैं, एक पूरा हो गया वैसे। अभी इंडिया और अफगानिस्तान के बीच हाँ ये दूसरा वनडे मैच लखनऊ में इंडिया के लिए 402 रन रखे। गिल का एक शतक रहा और अफगानिस्तान अभी 33-0 विकेट पर खेल रही है। जो बाकी इंडियन बैटर्स रहे, यशस्वी जायसवाल ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया, 4 रन, रोहित शर्मा 48, शुभम गिल 154, ईशान किशन 125, श्रेयस अय्यर 26, बाकी कुछ खास नहीं कर पाए। 402 रन अब अफगानिस्तान की टीम बैटिंग कर रही है, देखना है क्या होगा इस मैच में। उधर न्यूजीलैंड सेकंड टेस्ट न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच, और आज ही वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में लीड्स में इंडिया वुमेन वर्सेस नेदरलैंड्स वुमेन, ये मैच अभी थोड़ी देर बाद शुरू होगा। और श्रीलंका में आज जो मैच खेला गया इंडिया ए और अफगानिस्तान ए के बीच, इंडिया की टीम 101 रन से जीत गई। इंडिया ए की टीम 319 रन बनाकर पूरा किया पारी और अफगानिस्तान की टीम 218 रन में ऑल आउट हो गई। तो एक तरफ क्रिकेट, दूसरी ओर वर्ल्ड कप। भूलिएगा नहीं, आपको समय समय पर अपडेट्स देते रहेंगे रिगार्डिंग द वर्ल्ड कप। और अभी भी मैं जब आ रहा था, आई कुड सी मेनी पीपल एमबीसी, यहाँ पर वो एमबीसी प्ले को डाउनलोड कर रहे हैं, क्योंकि उसमें सभी मैच आ रहे हैं, सभी मैच, एक नहीं सभी मैच आ रहे हैं। सो इसका फायदा उठाना होगा आपको। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि अभी जो आने वाले मैच हैं, फ्रांस सेनेगल वाला तो आपने लाइव देखा, फिर विल बी हैविंग द मैच गाना पनामा लाइव, ये और चेक रिपब्लिक साउथ अफ्रीका, ये भी लाइव होगा एमबीसी टीवी पर। उसके बाद जर्मनी यूनाइटेड स्टेट्स ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी आइवरी कोस्ट, यूरुग्वे के वर्दे, नॉर्वे सेनेगल, इंग्लैंड गाना, साउथ अफ्रीका साउथ कोरिया, कुरासाओ आइवरी कोस्ट, सेनेगल इराक और क्रोएशिया गाना, ये नॉकआउट स्टेज के मैच हैं जो एमबीसी टीवी पे लाइव होंगे। लेकिन सभी मैच अगर लाइव देखना चाहते हैं, सो डोंट फॉरगेट डाउनलोड द एमबीसी प्ले, जिसमें आपको सब डिटेल्स दिए गए हैं किस तरह से विद ओनली 300 रुपीज आप अपने पॉकेट में सभी मैच ले जा सकते हैं। कुछ कहना चाहते हैं आप?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी तो हम आपको सुन रहे बड़े ध्यान से।
0: मैंने कुछ गलत कह दिया?
1: नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। अभी तो चलिए जी, फुटबॉल का नाम जो आप ले रहे हो, आजकल मैंने देखा बच्चे जो है ना, यू नो अरविंद जी, दे आर सो कीन टू वॉच वर्ल्ड कप। हमारे जमाने में क्या होता था कि हमारे मम्मी पापा बोलते थे कि यू नो इट्स वेरी लेट, यू कांट वॉच द मैच। आज के जमाने बच्चे में वो आते हैं और बोलते हैं कि मैं अलार्म लगा रही हूँ, अगर नहीं उठी तो प्लीज मुझे उठा लेना, मुझे सुबह 5 बजे मैच देखना है।
0: मुझे याद है लास्ट टाइम जब वर्ल्ड कप हुआ था, आई गेस इन मेक्सिको और इन इंग्लैंड, मेक्सिको 86, आई वाज 10 ईयर ओल्ड एट दैट टाइम। तो सुबह सुबह मैच चलते थे तो पापा उठकर मैच देखते थे और मुझे कहते उठकर जाकर पढ़ाई करो क्योंकि सुबह सुबह पढ़ना दिमाग
1: good,
0: में
1: good था. Mind,
0: तो मैं क्या करता था वो
1: बुक
0: नहीं रूम दरवाजा

0: सा टीवी के सामने ही था
1: एंगल ऐसे बनाते थे
0: ऐसे बनाते थे
1: सीधे आप देख सकते हो
0: तो की होल के जरिए मैं सीख रहा था तो दैट वाज
1: द क्रेज
0: दैट वाज अ पैशन दैट्स व्हाई द पैशन इज स्टिल देयर डोंट फॉरगेट कल सुबह 7:40 पर और 8:30 विल बी देयर फॉर द लेटेस्ट और आजकल लोग ब्रेकफास्ट कम ले रहे हैं गोल ज्यादा खा रहे हैं
1: अच्छा एक्चुअली आई विल टेल यू समथिंग यस्टरडे आई सॉ इट्स अ जोक है इट्स अ जोक आई सॉ समथिंग ऑन फुटबॉल ऑन द नेट सोशल मीडिया पे एक लेडी ने ऐसे एक लैंप पकड़ा एंड बोला कि जिन जिन को बोला कि प्लीज आई वांट टू की ना पर जितने पूरे दुनिया के हैंडसम हैंडसम जेंट्स हैं हमारे पीछे भागे तो जिन ने उसको फुटबॉल बना दिया
0: अच्छा ओके ओके और ये भी है ना कि जब आज क्या हुआ आई वॉज प्रिपेयरिंग द टेक्स्ट फॉर 7:40 वाला बुलेटिन तो सेम टाइम मैच चल रहा था एक तरफ अब मैंने कहा अभी कहने जा रहा हूँ मेसी का डबल हो गया और मैच जारी है जैसे ही आया नीचे रिकॉर्ड करने के लिए मेसी का हैट्रिक सो आई हैड टू चेंज
1: द एंटायर
0: टेक्स्ट
1: दिस इज व्हाट वी सेना एक एक सेकंड के अंदर यहाँ पे हिस्ट्री बदल सकती है
0: और फुटबॉल वर्ल्ड कप इज हिस्ट्री और हिस्ट्री का हिस्सा बनने के लिए सभी लोग तैयार हैं हम लोग भी हिस्ट्री का एक हिस्सा बनते हैं व्हेन वी गिव ऑल दिस इंफॉर्मेशन टू आवर लिसनर्स
1: थैंक यू सो मच अरविंद जी वेलकम
2: दिस मैगजीन वाज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेको द फ्लो एक्सपर्ट
3: Raftaar Vibes, Filmy Rides,
4: RM2,
5: Aaja ve aaja, Hai sajan mainu lut le gaya, Hai
4: Radio Musti.
2: Your life is not complete until you have a little Musti in your life. Radio Musti. All the way. The latest news and the greatest mix of music. Radio Musti.
4: Radio Musti.
1: तो चलिए जी थैंक यू सो सो मच साथ देने के लिए एंड फॉर चूजिंग अस एज योर रेडियो पार्टनर थोड़ी देर पहले हमने पूछा था एक बहुत ही आसान सा सवाल बताया गया था कि आपको मिल सकता है अ वाउचर वर्थ 500 रुपीस ऑफर टू यू बाय मिस्टिक वर्ल्ड ओनली इफ यू गिव द राइट आंसर हमने पूछा था कि रणवीर सिंह का जो डेब्यू मूवी है बॉलीवुड में उसका नाम क्या है द राइट आंसर इज बैंड बाजा बारात जी हाँ एग्जैक्टली बैंड बाजा बारात इज द राइट आंसर जो 2010 में रिलीज हुई थी हिंदी मूवी है एंड ही वॉज अपोजिट अनुष्का शर्मा दैट टाइम तो चलिए जी सही जवाब तो बहुत सारे लोगों ने दिए एंड लकी ड्रॉ में आज का नंबर निकल आया है हमारी प्यारी सी जवाहिया बीपन प्रवेशा का शी इज फ्रॉम रॉयल रोड रिव्या जुपर सो कंग्रेचुलेशंस माय डियर यू आर विनिंग अ वाउचर वर्थ 500 रुपीज ऑफर टू यू बाय मिस्टिक वर्ल्ड

0: Traffic Update.
1: You're listening to your number one radio station, यानी कि RM2 Radio मस्ती, और जितने भी ड्राइवर्स हमारा साथ दे रहे हैं, अगर आप कैपिटल यानी कि पोटली से नॉर्थ या साउथ की तरफ जा रहे हैं तो ध्यान रखिए, और मेजर रूट्स पर ट्रैफिक काफ़ी हैवी है और मूवमेंट स्लो हो चुका है, और पोटली से निकलने वाले रूट्स पर कंजेशन बिल्डअप हो रहा है। गजवी से फिनिक्स और साउथ बाउंड रूट्स पर भी व्हीकल्स की स्पीड काफ़ी स्लो है, और हल्की बारिश के बाद रोड्स कुछ जगहों पर स्लिपरी होते हैं, सो इसीलिए प्लीज सेफ डिस्टेंस मेंटेन रखें और स्पीड कंट्रोल में रखें। और अगर आप रोजिल या कैटोबोन में हो, एज यूजुअल स्लो मूविंग ट्रैफिक रिपोर्ट हो रहा है, एंड स्पेशली पीक आवर कम्यूटर्स के लिए ये प्रॉब्लम हो चुकी है, एंड आपकी सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारे लिसनर्स, तो सीट बेल्ट लगाए रखें, फ़ोन यूज़ ना करें वाइल ड्राइविंग, और पेशेंस के साथ अपना सफ़र कंटिन्यू रखें। और हाँ, अगर आपके एरिया में कोई ट्रैफिक अपडेट, एक्सीडेंट रिपोर्ट या रोड कंडीशन की इन्फॉर्मेशन है तो हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। ऑन RM2 रेडियो मस्ती आप सुन रहे हैं योर नंबर वन रेडियो स्टेशन, रोड की हर खबर सबसे पहले सबसे तेज़, तो चलिए सफ़र में मस्ती हर रास्ते की साथी हैं रेडियो मस्ती 5499 1294 पर। You can keep us update about the road traffic.
2: You're listening to Radio Masti.

0: हमारे प्यारे प्यारे RMTV listeners, आपका फिर से एक बार स्वागत है इन द सेकंड आवर ऑफ दिस ब्यूटीफुल शो एंड दैट्स योर रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइट्स विद मेगन शॉन RMTV रेडियो मस्ती. वैसे गाड़ी की स्पीड हो या म्यूजिक की भी, दोनों होनी चाहिए स्मूथ और हमेशा पावरफुल. सो आप हो ट्यून इन टू रेडियो मस्ती द अल्टीमेट डेस्टिनेशन, जहां पे हाई वोल्टेज म्यूजिक है, मस्ती भरा वाइब्स है और नॉन स्टॉप एनर्जी. तो क्लच छोड़ दीजिए, टेंशन छोड़ दीजिए और रेडियो मस्ती के साथ सफर को बना दीजिए एकदम ब्लॉकबस्टर राइड. बिल्कुल ऑफिस से निकल चुके हो, यू हिटिंग द रोड, सो ड्राइव केयरफुली. अगर आप घर पहुंच गए हो तो आराम थोड़ा सा कर लीजिए, फिर उसके बाद घर के कामकाज में लगे रहिए. अब वे के लिए मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपको किसी को विश करना हैप्पी बर्थडे या हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, दैट्स द राइट नंबर जहां पे आप हमें अपने दिल की बात, अपने डेडिकेशन, अपने विशेस भेज सकते हो. 5499 12 94 पर.
1: You're listening to

0: टू
1: रेडियो मस्ती।
0: कमला, आला सेंटी बॉन को टो ला की तो बेन दो परफ्यूम तो लोटो सी बेन दो परफ्यूम तो साल दे बेन सी बेन दो परफ्यूम टो तो कॉमिक टो दो चेक सा सैंडल आलो किक Toi, les sandales 24/7, toi.
2: Celle-là, tu peux en trouver ça. Fais que t'es beau, que celle-là.
0: Allo, kick gel air fresh no pocket size. Astier, me comprends. Tu mets air fresh no dans ton poste mon sport, tout.
2: Vraiment, tu es bien comique, toi. Hein? Allez, essaye tout. Allo, kick, peine à ce deuxième, ça.

टाइम बीटा चला जा रहा है और फिलहाल के लिए हम आपको बता रहे कि इट्स एग्जैक्टली 5:17 एंड यू आर लिसनिंग टू गिनीशा राइट नाउ ऑन आवर एंटी रेडियो मस्ती। आज है ऑलरेडी वेडनेसडे 17 ऑफ जून 2026। जी हाँ दोस्त, देखा जाए तो टाइम इतने जल्दी जल्दी बीटा चला जा रहा है कि हमें अंदाजा भी नहीं होता। और जैसे कि मैंने बोला है, टू ऑल दोस्त जो आज मना रहे हैं अपना जन्मदिन, तो चलिए उनको हम विश करना चाहेंगे लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। एंड वी डू हैव द नेक्स्ट वन स्पेशली टू ऑल दोस जो साथ दे रहे हैं, और ब्रदर इन लॉ गविन, जियाना, विदुषा, केविन, सिस्टर मानसा, रेशमी, आयन एंड देयर फ्रॉम लाल माटी एंड सटी सिचुन, शी इज फ्रॉम रिविया जोरा पा। उन्होंने गाने की मांग की है उन तमाम सुनने वालों के नाम, उनके फैमिली के नाम। हाय माय ब्यूटीफुल सिस्टर, आपकी बेबी अरशद के लिए, आपकी खुशियों के लिए, एंड वेल यू आर मिसिंग हिम सो मच, एंड दैट्स कमिंग फ्रॉम बेबी रेबिका। सो बेबी रेबिका जी, ये अगला गाना आपके नाम, तो अगला गाना फॉर यू टंग टंग, हे टंग टंग फॉर समवन जिनके बिना आप कुछ नहीं कर पाते हो। दैट्स सो मच लव, सो सो मच लव अंजलि की तरफ से, शी सेंडिंग योर वे माय डियर। एंड आई हैव अ स्पेशल बर्थडे हियर विश for your lovely wife Nidhi ke liye. Nidhi, you're celebrating your birthday and I just want to wish you a magical birthday on our into Radio Musti. It's your birthday today and best wishes goes out to you from your lovely husband Mr. Ashish, yani ki Kevish ke naam se main unko janti hu. Wo aapko wish kar rahe hain lots of love, happiness, abundant blessings, and aap dono ki jodi hamesha salamat rahe bhai. Itna jo aap ek dusre se bintaha pyar karte ho.

0: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
1: और M2
2: स्टूडियो की घड़ी में 5:28 हो चुके हैं। यू आर लिसनिंग टू गिनीशा राइट नाउ ऑन आवर इनटू रेडियो मस्ती। मॉरिशस के जितने भी रोड वॉरियर्स हैं, यानी कि हमारे जितने भी ये ड्राइवर्स हमारा साथ दे रहे हैं, प्लीज ड्राइव केयरफुली। बहुत सारे लोगों ने हमें फोन करके बताया है कि बारिश हो रही है अराउंड द आइलैंड, बहुत सारे ऐसे जगहों पे बरसात हो रही है एंड द रोड इज काफी स्लिपरी, सो स्टीयरिंग पे ग्रिप मजबूत रखो और रेडियो मस्ती का वॉल्यूम फुल ऑन रखो मेरी जान। ट्रैफिक हो या हाईवे, हम लेकर आए हैं नॉन स्टॉप हिट्स और फुल ऑन एंटरटेनमेंट। सफर लंबा हो सकता है लेकिन

बोडोमा का यहाँ एंट्री नहीं मिलेगी। वैसे गाड़ी चलाओ, स्मार्ट म्यूजिक सुनो, हाथ से सुनो, दिल से सुनो। आप हो रेडियो मस्ती के साथ, जहाँ हर बीट में एनर्जी है और हर गाना मूड को टर्बो बूस्ट दे ही देता है। सीट बेल्ट ऑन, स्ट्रेस गॉन और मस्ती नॉन स्टॉप ऑन रेडियो मस्ती। थैंक यू सो मच नर्मदा जी, आपने फोन किया। यू से दैट यू आर रियली एंजॉइंग द गुड म्यूजिक सिलेक्शन। सो हियर वी गो, दिस वन गोज आउट टू ऑल म्यूजिक लवर्स जो ऐसे बरसाती मौसम को एंजॉय कर रहे हैं रेडियो मस्ती के साथ।

0: वैसे हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स ऑफिस से निकलते ही जो RM2 रेडियो मस्ती पर ट्यून कर चुके हैं, कहां तक पहुंचे हो आप? जस्ट ड्राइव केयरफुली माय डियर, क्योंकि ये बरसाती मौसम में आपको पता है कि धीरे धीरे हौले हौले चलाना पड़ता है। वैसे यू हैव अ ब्यूटीफुल फैमिली वेटिंग फॉर यू एट होम, सो बस उनके बारे में सोचते सोचते एक्सेलरेटर से अपना पैर जरा हटा लीजिए, ठीक है, हल्का कर लीजिए। तो चलिए जी, टू ऑल दोस जो ऑलरेडी घर पे पहुंच गए हैं, शायद आप किचन में हो, चाय बना रहे हो, या हो सकता है डिनर की तैयारी चल रही हो, तो रेडियो मस्ती रहेगा आपका मूड फुल ऑन टेस्टी के साथ। वैसे देखा जाए तो आपकी जो करछी है ना, स्पून जो है, चलती रहे, म्यूजिक बजता रहे और मस्ती कभी कम ना हो, बस ऐसा ही कुछ सोचो। नमक थोड़ा, मिर्च थोड़ी और रेडियो मस्ती का तड़का ज्यादा। वाओ, मॉरिशस के हर किचन में बज रहा है एंटरटेनमेंट का असली फ्लेवर, एंड दैट्स योर रेडियो मस्ती। कुकिंग करते करते अगर थक गए तो एक छोटा सा ब्रेक आप ले सकते हो, या अगर रेडियो का वॉल्यूम बढ़ाना चाहोगे, सो दैट्स योर मर्जी, आप कर लीजिए और बस एंजॉय करते रहना ये खूबसूरत गाने जो स्पेशली आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं। एंड द नेक्स्ट वन गोज आउट टू यू संगीता और उनके बच्चों के नाम श्रेया, आर्यन, नील फ्रॉम मोटा ब्लॉश, एंड टू एवरीवन जो मोटा ब्लॉश वाली साइड से हमारा साथ दे रहे हो, अ बिग शाउट आउट फॉर यू गाइस। हे, कैसे हो आप गिनी? एकदम मस्त, एकदम जकास। रेडियो मस्ती टीम के लिए ये अगला गाना शेनाज जोगी फ्रॉम रिविया जोरापा से आपके हस्बैंड अश्विन के लिए और तीन बेटों के लिए और दोस्त के लिए, परिवार वालों के लिए और स्पेशली आपके लिए। तो चलिए जी, 5499-1294-5499-1294. Yes, this is the magical number. You always have to remember to send me your dedications. They are the most welcome on
1: RM2 Radio Musti.

0: फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।
1: बिल्कुल जी, गुड गुड म्यूजिक के साथ आपको गुड गुड जो फैशन सेंस है, टिप्स हैं आपको जरूर हम देते रहते हैं ऑन आरएमटी रेडियो मसी। और ये बात नहीं है कि हम सिर्फ लेडीज के बारे में ही सोचते हैं, एक्चुअली जेंट्स, जेंटलमैन, मेरे प्यारे प्यारे हैं जेंटलमैन जी, आपके बारे में भी हम सोचते हैं। वेल, विंटर टाइम है तो मॉरिशस के विंटर मॉर्निंग्स में अगर ऑफिस जा रहे हो तो एक स्मार्ट बटन डाउन शर्ट के साथ लाइट वेट स्वेटर या अगर ब्लेजर पेयर कर सकते हो तो ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। डार्क शिनोस जो क्लीन लेदर शूज़ होते हैं आपको प्रोफेशनल और जो स्टाइलिश लुक है दोनों लुक देंगे। और हाँ, एक क्लासी वॉच हमेशा आउटफिट को नेक्स्ट लेवल पर ले ही जाते हैं। सो नॉट टू फॉरगेट टू पुट अ वेरी लवली एंड क्लासिक वॉच एज वेल।
0: Fashion Tips was powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments.
2: You're listening to

0: सबसे पहले आज की बड़ी खबरें रंगाना देन पर्याची और सुदेश कालीचरण को शर्त पर रिहा किया गया एफसीसी ने पोर्ट भी अदालत में पुष्टि की कि दोनों और मैरिटाइम एंड मर्केंटाइल इंटरनेशनल लिमिटेड की मुर्शिद शाखा की निदेशिका करीना ने जिस के बीच फोन पर 30 बिलियन रुपए का ठेका दिलवाने की बात हुई थी। दवाओं और गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स के आयात के सिलसिले में अंतर मंत्री स्तरीय कमेटी को कायम किया गया। दाम घटाने और तय करने के लिए एक प्रणाली स्थापित की जाएगी। आज मुसलमान कौम के लिए नए इस्लामी साल का आगाज। ये 1448 हिजरी है। मुहर्रम महीना एक मुकद्दस माह माना जाता है। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि जुम्मे को ईरान के साथ तय किए जाने वाले समझौते को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। नमस्कार, रादाब। आज सुबह पोटली अदालत में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने पुष्टि की कि सुदेश कालीचरण रंगानाथन पर्याची और करीना नेक्जुस के बीच फोन पर बात हुई थी। मैरिटाइम एंड मर्केंटाइल इंटरनेशनल लिमिटेड को सन 2023 में 30 बिलियन रुपए का ठेका दिलवाने के सिलसिले में बात हुई, जबकि उस वक्त ये कंपनी बिडिंग एक्सरसाइज का हिस्सा नहीं थी। इन बातचीत से कंपनी को ईंधन की सप्लाई के लिए ठेका मिल गया। सुदेश कालीचरण और रंगानाथन पर्याची को शर्त पर रिहा किया गया। हर एक को 8 लाख रुपए की जमानत चुकानी पड़ी और 10 मिलियन रुपए के रिकॉग्निजेंस फी पर दस्तखत करने पड़े। सोलह जून की तारीख दक्षिण अफ्रीका के लिए प्रतीकात्मक है। युवा दिवस कल मनाया गया, जो 1976 में सोवियतों की घटना की याद में रहा। हजारों की तादाद में छात्रों ने उस वक्त भेदभाव के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। आज 50 साल बाद मॉरिशस में दक्षिण अफ्रीका की सिफारत ने ऑरम गॉर्डन थियानो में एक औपचारिक रिसेप्शन का आयोजन किया। मौके पर गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल और प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम खास मेहमान थे। कूटनीतिक दल के मेम्बरानों को की भी हाजिरी रही है। सहाउनो अदिति गनोफ्तार।
1: सोवियतो से जुड़ी यादें दक्षिण अफ्रीका की ऐतिहासिक स्मृति में गहराई से बसी हुई है। 16 जून 1976 को हजारों छात्र बेहतर शिक्षा और न्याय की मांग को लेकर सोवियतों की सड़कों पर उतरे थे। ये आंदोलन रंग भेद के खिलाफ संघर्ष के प्रतीकों में से एक बन गया। 50 साल बाद आज भी दक्षिण अफ्रीका में स्थिति को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है।

0: The African Leadership College that you host in Mauritius.
1: It is happening on the...
2: ये मौका दक्षिण अफ्रीका में सोवियतों की पुनर्जागृति के संदर्भ में आया है। उस समय छात्रों ने अफ्रीकी भाषा और सम्मान के लिए आवाज उठाई थी। आज का मौका इसलिए भी खास है क्योंकि अफ्रीकी बाल दिवस के साथ साथ हम दक्षिण अफ्रीका की स्वतंत्रता भी मना रहे हैं। इस समारोह के अंतर्गत दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण और सहयोग संबंधों का उल्लेख किया गया। साथ ही सोवियतों के युवाओं की विरासत को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मॉरिशस और दक्षिण अफ्रीका के बीच के घनिष्ठ संबंधों की पुष्टि की गई।
3: पुर्तगाल के नए राजदूत ने आज गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल को अपना परिचय पत्र पेश किया। स्टेट हाउस रेजी में जोर्ज मैनुएल डानकोआनुआ मोंटेरो ने और गणराज्य के राष्ट्रपति ने द्विपक्षीय रिश्तों पर बात की। खासतौर पर सहयोग की नई संभावनाओं पर चर्चाएं हुई, जैसी रिन्यूएबल ऊर्जा, ब्लू इकोनॉमी वगैरह। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि जुम्मे को ईरान के साथ तय किए जाने वाले समझौते को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया। परसों स्विट्जरलैंड में दस्तखत समारोह निर्धारित हैं। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अगर ये संधि तय न हुई तो अमेरिका फिर से बमबारी करने लगेगा। आस्था गोविंदमन।
4: G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित समझौता चर्चा के केंद्र में रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों के बीच एक प्रारंभिक सहमति बन गई है। अमेरिका का कहना है कि अब तकनीकी स्तर पर बातचीत आगे बढ़ेगी, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षकों को ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े कार्यों में फिर से शामिल किए जाने की बात भी कही गई है। दूसरी ओर ईरान ने पुष्टि की है कि शुक्रवार से स्विट्जरलैंड में नए दौर की वार्ताएं शुरू होंगी। हालांकि तेहरान का कहना है कि से अब भी अमेरिका पर गहरा अविश्वास है और ये समझौता केवल तनाव कम करने की दिशा में एक प्रारंभिक कदम है। इस प्रक्रिया में पाकिस्तान की मध्यस्थता और कतर के सहयोग की भी अहम भूमिका रही है। कतर ने उम्मीद जताई है कि ये पहल क्षेत्र में स्थिरता लाने में मदद करेगी और आगे की बातचीत के लिए सकारात्मक माहौल तैयार करेगी। कतर ने ये भी उम्मीद जताई है कि होर्मुज जलमार्ग में नौवहन सामान्य होने से गैस की आपूर्ति फिर सुचारू रूप से जारी रह सकेगी। इस बीच अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि यदि शुक्रवार को समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर हो जाते हैं तो होर्मुज को फिर से पूरी तरह खोलने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है। ऐसे में बाजार इस घटनाक्रम पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों की आवाजाही सामान्य होती है और तेल आपूर्ति पर अनिश्चितता कम होती है तो कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव घट सकता है। इसका सकारात्मक असर वैश्विक शेयर बाजारों पर भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल सबकी नजर शुक्रवार को प्रस्तावित हस्ताक्षर और उसके बाद शुरू होने वाली वार्ताओं पर, जिससे ये साफ होगा कि ये प्रारंभिक सहमति आगे चलकर व्यापक समझौते का रूप ले पाती है या नहीं।
3: जी हाँ, सबकी नजरें और सबकी उम्मीद इस समझौते पर हैं ताकि अब नए होर्मुज से फिर से कश्तियों का गुजारा हो सके। दवाओं और गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स के आयात के सिलसिले में मॉरिशस में एक अंतर मंत्रिस्तरीय कमेटी को कायम किया गया। दाम घटाने और तय करने के लिए एक प्रणाली स्थापित की जाएगी। आर्थिक ऑपरेटरों का मानना है कि दूसरे प्रस्ताव भी देखना जरूरी है ताकि दामों में और गिरावट आए। यासीन दीन मोहम्मद, करुणा लालू।
5: समानांतर आयात की नीति से कई व्यापारी किसी एक ही ब्रांड के उत्पादों को अलग अलग देशों से आयात कर सकेंगे केवल आधिकारिक प्रतिनिधि से गुजरे बिना ही। यदि इसके पक्षधर कीमतें कम होने की बात कर रहे हैं, तथापि नियंत्रण का मुद्दा भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मॉरिशस में इस विकल्प पर वर्तमान में विचार किया जा रहा है, खासकर भारी उपभोक्ता वस्तुओं, दवाओं और ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स के लिए।
6: Ça option là définitivement il y a même plus compétition et le but même de sa importation parallèle là, commerce parallèle, c'est réduction des prix. Alors, comment nous connaît nous Maurice, nous dépend beaucoup l'eau ban produits importés. Et en même temps, nous avons une institution, protection des consommateurs, les biens opèrent d'une façon bien

0: efficace.
1: C'est pas un rapport d'expert comme le rapport de Tutoi qui dit comme ça, Maurice, il y en a encore bien évolué dans ce côté conformité, dans ce côté régulation, dans ce côté capacité, pour capable qui dans le temps, nous besoin de l'état encore, pour capable considérer ben, le changement de régulation dans sa cycle.
2: वही चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का कहना है कि केवल कीमतों पर नहीं बल्कि पूरे आर्थिक तंत्र पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखना जरूरी है।
1: Est-ce qu'il nous capable de mettre en péril, en question, l'industrie? Quand on peut dire l'industrie, c'est pas seulement production, c'est aussi une distribution, une compagnie qui investit énormément dans warehouse, qui a un emploi majeur autour de cela. Donc, extrêmement, extrêmement important.
2: एक बैठक के दौरान डीलर्स इन इम्पोर्टेड व्हीकल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जाहिद आमिया ने मोनोपोली यानी एकाधिकार का उल्लेख किया।
3: Par exemple, à Motissier, NPA Motissier, qui a une agence qui a vendu 50 000 roupies, nous avons l'idée avec une banque répétée qui est correcte, 20 000, 25 000 roupies pour même qualité. Un de l'huile pour un loto spécifique pour une banque qui n'est pas si enregistrée, tu peux vendre 2500, 2800. Comment l'huile enregistrée, même de l'huile boîte de vitesse, c'est 8 000 roupies.
2: On a un क्षेत्र में नकली उत्पादों की समस्या चर्चा में नहीं रही।
3: Demain nouveau type de véhicule et na un ECU. C'est-à-dire n'importe quelle pièce électronique nous changer, ne besoin pas ça ECU là, ne besoin accepter les pour nous capable rouler véhicule là. Et n'est pas dans l'intérêt ban les autres fabricants pour fabriquer ban fake spare part électronique parce qu'il est pour résister par le système. Et dans un dernier rapport qu'il fait par l'Union européenne, il y a une diminution constante de fake product.
2: Spare parts qui est aussi un important point.
4: Maurice, il y a beaucoup de machines de récolte et qui ne sont pas pareilles avec l'agence. Les gens n'ont pas l'agence, l'agence peut dire qu'il n'y a pas la pièce là.
2: उनका मानना है कि समानांतर आयात से जरूरी नहीं कि मौजूदा अधिकृत वितरकों को नुकसान हो। मंत्रालय के स्तर पर समानांतर आयात और स्पेयर पार्ट्स पर प्रॉफिट मार्जिन की अधिकतम सीमा तय करने की संभावना पर अभी अध्ययन जारी है।
5: बुलेटिन की शुरुआत में हम बता रहे थे कि एफसीसी ने पुष्टि की कि सुरेश कालीचरण, रंगानाथन पेरियाची और करीना नेक्सस के बीच फोन पर बात हुई थी। मैरीटाइम एंड मर्केंटाइल इंटरनेशनल लिमिटेड को सन 2023 में 30 बिलियन रुपए का ठेका दिलवाने के सिलसिले में, जबकि उस वक्त ये कंपनी बिडिंग एक्सरसाइज का हिस्सा नहीं थी। मर्केंटाइल एंड मैरीटाइम ग्रुप का मामला करीब 3 सालों से एफसीसी की जाँच की वजह है, जिसमें कई गिरफ्तारियां की गई हैं। शहजाद जुमन, अदिति गनवाफ्तार।
6: 7 जून 2023 को एसटीसी की प्रशासनिक परिषद ने मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद 1 अगस्त 2023 से 31 जुलाई 2024 की अवधि के वास्ते मॉरिशस के लिए ईंधन आपूर्ति का कॉन्ट्रैक्ट ओक्यू ट्रेडिंग को देने की मंजूरी दी थी। इसके 22 दिन बाद यानी 29 जून को यही कॉन्ट्रैक्ट आखिर में सिंगापुर की कंपनी मर्केंटाइल एंड मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया, जो मर्केंटाइल एंड मैरीटाइम ग्रुप की सहायक कंपनी है। इस मामले में कॉन्ट्रैक्ट प्रक्रिया और उसकी वित्तीय शर्तों पर तुरंत सवाल उठने लगे। लेबर पार्टी के सांसद ऐशान जुमन भी स्पष्टीकरण मांगने वालों में शामिल थे।
7: एसटीसी डिसाइड अ ला सरप्राइज टू ऑल मोन पर लुए सा कॉन्ट्रा ला अ एन विचम कंपनी की पन पार्टनरशिप द अपील ऑफ।
6: इन सवालों के समक्ष एसटीसी ने 11 सितंबर 2023 को सार्वजनिक रूप से अपने फैसले का बचाव किया। उसने दावा किया कि एमएमजी के प्रस्ताव में कई वित्तीय लाभ थे, विशेष रूप से अमेरिकी डॉलर के बजाय मॉरिशन रुपए में भुगतान। एक ऐसा सूत्र जो एसटीसी के अनुसार एक्सचेंज रेट में उतार चढ़ाव से जुड़े जोखिमों को कम करता है। अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय सभा में नई व्यापार और उपभोक्ता सुरक्षा मंत्री ने ये जानकारियां दोहराई।
8: In view of a better offer received from Mercantile

0: and Maritime Investment Private Limited.
1: It's an unsolicited bid. After MMG took account of the result of the tender that happened, which was a public tender, the figures were open, MMG then offered a lower price.
2: दोसार 25 की शुरुआत में फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन ने इस मामले की जांच शुरू की। इसके तहत एसटीसी और एमएमजी के दफ्तरों तथा मॉरिशस में इस कंपनी की निदेशिका करीना नेसियस के घर पर छापे मारे गए। 28 अप्रैल 2025 को उसे कॉन्स्पिरेसी टू कमिट मनी लॉन्ड्रिंग के अस्थाई आरोप पर गिरफ्तार किया गया और फिर जमानत पर रिहा किया गया। इसके बाद जांच का ध्यान कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने से संबंधित वार्ताओं पर केंद्रित हुआ। विभिन्न स्तरों पर हुए कम्युनिकेशंस और लिए गए फैसलों की जांच की गई। इसके बाद 13 जून 2025 को एसटीसी के पूर्व निदेशक राजीव सेवान सिंह को हिरासत में लिया गया। उसी दिन जारी एक बयान में एफसीसी ने संकेत दिया कि उन्होंने ऐसे कदम उठाए थे कि 691.9 मिलियन डॉलर का पेमेंट मर्केंटाइल एंड मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया जाए।
3: और आपको बता रहे थे कि इस सिलसिले में सुरेश कालीचरण और रंगा नारायण परेयाची को गिरफ्तार किया गया और आज शर्त पर उन्हें रिहा किया गया। दोनों पर पब्लिक ऑफिशियल यूजिंग ऑफिस फॉर ग्रेटिफिकेशन फॉर अनदर पर्सन का अस्थाई आरोप दर्ज है। हर एक को 8 लाख रुपए की जमानत चुकानी पड़ी और 10 मिलियन रुपए के रिकॉग्निजेंस फी पर दस्तखत करने पड़े। कुणाल गोजी, करुणा लालू।
2: 7 जून 2023 को एसटीसी की प्रशासनिक परिषद ने मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद 1 अगस्त 2023 से 31 जुलाई 2024 की अवधि के वास्ते मॉरिशस के लिए ईंधन आपूर्ति का कॉन्ट्रैक्ट ओक्यू ट्रेडिंग को देने की मंजूरी दी थी। इसके 22 दिन बाद यानी 29 जून को यही कॉन्ट्रैक्ट आखिर में सिंगापुर की कंपनी मर्केंटाइल एंड मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया, जो मर्केंटाइल एंड मैरीटाइम ग्रुप की सहायक कंपनी है।
4: फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने अदालत को बताया कि सुदेश कालीचरण और रंगा नारायण परेयाची तथा मैरीटाइम मर्केंटाइल इंटरनेशनल कंपनी की स्थानीय प्रतिनिधि करीना नेसियस के बीच टेलीफोन बातचीत के प्रमाण मिले हैं। उस समय वे व्यापार मंत्री और वित्त मंत्री के पद पर थे। एफसीसी के अधिकारी अब्दुल रहमान के अनुसार ये बातचीत टेलर मेड स्पेसिफिकेशंस यानी कि खास रूप से तैयार की गई शर्तों से जुड़ी थी, जिनका उद्देश्य मैरीटाइम मर्केंटाइल इंटरनेशनल को लाभ पहुंचाना था। बहरीन स्थित कंपनी को एसटीसी को अगस्त 2023 से जुलाई 2024 तक ईंधन आपूर्ति के लिए कुल 30 बिलियन रुपए के कॉन्ट्रैक्ट के लिए चुना गया था, जबकि कंपनी टेंडर प्रक्रिया में शामिल नहीं थी। दोनों पूर्व मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के लिए कार्रवाई चलाई जा रही है। उनके वकील रोशन सेंटुकी और रईस बुलबुल ने एफसीसी द्वारा लगाए गए इन आरोपों का खंडन किया। वहीं एफसीसी के प्रतिनिधि वकील गिरीश बंधु ने उनकी जमानत पर रिहाई का विरोध नहीं किया। सुदेश कालीचरण और रंगा नारायण परेयाची को 8 लाख रुपए की जमानत और 10 मिलियन रुपए की रिकॉग्निजेंस पर रिहा किया गया है। जमानत के अलावा मजिस्ट्रेट बिसुन ने दोनों पूर्व मंत्रियों को इस मामले से जुड़े अन्य लोगों से संपर्क न करने का आदेश दिया, खास रूप से एसटीसी के पूर्व बोर्ड सदस्यों और पूर्व महानिदेशक राजीव सेवान सिंह, जिन पर इसी मामले के संबंध में कार्रवाई की जा रही है। एमएसएम के लीडर प्रवीण जगनाथ ने अपने दो पूर्व मंत्रियों की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया दी।
5: persécution politique, puis arrêtement de membres de l'opposition, surtout, mais ça peut continuer et m'entendre mon ex on the list. Alors, nous tout piétons, ça qu'un piéton surtout. Mais s'il y en a un seul secteur qui peut développer dans ce pays-là, c'est le secteur persécution. C'est tout qui peut développer. Tout le monde peut trouver.
4: सुदेश कालीचरण और रंगा नारायण परेयाची अब 28 अक्टूबर को फिर से अदालत में पेश होंगे। इस मामले में आगे और गिरफ्तारियां होने की संभावना जताई जा रही है।

0: खबरों में आज मुस्लिम कौम के लिए नए इस्लामी साल का आगाज हुआ। ये 1448 हिजरी है। मुहर्रम महीना एक बहुत ही मुकद्दस माह है। सबसे अजीम वाकया करबला है और हज़रत मूसा का वाकया भी बहुत ही अहम है। हज़रत मोहम्मद के नवासे हज़रत इमाम हुसैन ने दीन और हक़ के लिए अपनी जान दी थी। इस महीने की 10वीं तारीख बहुत अहम है, जिसे यौम आशूरा कहा जाता है। इस्लामी तकवीम यानी कैलेंडर में 354 या 355 दिन होते हैं और इसका आगाज़ मुहर्रम महीने से होता है। आज पहली तारीख से बाकायदा नए इस्लामी साल की शुरुआत हुई है। मजहब इस्लाम में मुहर्रम सबसे अहम माहों में शुमार है और इसे बहुत मुकद्दस माना जाता है। इस महीने की सबसे अहम तारीख 10 मुहर्रम यानी यौम आशूरा है। इस दिन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु और उनके वफादार साथियों ने करबला के मैदान में हक और सच्चाई के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी थी। ये 1448 का साल है। हस्ब दस्तूर नई हिजरे के मौके पर मक्के की बड़ी मस्जिद में काबे का कपड़ा यानी किस्वा को बदला जाता है। मुहर्रम के महीने में कई अहम इस्लामी वाकयात से मंसूब रिवायतें मिलती हैं। रिवायतों के मुताबिक इस महीने में और भी अहम वाकयात हुए, जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को तूफान के बाद बसलामती किनारा मिला था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग से निजात मिली थी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को फिरौन से निजात मिली और फिरौन गरक हुआ था, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से निजात पाकर बाहर आए और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी से शिफा मिली। मुहर्रम हमें सब्र, हिम्मत, इंसाफ और दीन का पैगाम देता है। आशूरा का दिन इबादत, दुआ और नेक अमाल करने की भी अहमियत रखता है। आज रात से मुल्क की कई मस्जिदों में मजलिस मुनाकिद किए जाएंगे, तकरीरें की जाएंगी और जिक्र इलाही के अलावा तिलावत कुरान भी की जाएगी। पूरे मुसलमान कौम को नया इस्लामी साल 1448 हिजरी मुबारक हो। और फुटबॉल में एक बार फिर फ्रांस ने मैदान के शेर लियोनेल मेसी का कमाल देखा। उन्होंने अपना पहला वर्ल्ड कप हैट्रिक कायम कर दिया अपने 16वें गोल करके। लियोनेल मेसी ने साबित कर दिया कि उम्र की कोई सीमा नहीं होती। उन्होंने अल्जीरिया के मुकाबले में अर्जेंटीना के लिए 3 गोल कर दिए। फुटबॉल परस्तारों के लिए ये मैच काफ़ी यादगार रहेगा। और कल फ्रांस और सेनेगल के बीच भी मुकाबला हुआ। फ्रांस ने सेनेगल को यानी फ्रांस की जीत हुई है 3-1 से।
1: पोर्टुगल अपना वर्ल्ड कप का आगाज ग्रुप के में एकदम साफ मकसद के साथ कर रहा है। पहले मैच में ही ऐलान जंग के साथ जोरदार प्रहार करना। टूर्नामेंट की फेवरेट टीमों में से एक पुर्तगाली टीम ला सिलेसाओ की नज़र अपने पहले वर्ल्ड कप जीतने पर है और रास्ता दिखाने के लिए टीम में एक से बढ़कर एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वितिन्हा और ब्रूनो फर्नांडेज। उधर कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य साल 1974 के बाद पहली बार वर्ल्ड कप में वापस आ रहा है। मजबूत और हिम्मती टीम केप वर्दे जैसा प्रदर्शन दोहराना चाहेगी और पुर्तगाल के खिलाफ बड़ा उलटफेर करने के लिए कोशिश करेगी। ग्रुप एल में यह पहले दिन के सबसे बड़े मुकाबलों में से एक है। इंग्लैंड का सामना क्रोएशिया से होगा। इस ग्रुप से क्वालिफाई होने के लिए ये दो प्रबल दावेदार हैं। यूरो 2024 के फाइनलिस्ट और 1966 के बाद दूसरी बार खिताब जीतने की आस लेकर द थ्री लायंस का इरादा एकदम साफ है, अपने खेल से छाप छोड़ना और अपना रुतबा साबित करना। इस मुश्किल काम के लिए इंग्लिश टीम हैरी केन और जूड बेलिंगम जैसे टॉप खिलाड़ियों पर भरोसा कर रही है। सामने क्रोएशिया की टीम अभी भी अपने पुराने अनुभव और बड़े मैच खेलने की काबिलियत पर टिकी है। 2022 वर्ल्ड कप में तीसरा स्थान लेने वाली यह टीम अब हर टीम को चुनौती देने और इस ग्रुप में मजबूत संदेश भेजने के लिए तैयार है।
0: जहां पुर्तगाल और कोंगो के बीच आज रात 9 बजे मुकाबला होगा, इंग्लैंड और क्रोएशिया 12 बजे मैच खेलेंगे और जबकि गाना और पनामा के बीच रात के 3 बजे मुकाबला होगा। और अब फ्रांस और सिन

0: निगल के बीच कल खेले गए मैच पर अरविंद बिसेसो की रिपोर्ट।
1: किलियान एम्बापे और फ्रांस की टीम के लिए इस वर्ल्ड कप में कामयाब शुरुआत। फर्स्ट हाफ में कुछ मुश्किलों के बावजूद ले ब्लू ने सेनेगल की चुनौती का सामना करने का रास्ता ढूंढ ही लिया। मेटलाइफ स्टेडियम में तिरंगा लायंस ही ज्यादा खतरनाक नजर आ रहे थे, लेकिन न तो निकलास जैक्सन और न ही इस्माइला सा कामयाबी हासिल कर पाए। हाफ टाइम के बाद खेल की रफ्तार पूरी तरह बदल गई। 86वें मिनट में किलियान एम्बापे ने पहला गोल स्कोर करके फ्रांस का खाता खोला। इसके बाद 82वें मिनट पर देजिरे डुए के पास पर बाकोला ने दूसरा गोल करके बरहत को मजबूत कर दिया। इंजरी टाइम में सेनेगल ने एक गोल करके अंतर को कम किया, लेकिन एम्बापे ने तुरंत जवाब देते हुए एक और बेहतरीन गोल दाग दिया। इस शानदार डबल के साथ फ्रांसीसी कप्तान ने अपना इतिहास लिखना जारी रखा। फ्रांस की जर्सी में 58 गोल करके उसने ओलिविये जिरू को पार किया। साथ ही वो वर्ल्ड कप में 14 गोल करने वाले पहले फ्रांसीसी खिलाड़ी बनकर जस्ट फोंटेन से आगे निकल गया और वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने वालों में वो अभी तीसरे स्थान पे आ गया। उसके आगे हैं क्लोजे और मेसी। फ्रांस का अगला मुकाबला इराक से होगा, लेकिन सेनेगल को बच के रहना होगा क्योंकि अगला मैच नॉर्वे के खिलाफ हर हाल में वापसी करनी होगी।
0: और अब बुलेटिन के आखिर में करते हैं मौसम की बात। आम हालत, दक्षिण पूर्व से आ रहे कुछ बादल स्थानीय मौसम पर असर करेंगे अगले 24 घंटों के लिए। मौसम की पेशगोई, आज रात और कल सुबह पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लेटों में बादल घिराएंगे और बारिश होगी और कुछ जगहों में कोहरा छाए रहेगा। कल दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ इलाकों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। लगूनों के उस पार समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिम में 3 मीटर वाली ऊंची लहरें उठेंगी, इसी वजह से दूर समुद्र में न जाने की सलाह है, खासतौर पर पश्चिम और दक्षिण वाले लगूनों में। तापमान, सेंट्रल प्लेटों में न्यूनतम तापमान 17 से 21, अधिकतम 23 से 25, साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 23 से 25, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह 6:44 पर सूरज उगेगा और शाम को 5:38 पर सूरज ढल जाएगा।

तो ये थी अब तक की खबरें आप तक की बुलेटिन पहुंचाने में हमें फ्रेंच और समाचार विभाग और हमारे तकनीकी साथी शिवनाग्या की मदद मिली है। आपके ध्यान के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार आदाब, शोक समाचार सुनिए और एमबीसी के साथ जुड़े रहिए। बोला रोड प्लान दे रोश में 76 साल की 76 years old श्रीमती पद्मावती मथुरा पैदाइशी नाम कल्पी जो दयावती के नाम से ज्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल सवा नौ बजे इनके बेटे राज मथुरा के घर बोला रोड प्लान दे रोश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीतों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 9:15 AM। एनएचडीसी ग्रां बेलिया में 52 साल के 52 ईयर्स ओल्ड श्री मोगानादेन किस्नासामी जो अजागेन के नाम से ज्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल साढ़े बारह बजे इनके घर एनएचडीसी ग्रां बेलिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिविया दे क्रियोल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 9:30 AM। अली ब्रियों वाकवा में 63 साल के 63 years old श्री सुखबीर रामचंद जो स्वराज के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल 11 बजे इनकी पत्नी मालिनी रामचंद के घर आली ब्रियों वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आली ब्रियों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। रॉयल रोड बॉडी जामुगत में 51 साल के 51 years old श्री सूर्यदेव सीबन जो सूरज के नाम से ज्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल साढ़े ग्यारह बजे

0: कल 11:30 इनकी पत्नी रेशमा सी बर्न के घर रॉयल रोड बोआदिसामुगत से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोम्बो लेन में बर्ग की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11:30 AM। मिशन क्रॉस रोड लालमाची में 69 साल की 69 years old श्रीमती ज्ञानती सुबा, श्रीमती ज्ञानती सुबा पैदायशी नाम ज्योति जो अनीता के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज उठाई गई। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
1: Raftar Vibes, Filmy Rides, RM2,

वैसे आपको किसी और को बताने की जरूरत नहीं है, गिनिशा है साथ देने के लिए रात के 9 बजे तक। Here we go, guys. Check your time. 6:46 हो चुके हैं। You're listening to your number one radio station. शाम हो चुकी है, बरसात हो रही है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। So please be very cautious. अपना ख्याल रखना जी and keep yourself warm. आजकल बहुत सारे लोग जो हैं, they are suffering from cold, cough and जो थोड़ा सा हाफ फीवर भी। So please अपना ख्याल रखना so that you don't get into all that. And I'm here to send you the some warm, जी हाँ, through these beautiful and lovely गाने और साथ साथ में your dedications also are the most welcome. And we do have हमारी प्यारी जो हैं ये स्वेनाल बोलती हैं कि किचन में है, खाना बना रहे हैं, मेन्यू पे हैं लीशु फ्लेयर दाल ग्राम मसाला उगाई पोलनी ब्रेड एंड टूफे ब्रेड एंड भाई श्रवण के लिए, भाभी क्रीटी के लिए, अभिनव की यान नव्या के लिए, तिलक परिवार के लिए, आंटी श्याम सगन के लिए जो स्विट्जरलैंड से साथ दे रहे हैं। अगला गाना, हाय माई बुलबुल, हे कैसे हो, हाय आंटी, हाय बेटा, कैसे हो आप, याले श्याम फ्रॉम सुरीनाम, द नेक्स्ट वन गोज आउट टू यू बेटा एंड कीप ऑन एंजॉयिंग द गुड म्यूजिक एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू रीड योर मैसेज एंड आई ऑलवेज नो दैट यू आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट अस, थैंक यू सो मच। एंड चलिए जी, ये अगला गाना जो है हम डेडिकेट करना चाहेंगे उन तमाम सुनने वालों के नाम जो इस वक्त अभी भी ड्राइव कर रहे हैं, अभी तक घर नहीं पहुंचे, अगर ट्रैफिक जाम में आप फंसे हुए हो, सो जस्ट बी वेरी कॉशियस एंड कीप योर पेशेंस। अमृता रामलोल कानूत से, आज आपके भैया सुरेश रंगीलाल रंगलाल का जन्मदिन है क्लावेट से, सो हैप्पी बर्थडे टू यू एंड बेस्ट विशेस टू यू। चलिए यार, आपके भैया जो हैं मौका में काम कर रहे हैं, तो चलिए हैप्पी बर्थडे टू योर ब्रदर एंड बेस्ट विशेस टू योर लवली लवली ब्रो फ्रॉम द एंटायर फैमिली। हे इट्स पूरिंग डाउन हैवी, अच्छा कहाँ पे है, गोश्तों में बरसात हो रही है, सो व्हाट्सअप माई बुलबुल गिनू मेरी जान, क्या बात है, इतना प्यार आप लोग बरसाते हैं ना हमारे ऊपर कि कभी कभी हम बोलते हैं कि आप लोगों का प्यार ही काफ़ी होता है जीने के लिए। थैंक यू सो मच दगन श्वेता रविश प्रेशा लवेशन अपू फैमिलीज एंड यू गाइज आर फ्रॉम गोश्तों एंड Everyone, जो उस साइड में बर्ग रोशनोर के साइड से साथ दे रहे हैं। Here we go, ये अगला गाना भी हम डेडिकेट करना चाहेंगे आप सभी सुनने वालों के नाम से, जस्ट एंजॉय द नेक्स्ट वन एंड सिट बैक रिलैक्स। अगर आप घर अभी अभी पहुंचे हो काम से, 10-15 मिनट अपने लिए निकालो और रेडियो मस्ती के साथ बस जुड़े रहे।

0: दीवानापन। खूबसूरत गानों का ये सिलसिला चलता ही रहेगा आपके और हमारे बीच में ऑन आर एम टू रेडियो मस्ती। वैसे आपको पता चल ही गया होगा कि अभी तो रोमांटिक गीतों की बरसात शुरू हो चुकी है आपके लिए ऑन आर एम टू रेडियो मस्ती विद मी निशा। फिलहाल के लिए जस्ट चेक योर टाइम, रात के 7 o'clock बज रहे हैं।
1: The time is brought to you by McDonald's.
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
3: Radio Musti.
4: North. South.
5: 103.5.
4: East. West.
5: 96.4.
4: Center.
5: 99.4.
6: RM2 Radio Musti.
3: Radio Musti.
6: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
7: Evening Lounge.
8: Evening Lounge.
6: RM2
3: Radio Musti.

0: Evening Lounge,
1: Evening Lounge,
2: RM2,
0: Radio Musti.
3: इवनिंग लाउंज शुरू हो चुकी है आपके और हमारे बीच में ऑन आवर टू रेडियो मस्ती. सो विशिंग एवरीवन अ वेरी गुड इवनिंग. नमस्कार और गणेशा का प्रणाम स्वीकार कर लीजिए. जी हाँ दोस्तों, आ गई हूँ मैं फिर से एक बार. एक्चुअली मैं यहीं पे थी, कहीं नहीं गई. 4 बजे से रात के 9 बजे तक आज आपका साथ दूंगी. सो विशिंग ऑल ऑफ यू अ लवली ब्यूटिफुल इवनिंग लाउंज है हमारे साथ. हाँ जी, हम तो आ गए हैं विद अ ब्यूटिफुल रोमांटिक गानों का सिलेक्शंस लेकर. वैसे मौसम आज बेमान नहीं है, फुल ऑन रोमांटिक है. ऐसे मौसम में, बरसाती मौसम में, बोलते हैं कि प्यार और भी जवां होता है. तभी तो हमने सोचा है कि गाने ये जो इतने रोमांटिक हैं, बातें इतने रोमांटिक करेंगे आप लोगों के साथ. और ऐसे मौसम हुए हैं तो आई गेस कि डेफिनेटली यू नीड टू सेंड मी अ मैसेज टू लेट मी नो कि कहाँ से साथ दे रही हो और आपका प्यार जो है क्या कर रहा है, उनके लिए कौन सा गाना आपने डेडिकेट करना है. एंड जी हाँ, आपके दिल की बात हम पहुँचाएंगे आपके चाहने वालों तक सेफली. हाँ जी, अनोखे अंदाज में विद सम स्पाइस. जैसे कि अगर आप उनको कहना चाहेंगे आई लव यू, यू जस्ट वांट टू टेल समवन आई मिस यू, आप उनसे कितने मोहब्बत करते हो. सो व्हाई नॉट, दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म. रात के 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रोज रात को ऑन रेडियो मस्ती इन योर इवनिंग लाउंज. एंड जी हाँ, 5499124 पर आप अपने दिल की बात बड़े प्यार से लिख के हमें भेज सकते हैं. और 402-435 डायल कीजिए to talk to me live and direct. फिलहाल के लिए sit back, relax and enjoy the entire show, जो especially आपके नाम हम dedicate करना चाहेंगे, यानी कि true lovers के नाम.

0: Evening Lounge,
1: Evening Lounge,
2: RM2,
0: Radio Musti.
3: कैसा लग रहा है आपको ये खूबसूरत गानों का सिलेक्शन जो हम लेकर आए हैं इन योर इवनिंग लाउंज फॉर यू ऑन आवर टू रेडियो मस्ती। 7:19 हो चुके हैं। 92.35 डायल कीजिए।

0: 402-935 डायल कीजिए टू टॉक टू मी लाइव एंड डायरेक्ट. और फिलहाल के लिए चलिए जी साथ में लेट्स चेक इट आउट योर डेडिकेशंस. अच्छा जी, पहले से ही डायल करके रखा है. ये है हमारी प्यारी सुनीता जी. हेलो, नमस्ते.
1: हेलो जी निशा, नमस्ते.
0: कैसे हो सुनीता जी, आप ठीक हो?
1: मैं बहुत ठीक हूँ. आप कैसे? अच्छा, दिन के बाद आपकी आवाज को मिल रहा है इज्जत.
0: मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. आई नो, एक्चुअली कभी कभी हो जाते हैं, हम दिन में आ जाते हैं और शाम को आ जाते हैं. मोस्टली हम 12 से 2 और 4 से 7 का स्लॉट ज्यादा करते हैं, बट फिर भी आज हम आ गए हैं आपका साथ देने के लिए. एंड नेक्स्ट वीक भी आएंगे, आएंगे जरूर आएंगे.
1: आप दिन में प्रोग्राम करता, मैं सुनने को नहीं मिलती हूं.
0: काम पे होते हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. लेकिन आप शाम को सुनते हैं, मुझे सुनो या किसी और को सुन लो, एक ही बात है, आप अपने ही रेडियो को सुन रहे हो.
1: हाँ,
0: तो बताइए.
1: आपके जो पैर में मोच आई थी, ठीक हो गई?
0: बिल्कुल ठीक हो गई. मच बेटर, मच बेटर. ठंड का मौसम है तो हो ही जाता है, दर्द शुरू हो जाता है, बट स्टिल मच बेटर. ठीक है.
1: हाँ, तो उसे हल्दी, कंचा हल्दी का इस्तेमाल करना.
0: वो तो मैं कर लेती
1: हूँ. हल्दी में दूध बॉय कर कंचा हल्दी डालकर पीना.
0: बिल्कुल जी, करूंगी करूंगी. आपने बोला है तो जरूर करेंगे. तो बताइए सुनीता जी, आप ठीक हो? फैमिली ठीक है? सब कुछ बढ़िया चल रहा है?
1: हाँ, सब बढ़िया, सब ठीक है.
0: अगला गाना किसके नाम?
1: अगला गाना कौन सा गाना होगा?
0: अगला गाना एक है, बहुत सारे हैं, कौन सा चलाऊं आपके लिए? आपको 90s का चाहिए या 2000 का चाहिए या क्या चाहिए? चलिए मूवी दिल से एक अजनबी. ठीक है, अजनबियों के लिए बना
1: अच्छा,
0: बजाते हैं ये गाना.
1: गाना बजा देना हमारे साली, आपके लिए, आपके टीम के लिए और मेरे सभी परिवार के लिए, कोना परिवार के लिए, कलेचुची परिवार के लिए, ओनम परिवार के लिए, रामसिंह परिवार के लिए, राम परिवार के लिए, कमलावर परिवार के लिए,
0: बिल्कुल जी,
1: कल्पनाथ परिवार के लिए. परिवार बहुत बड़ा है.
0: मैं तो बोलती हूँ पूरे पूरे मॉरिशस के लिए बजा दीजिए.
1: हाँ, मॉरिशस के लिए जितना कैसे सभी.
0: बिल्कुल, हम सब एक ही परिवार तो हैं.
1: हाँ, और अच्छा लगा आपके आवाज सुनकर, एक बार हमें बात करने को मिला, क्योंकि हम अभी घर पर आए हैं काम करते.
0: हमेशा हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात होती है. अच्छा लगता है जब आप लोगों से बात होती है, आप लोग फोन करते हो, आप लोग मुझे मिस करते हो, तो मुझे अच्छा लगता है.
1: हाँ, हमें भी अच्छा लगता है, लेकिन जब लाइन नहीं मिलती है, बात करने को नहीं मिलती है,
0: तो
1: बहुत गुस्सा आता है.
0: गुस्सा भी आ जाता है आपको?
1: हमारे पसंद के गाने मिलने को नहीं मिलती.
0: ओके, चलो कोई बात नहीं. अगला गाना बहुत ही प्यारा सा है, उदित नारायण और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज में हम लेकर आए आपके लिए. ठीक है, चलिए जी, नमस्ते, धन्यवाद एंड एंजॉय द शो माय डियर. और चलिए जी, 402-935 डायल कीजिए टू टॉक टू मी लाइव एंड डायरेक्ट. और फिलहाल के लिए ओम नमः शिवाय. कैसे हो? बिल्कुल ठीक है. टू ऑल शिव भक्त ऑन दिस स्पेशल मंडे. एक्चुअली आप लोग खाना खा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, ब्यूटीफुल गाने से. बोन अपेटी टू यू एंड बोन कुराज टू यू डियर. थैंक यू सो मच अजय और उनके मामा जो फोंजिसा के रहने वाले हैं, काजल जी, टेन ऑफ लवांचिया से. उनके लिए अगला नगमा एंड वी डू हैव द नेक्स्ट वन, नेहा कक्कर, उच्चा ओ हम सफर. वी डू थोड़ी देर बाद Aurora, I'm gonna play that for you, my beautiful lady. And actually, we do have ये अगला गाना किसी ने बोला है, विजयास की तरफ से, जो वाकवा की रहने वाली है. That's a beautiful song जो आपने मांग की है. चलिए कोशिश करेंगे to play that for you, my dear. And dedicating the next one, बेटी चांद वीका के लिए और वेदान शाह का बेटा, husband विसन, करिश्मा from Rion Belle. She's listening to us at the moment. Thank you, beautiful lady. तो चलिए जी, ये अगला गाना उन तमाम सुनने वालों के नाम जो साथ दे रहे हैं. 5 4 9 9 1 2 9 4 पर send me your dedications.

Such a beautiful and mesmerizing track है जी हाँ दिल को छू जाने वाले ये ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से वैसे जिंदगी भी कितने अजीब

होती है ना अजनबियों से हम मिलते हैं पहली मुलाकात में बातें हो जाती हैं और धीरे धीरे कराते कराते अजनबी हमारे जीने की वजह बन जाती हैं उनको ना देखें तो जी घबराता है उनकी आवाज़ ना सुने तो ऐसा लगता है कि कुछ तो कमी है आज अजनबी आपकी पूरी ज़िंदगी कैसे धीरे धीरे बन जाते हैं इंसान को कभी कभी पता नहीं चलता अंदाज़ा भी नहीं होता है Bringing out to you some lovely romantic gaane. To all true lovers who are truly madly, deeply in love, thank you so much, Ji, saath dene ke liye. You're listening to Ganesha right now on Radio Masti. प्यार भरे नगमे लेकर आए हैं खासकर आप लोगों के लिए जितने भी हमारे लिसनर्स हमसे बात करना चाहेंगे 5499-1294 पर मैसेजेस आर द मोस्ट वेलकम एंड 402-8335 डायल कीजिए टू टॉक टू मी लाइव एंड डायरेक्ट And I just want to wish a happy birthday to our dear friend Haresha. Unka birthday hai kal. So advance me happy birthday and Diksha ki taraf se Anusha, Amita and Nandini. And chaliye ji, agar aap subah wale show mein you would love to celebrate her birthday on Radio Masti, to aapko subah ke show mein ye message bhejna padega. And Krishti from Riviera de Creole. Yes, Gini, हम आपको बहुत ही ज़्यादा miss करते हैं आपके shows को रात को. Thank you so much. हम भी आपको miss करते हैं. Every day I make a wish just to be with you forever, my honey. आपके husband Vikram के लिए. Actually, आप लोग सोच रहे थे ना कि उनका wish मेरे साथ है. नहीं, उनके husband के लिए है and आपके twins Kaushik and Kaushal के लिए. Thank you so much, जी. और आपके husband और बच्चों के नाम ये अगला नगमा. Hey, Sandy Pasudoi from... Your beloved wife ki taraf se ye agla gana especially for you my dear unhone naam nahi likha koi baat nahi and asking for a song chaliye ji kaun hai lalita bacche vidya shweta rohi sabhi ranglal parivar ke liye jo clavet ke rehne wale hain jo bade pyar se hamara saath de rahe hain chaliye ji ye agla gana khaas kar aapke naam on radio masti

0: प्यार की राह में चलते चलते जब आप एक ऐसे इंसान से मिल जाते हैं जो आपको वाकई महसूस होता है कि उनके पास आने से, उनके बारे में सोचने से आपका जो दिल है बड़ी जोरों से धड़कने लग जाता है, तो इस फीलिंग को आप नज़रअंदाज ना कीजिए। बोलते हैं ना, कभी कभी बस एक साइन चाहिए होता है जानने के लिए दैट ही इज़ द वन और शी इज़ द वन। जी हाँ, ऐसे ही आपको ये छोटे छोटे ये जो फीलिंग्स होते हैं ना, जो आप महसूस करते हैं, ये एक साइन होता है कि उनसे बात करते हैं तो आपको दुगनी खुशी मिलते हैं। और जब भी वो आपके पास आते हैं, दिल की धड़कने बड़े ज़ोरों से धड़कने लग जाते हैं। उनके बारे में सोचते ही, चाहे आपका मूड कितना ख़राब क्यों ना हो, उनके बारे में सोचते ही आपको बस ऐसा लगता है कि हाँ जी, दुनिया की सारी प्रॉब्लम एक तरफ और ये इंसान एक तरफ। जाने क्यों ऐसा लगता है कि अजनबी जब आपकी ज़िंदगी में ऐसे एकदम से आ जाते हैं, ऐसा लगता है कि ज़िंदगी जो आपकी बेरंग सी थी एकदम रंगीन सा होने लग जाता है। उनके बारे में सोचते सोचते इतनी खुशी आपको मिलती है कि समटाइम्स यू इवन थिंक कि ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन जी हाँ, कभी कभी बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि गिनी, प्यार क्या होता है? ये जो प्यार होता है ना, वो एक फीलिंग होती है, मीठी मीठी प्यारी प्यारी सी। एंड शायद अगर आपके सीने में ऐसे कुछ मीठा सा दर्द उतर रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी, आपको भी प्यार हुआ है। सो वेलकम टू माय क्लब ऑन आवर इंटू रेडियो मस्ती। और फिलहाल के लिए विनय जी जो कॉम्फो खो से हमारा साथ दे रही है, बोलते हैं मैं अपनी बीवी से बहुत गुस्सा हूँ, वो मुझसे ना बर्तन मनवा रही है और वो गुस्सा हो गया। गुस्सा नहीं करते, एक दूसरे का हाथ बिता लेना चाहिए। तो आपकी बीवी की तरफ से अगला गाना आपके नाम है, एंड कैसे डाल कीजिए। हेलो जी, नमस्ते। अनीता, अनीता, अनीता, कैसे हो मेरी प्यारी अनीता फ्रॉम फिकॉन फ्लैग?
1: हम ठीक है, और आप कैसे हो?
0: मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मोटी हूँ, ताजी हूँ, अच्छी हूँ।
1: अच्छी लगी कि आप अच्छी हो।
0: बिल्कुल जी,
1: बड़े दिनों के बाद
0: आपको ये गाना गाना चाहिए, बड़े दिनों के बाद गिन्नी आई और एम टू पे। लेकिन मैं तो होती रहती हूँ, मैं तो दिन में भी होती हूँ ना मेरी जान। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो?
1: भेजती हूँ आपको, हमें मालूम है, लेकिन इस तरह से आपसे बात करना नहीं होती है ना।
0: ओ हो मेरी जान, मतलब कि जिद ये है, प्रॉब्लम ये है कि गिन्नी से बात करनी है। लो जी, बात कर लीजिए जी, भर के बात कर लीजिए, मैं यहीं पे हूँ। आप ठीक हो?
1: पोती कहती है कि दादी दादी, गिनी शांति है? मैंने कहा नहीं, दूसरी आंटी है।
0: तो दूसरे आंटियों से बात करवा दिया करो ना, वो भी तो हमारे फैमिली मेंबर हैं।
1: तो वो आपसे कैसे राबिची है ना।
0: तो चलिए, मेरी तरफ से एक जादू की जप्पी उसके लिए आज, ठीक है?
1: यू बहू भी कहती है, क्या हुआ मम्मा? गिनीसा जी बात नहीं करती है,
0: बोलते है नहीं कुछ नहीं हुआ, वो यहीं पे है, बस दिन में आती है।
1: शायद इंडिया गई हुई है।
0: ओ, इंडिया में? इंडिया नहीं जी, हम इधर ही हैं। इंडिया क्यों जाऊंगी आप लोगों को छोड़ के, मैं इधर ही हूँ और इधर ही रहती हूँ, मेरा घर है, मेरी फैमिली है। एक्चुअली बहुत पता है, बहुत सारे लोग मुझसे एक्चुअली वो लोग सोचते हैं ना कि मैं इंडियन हूँ और चली जाऊंगी, नहीं, मैं एक मॉरिशन हूँ और यहीं पर रहूंगी और हमेशा आपका साथ दूंगी।
1: नहीं, हमने कहा कि आप छुट्टी मनाने गई।
0: अच्छा अच्छा, आपके मुँह में घी शक्कर जी, हम तो छुट्टियाँ मनाने जाएंगे, जरूर जाएंगे।
1: मुझे और जाऊंगी, आप जाती हो,
0: मैं और जाऊंगी।
1: अच्छी है, अच्छी अच्छी बात है। हम कभी भी इंडिया नहीं गए, लेकिन भगवान ने कहा,
0: चलो इंडिया से आपका इंडिया से आपका बुलावा जरूर आएगा और आप जरूर जाएंगे, फिर मेरे को बताना, ठीक है?
1: पता नहीं क्यों हमें अच्छा नहीं लगती है कि घूमने जाने के लिए, पता
0: आप
1: नहीं।
0: मन बनाओ ना, मन हो, हर चीज के लिए लाइफ में मन बनाना चाहिए। अगर मन हो, पता है, जिस चीज को आप मैनिफेस्ट करोगे लाइफ में वो ही आपको मिलेगा। मैनिफेस्ट नहीं करोगे, बैठ के बोलेंगे कि अरे मुझे अच्छा नहीं लगता है घूमना फिरना, तो क्यों जाओगे आप बाहर? तो बोलो ना, मुझे घूमना है, इंडिया देखना है, वहां पे केदारनाथ जाना है, हम यात्रा पे जाएंगे, पूजा पाठ, हाँ, ये सारी अच्छी अच्छी चीजें आप मैनिफेस्ट करो तो देखो ना, आप जरूर जाओगे।
1: जब हम जाएंगे तो पूजा के लिए ही जाएंगे और घूमेंगे थोड़ी।

0: कोर्स घूमेंगे फिरेंगे और पूजा भी करेंगे और क्या
1: मैं तुम्हारे लिए एक घर लूंगी, आप रहना।
0: नहीं तो आप जरूर, पता है मैं आपको एक बात बताऊं अनीता जी, लाइफ जो है ना बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, बहुत शॉर्ट है, बहुत छोटी सी लाइफ है। कल के इसने देखा, अगर आप इन सब चीज़ों के लिए मतलब अपना वक्त नहीं निकालोगे अभी, तो पता नहीं आगे जाके आप निकाल पाओगे या नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं बोलते हैं बाद में, लेकिन बाद में किसने देखा है? ठीक है, तो आप अपनी लाइफ को जी लो।
1: हमारी आंखों का ऑपरेशन हुई है तो हमने कहा उसके बाद जाएंगे, अब हो गया।
0: तो अब जाना जरूर, प्लान कर लो। ठीक है,
1: जाऊंगी।
0: चलिए बताइए अगला गाना किसके नाम?
1: सभी फ्रेंड एंड फैमिली आपके लिए, आपके सभी रेडियो मस्ती के लिए,
0: बिल्कुल जी।
1: आपको बों को आज हमें अच्छी लगी आपसे बात करने,
0: मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा। एंड आप शायद आप सोचेंगे हम मजाक कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से संडे को मैं फीका फ्लाक आई थी तो मैं आपके बारे में सोच रही थी।
1: हमें फोन करना, हमारे यहाँ आना।
0: चलो अगली बार जरूर मिलेंगे। ठीक है,
1: चलो,
0: थैंक यू एंड बोन कोराज एंड शुभ रात्रि टू यू माय डियर, एंड थैंक यू सो मच साथ देने के लिए। एंड चलिए जी, वी डू हैव अवर लवली लिसनर्स जो हैं, जैसे कि पृथ्वीराज जी के लिए, विजया जी के लिए, अर्जुन एंड अर्चना जी के लिए जो हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक यू सो मच जी। ये अगला गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे स्पेशली हमारे राधा जी के लिए जो एंजॉय कर रहे हैं वो खूबसूरत औसम गानों को। थैंक यू सो मच एंड आई एम सो ग्लैड गिनी यू आर हियर फॉर दिस इवनिंग लाउंज। यू आर मिस्ड इन द शो, आई नो आप लोग मुझे बहुत मिस करते हो, मैं भी बहुत मिस करती हूँ, लेकिन कभी कभार आ ही जाती हूँ। एंड चलिए जी, ये अगला गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे स्पेशली हस्बैंड रवि के लिए, थैंक यू सो मच, एंड दैट्स कमिंग फ्रॉम करेश। अभी थोड़ी देर पहले किसी ने इस गाने की मांग की थी, तो चलिए हम ज़रूर कोशिश करेंगे टू प्ले दैट फॉर द पर्सन। आई गेस इट वॉज वीडू आपने इस गाने की मांग की थी। हियर वी गो, लेट्स लिसन इट। वीडू जी, लेट्स ऑल लिसन टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग, और ये है आपके लिए खासकर। सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द सॉन्ग।

0: अड़ा है।
1: बिल्कुल जी, हर जुबां पे अभी भी अड़ा है। इतना बदनाम हुआ है और इतना बदनाम हुए हैं लोग इश्क में, फिर भी जाने क्यों जुबां पे अरा है। सच अ लवली ट्रैक, और हम डेडिकेट करना चाहेंगे ये गाना जस्ट टू सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ क्या नाम है, सू का बर्थडे है। तो चलिए जी, पिन की तरफ से हसलम एंड अभिषेक सभी के सभी हमारा साथ दे रहे हैं। सो विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड हियर वी गो टू ऑल दोस हु आर सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडेज, दिस वन गोज आउट टू यू।

0: Evening Lounge.
1: Evening Lounge.
2: RM2.
0: Radio Musti.
3: खूबसूरत रोमांटिक गानों का ये सिलसिला तो बस चलता ही रहेगा जी आपके और हमारे बीच में, और उम्मीद करते हैं दैट यू गाइस आर रियली लविंग इट एंड एंजॉयिंग इट। जी हाँ दोस्तों, जस्ट याद दिलाने के लिए द शोज लाइव ऑन टिकटॉक और ऑन टू रेडियो मसी। थैंक यू सो मच टू ऑल दोज जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, जैसे कि वी हैव अनुषा, गीता एंड जॉन, एंड वी हैव मालिनी जी एंड बक अली, आपका भी स्वागत है। अंशिका एंड दिव्यांका हमतोहल जी एंड निशा गोकुल, द नेक्स्ट वन गोज आउट टू यू। वी हैव अनुराधा जी एंड राशिदीन इमरान, आपका भी स्वागत है। सबीना, एक गाना हो जाए आपके बेटे के लिए जो एडमिटेड हैं एट अ क्लिनिक, सो गेट वेल सून बेटा। एंड थैंक यू, किसी का नाम है क्रिस्टियानो मेसी, वाओ ऑन टिकटॉक, काश कि मेसी हमारे लाइफ में आते तो कितना अच्छा होता। हाय स्कैन, हाउ आर यू हर्ष, आपका भी स्वागत है। कीर्ति चतू एंड वी डू हैव गीता, लवली सॉन्ग फॉर यू माय डियर। दीक्षा रामकिलावन, हाउ आर यू। ये अगला गाना प्रीति मौगा के लिए, राधा के लिए नमस्ते जी, एंड श्री के लिए, डीनू के लिए, मनीषा के लिए, एंड वी हैव बेलिंडा, वी हैव शरूना एंड चिंटू। हाय माई डार्लिंग चिंटू, मेरा नाम चिंटू, कैसे हो आप चिंटू जी। तो चलिए जी, बाकी जो हमारे लिसनर्स हमारा साथ दे रहे हैं ऑन RM2 रेडियो मस्ती, आपका भी स्वागत है, और थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग अस एज योर रेडियो पार्टनर। एंड वी डू हैव द नेक्स्ट वन स्पेशली फॉर बुबू रानी, श्वेता हुकुम ऑफ बोना कई, उनके हस्बैंड रोशन की तरफ से, एंड आप बस उनको इतना कहना चाहेंगे आई लव यू। देखा ये कितना करा दिया मैं डर गई एक्चुअली। नहीं कभी कभी यहाँ पे हमारे कलीग्स लोग आ जाते हैं ना मिलने के लिए, तो इसीलिए किसी ने डरा दिया, कोई बात नहीं। देखा हम भी डरते हैं, हम डर गए। चलिए जी, ये अगला गाना, लेट्स गेट बैक टू योर डेडिकेशन। आपने कहा है कि आप अपनी वाइफ को कहना चाहेंगे आई लव यू, दैट्स सो स्वीट। देखा कितना मैजिकल शो है, अगर बीवी बगल में भी बैठे हैं फिर भी हमें मैसेज करके बोल रहे हो कि आप अपनी बीवी को बोल रहे हो, मैं आपकी बीवी को बोल दूँ कि आप उनसे इतना प्यार करते हो। थैंक यू सो मच, वैसे भी आपके डेडिकेशंस ही हम उनके इंतज़ार करते हैं कि कब आप किसी को कहेंगे कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, मिस करते हैं। सो द नेक्स्ट वन गोज आउट टू वाइफ अनुष्का, लिटिल बेबी अंकिशा एंड हस्बैंड किशान ऑफ नोवेल फ्रांस, दोनों काम करते हैं मॉरिशस पुलिस, नो मॉरिशस पोस्ट लिमिटेड, सो ओके दोनों साथ में काम करते हैं, दैट्स सो गुड। और आपके सारे कलीग्स को भी अभी हेलो। तो चलिए जी, ये अगला गाना हमारी तरफ से उन तमाम सुनने वालों के नाम जो साथ दे रहे हैं ऑन RM2 रेडियो मस्ती 5499-1294 पर, सेंड मी योर डेडिकेशंस 4298-35 डायल कीजिए टू टॉक टू मी लाइव एंड डायरेक्ट ऑन
1: योर लिसनिंग टू रेडियो मस्ती।

I really hope that you guys are really loving and really appreciating this beautiful and mesmerizing गाने जो आपके लिए हम लेकर आए हैं on our way to Radio Masti. जी हाँ दोस्तों, 8:22 हो चुके हैं, हमारे प्यारे प्यारे listeners भी साथ दे रहे हैं और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी. We have so many people across the globe साथ दे रहे हैं जो बोलते हैं कि ये दूर होते हुए भी आप लोगों का साथ हमें मिलता है तो हमें ऐसा लगता है कि हम अपनों के साथ हैं, अपने देश के साथ हैं. और चलिए जी, खूबसूरत रोमांटिक गानों का ये जब सिलसिला चलता है तो बस मन करता है ना कि ये ना रुके और चलता ही रहे. एंड जस्ट रिमाइंड यू द शो इज लाइव ऑन टिकटॉक और एम टू रेडियो मसी एंड आई नीड योर डेडिकेशंस टू बी सेंट ऑन 5499129294 पर, 5499129294 पर. और चलिए जी, कहाँ रखें ये मोबाइल प्यारा सा जो हमारे लिसनर्स हमें देख सके ऑन टिकटॉक. चलिए हो गया, सेट हो गया. और फिलहाल के लिए ये अगला गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे स्पेशली फॉर समवन स्पेशल. और किसी ने बोला है कि प्रणाम, हैव अ ग्रेट इवनिंग एंड एंजॉयिंग लवली गाने गिनी एंड ट्रस्ट आर इनसेपरेबल एंड यू कैन नेवर हैव वन विदाउट द अदर. God bless you. Take care, my sweetheart. And I'm pretty much sure that's Gayatri ji. Ji haan, ye hai hamari pyari Gayatri ji. Hey, namaste ji, kaise ho aap? Enjoying beautiful list of songs jo aaj aap play kar rahe ho. Actually, kitchen mein hai, enjoy kar rahe hain. Garma garam chicken mein soup bana rahe hain. Rainy mausam hai, so it's a very nice dish for tonight. And agla gana, to wish bon courage and keep yourself warm in this cold weather. Actually, I'm playing some very good warm music for you and dedicating the next one aapke dost Ajay ke liye. Mama के लिए जो फोन जिसा के रहने वाली है फ्रॉम काजल जी टन जो रहती है लावांचा में. एंड चलिए जी, नमस्कार आपको भी. एंड ये अगला गाना जो है किसी के लिए जिन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, कोई बात नहीं. एंड वी डू हैव मौसम बहुत रोमांटिक है गिनी और मेरे लिए एक मेरी बीवी के लिए एक गाना हो जाए. बिल्कुल जी, वेरी गुड इवनिंग जी टू यू. एंड कमलदीप जी, आप एंजॉय कर रहे हो तो अच्छी बात है. वी डू हैव चिंटू जी, वी हैव राजेश जी, वी हैव द नेक्स्ट वन फॉर यू रुवेश, आपकी रुवीना एंड ब्रदर इन लॉ नितेश के लिए खुशी. एंड आपके लिए भी ये अगला गाना. एंड वी हैव लेश, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू यू माय डियर. और वो बोल रहे हैं कि गाने की मांग है, आप जल्दी से मांग लीजिए कौन सा गाना है. राजेश सौली का ये अगला गाना आपके लिए. एंड राजन जी, थैंक यू सो मच. द नेक्स्ट वन गोज़ आउट टू यू. एंड जमैका, ये आपका आपके लिए अगला गाना ऐसे. एंड अफीजा बोलते हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे हस्बैंड शैलेश के लिए भी, वो डेडिकेट करना चाहेंगे. पूजा फ्रॉम केबैक, एक अच्छा गाना हो जाए मेरी बेटी की आना के लिए. And she's having a lazy moment right now. Oh la la, kya baat hai. Hi Anil ji, hum sabhan jo saath de rahe hain. To chaliye ji, filhal ke liye badhte hain agle gaane ki aur jo hum dedicate karna chahenge un tamam sunne walon ke naam jo saath de rahe hain on our way to Radio Masti. To chaliye kabhi

कभी क्या होता है, एक मुस्कुराहट पूरा दिन खूबसूरत बना देती है किसी की, बस कोई मिल गया उनकी मुस्कुराहट देखी और हमारा पूरा दिन बन जाता है। और कभी कभी एक याद पूरी रात महका देती है, मानो या ना मानो। वैसे अगर आप भी किसी खास शख्स को याद कर रहे हो तो ये पल और ये गाना हम उनके नाम डेडिकेट करना चाहेंगे, और वो भी पूरे दिल से। रेडियो मस्ती के साथ मोहब्बत की मीठी सी महफिल जारी है विव मेगी निशा ऑन आवर इनटू रेडियो मस्ती। और किसी ने थोड़ी देर पहले अभी इस गाने की मांग की थी, तो चलिए जी ये गाना खासकर आपके लिए भी हम डेडिकेट करना चाहेंगे। 5499124 पर Send me your dedications. ये है अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में, taken from the movie Taal. Let's bring back some lovely souvenirs. क्या ख्याल है आपका?

बिल्कुल जी, हम तो फुल ऑन कोशिश करते हैं कि आप लोगों से ताल मिला के हम चले। वैसे आपके दिल के जो ताल हैं और तार हैं किससे जुड़ गई हैं, आप जरा हमें लिख के बताइएगा जरूर अपने मैसेजेस के जरिए 5499124 पर। और चलिए जी, अभी फिलहाल के लिए अगले गाने की तरफ हम बढ़ना चाहेंगे, विच इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल वन। जी हाँ, बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही है दोस्त, बहुत ही प्यारा सा मौसम है। जैसे शुरुआत में हमने कहा था कि ऐसे मौसम में प्यार जवां होता है, तो बिल्कुल जी, हर दिल में किसी की गरम सी याद, किसी को आप मिस कर रहे हो, बेइंतहा मोहब्बत करते हो आप उनसे, बेतहाशा मिस कर रहे हो उनको। वैसे अगर आपका भी दिल किसी के लिए धड़क रहा है तो रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा ही लीजिए, क्योंकि अगला नगमा जो हम पेश करने वाले हैं, आई बेट कि आप मुस्कुराएंगे, मुस्कुराते ही रहेंगे और उनको याद करते रहेंगे। ये है रेडियो मस्ती, जहां हर सुर एक कहानी कहता है और हर गाना किसी ना किसी से प्यार कर बैठा है, और प्यार करने वाले और भी प्यार में पड़ जाते हैं। किसी की आंखों में अपना जहान मिल जाए तो जिंदगी कितनी हसीन लगती है, शायद आपको भी अंदाजा नहीं है दोस्त। किसी को याद करते करते आंखें नम हो जाती हैं, तो शायद अंदाजा भी नहीं आपको कि आपके साथ क्या हो रहा है। इसी खूबसूरत एहसास के साथ पेश है एक और रोमांटिक मेलोडी सिर्फ आपके लिए ऑन आवर टू रेडियो मस्ती। सोनू निगम, श्रेया घोषल, नीरज श्रीधर की आवाजों में आराम से बैठ जाइए और लिसन टू दीज ब्यूटिफुल लिरिक्स।

शकियो टाइम जी हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:43 हो चुके हैं. टाइम तो बीता चला जा रहा है एंड ऑफ कोर्स आई हैव गॉट यू द बेस्ट सिलेक्शन टुनाइट. और कुछ ऐसे गिने चुने नक में जो बहुत सारे लोग फिलहाल जो हमें सुन रहे हैं दे कैन रियली फील सो कनेक्टेड. एक्चुअली अगर दिल में प्यार हो और आप का नीयत एकदम साफ हो तो ऑफ कोर्स यू विल रियली फील द मैजिक ऑफ लव टुनाइट दैट आई एम स्प्रेडिंग फॉर यू माय डियर लवली लवर्स आउट देयर जो साथ दे रहे हैं. तो चलिए फिलहाल के लिए लेट्स चेक आउट योर डेडिकेशंस एंड आई हैव गॉट द नेक्स्ट वन. किसी ने बोला है परदेसी परदेसी जाना नहीं, अभी हम नहीं जाएंगे मेरी जान. एक्चुअली आपकी बेटी भाविया के लिए और वाइफ प्रीति के लिए दैट्स कमिंग फ्रॉम विमल. विमल जी कोशिश करेंगे आई हैव गॉट योर ब्यूटीफुल प्लेलिस्ट अगर इसमें फिट होता है. ज़्यादा टाइम भी तो नहीं है ना मेरे पास, मैं कोशिश करूँगी टू प्ले दैट for you. DJ Davi San, you've been sending me a voice note jo abhi main nahi sun paungi, baad mein sunenge. Aur agla gana jo hai Buljo ke liye family jo plan de papa ke rehne wale hai. So you're enjoying the show and especially Anita Rakesh Siddhi ta and Nikesh ke liye, thank you so much ji. And Sita Balaram ji from Chateau Benares, of course the next one goes out to you aur aapke family ke naam. तो चलिए जी फिलहाल के लिए ये अर्ज किया है हम एक ऐसे गाने पेश करने वाले हैं जो बस पूरे दिलो दिमाग पे कब्जा करने वाले हैं हम आपके. तैयार हो जाइए डूब जाने के लिए इस खूबसूरत से, बहुत ही खूबसूरत से गाने में. वैसे ये अर्ज किया है कि तुम सिर्फ मेरी मोहब्बत नहीं, तुम सिर्फ मेरी मोहब्बत नहीं, मेरी दुआओं का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो. जब भी हम अपने रब से कुछ मांगते हैं तो सबसे पहले आप ही का जहन आता है. आपसे मिलकर ऐसा लगा जैसे जिंदगी को उसका मतलब मिल गया है. अब हर खुशी आपसे ही है, हर ख्वाब आपसे ही है और जो दिल की धड़कनों में बसा है वो नाम सिर्फ आपका ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है. और वैसे देखा जाए जिंदगी में हमें ना चांद चाहिए, ना चांद की तमन्ना हम रखते हैं, ना सितारों की ख्वाहिश.

0: मेरी हर दुआ में बस अगर आपका साथ मिल जाए वही हमारे लिए काफी है। मोहब्बत इतनी गहरी है आपसे कि अब खुद से ज्यादा मुझे ना आपकी फिक्र होने लगी है। आपके बारे में हम सोचते हैं तो दिल मचलने सा लग जाता है, और जब ओरिएंटल रेडियो मस्ती पर ऐसा एक गाने हम पेश करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये खासकर हमारे प्यार के लिए। इट्स बीइंग प्लेड ऑन रेडियो मस्ती। थैंक यू सो मच जी साथ देने के लिए। सिट बैक, क्लोज योर आईज एंड एंजॉय इट।
1: RM2 Radio Mastery.

तो चलिए जी, फिलहाल के लिए इट्स टाइम फॉर गणेश चतुर्थी से गुड बाय टू यू एंड आई रियली होप कि आपको हमारा साथ आज अच्छा लगा। आई वाज हियर विद यू यानी कि 4 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। तो बस यूं ही हमेशा रेडियो मस्ती का साथ देते रहना विद सम गुड म्यूजिक। और फिलहाल के लिए आई जस्ट वांट टू विश ऑल ऑफ यू टू हैव अ ग्रेट नाइट अहेड एंड अगर काम पे हो सुबह को हॉश टू यू ड्राइव करें सो ड्राइव केयरफुली एंड वेल अगर सोने की तैयारी है सो गुड नाइट टू यू स्वीटहार्ट। तो चलिए जी, टू ऑल दोस्त जिन्होंने हमारा साथ दिया ऑन आवर एंड टू रेडियो मस्ती लाइव ऑन टिकटॉक उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया और वो भी दिल से। तो चलिए फिलहाल के लिए आप हमें इजाजत दीजिए, शुभ रात्रि एंड बस ऐसे ही खूबसूरत खूबसूरत गानों का आप मजा लेते जाइए विद रेडियो मस्ती।

0: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
1: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
0: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।

0: RM2 रेडियो मस्ती लेट नाइट ग्रूव्स
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: नमस्कार और स्वागत आप सभी का RM2 पर लेट नाइट ग्रूव्स, और मैं विकास आपके साथ निभाने वाला हूँ साथ 9 PM से अभी से मतलब लगभग मिडनाइट तक। और ये गाने जो हैं वो सिलेक्ट कर लिए गए हैं बॉलीवुड के गाने, सुपरहिट गाने। और आपकी लाइफ में भी अगर कोई गाना थीम सॉन्ग बन सकता था तो उसके बारे में सोचिए, मुस्कुराइए और साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए।

0: Radio Musty.
1: Your life is not complete until you have a little musty in your life. Radio Musty. All the way. The latest news and the greatest mix of music. Radio Musty.
0: Radio Musty.
2: भाई ट्रैफिक खत्म, काम खत्म, लेकिन टेंशन क्या खत्म हुई कि नहीं? अरे क्या करते हैं साहब, आप इस टेंशन को घर लेकर आते हैं। इसका सलूशन क्या है? उसका यही कि आपने जितनी मेहनत करनी थी, जितनी कोशिश करनी

0: थी, जितना परिश्रम करना था वो किया, अब अगर यही रिजल्ट है तो उसको एक्सेप्ट करना आपको शांति दे सकता है, मन की शांति, ये बहुत जरूरी है। और अगर आप रिजल्ट से खुश नहीं है, कोशिश किए जा रहे हैं उसको बदलने की, अगर कुछ हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो लगे हुए हैं अपनी एनर्जी वेस्ट करने में, सोचिए सोचिए। इसे रिलैक्स होने का टाइम है, और आप उन गानों के बारे में सोचिए जिनमें फीलिंग बयां होती है, जज्बात पैदा होते हैं।
1: Late Night Grooves. RM2 Radio Musti.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: फील द मस्ती।
1: दोस्तों जिंदगी की रेस में हम सब भागते रहते हैं। आज रात सिर्फ 10 सेकंड के लिए थोड़ा रुक जाएं और थोड़ा सोचें कि इस हफ्ते की एक छोटी सी जीत क्या है। अगर ऐसा कुछ नहीं किया तो वक्त हो गया इस बारे में सोचने के लिए कि क्या हम हर दिन कुछ नया ट्राई करते हैं, कुछ ऐसा जो मन को शांति और सुकून देता है।
2: Late Night Grooves, RM2, Radio Musti।

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: your musty. Feel the musty.
1: Radio Musty.

0: You're listening to RM2, a Radio Masti.
1: ये रात उन लोगों के नाम है जो काम करते हुए, ड्राइव करते हुए या बस खिड़की के पास बैठकर म्यूजिक एंजॉय कर रहे हैं। आप जहां भी हैं, बॉलीवुड आपके साथ 24/7 RM2 पर लेट नाइट ग्रूव्स।
0: लेट नाइट ग्रूव्स
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: Radio Musti.
1: Your life is not complete until you have a little musty in your life. Radio Musti. All the way. The latest news and the greatest mix of music. Radio Musti.
0: Radio Musti.
2: कभी कभी थोड़ी सी फन एक्टिविटीज करनी जरूरी है, जैसे कि एक क्विक चैलेंज। अगला गाना शुरू होते ही उसका मुखड़ा गाकर देखिए। कभी आप इंतजार करते हैं कि अच्छा नहीं क्या है, नहीं गाना तो आता है लेकिन इतने सारे क्वेश्चन नहीं। कोई सुन रहा हो या ना हो, कॉन्फिडेंस फुल वॉल्यूम पे होना चाहिए। बॉलीवुड नाइट्स ऑल अबाउट लेटिंग गो एंड हैविंग फन, और क्या बेहतर। RM2 पर लेट नाइट ग्रूव्स।
0: लेट नाइट ग्रूव्स
1: RM2 रेडियो मस्ती।

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।

0: You're listening to RM2, a Radio Masti.
1: Welcome back, दोस्तों, और आज की रात का यही थॉट है कि लोग अक्सर परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते हैं, लेकिन कभी कभी एक अच्छा गाना ही परफेक्ट मोमेंट बना देता है, जैसे कि अभी RM2 पर। और अगर इस मोमेंट में आप खुश हो गए हैं, सारी टेंशन आउट हो गई है, तो फिर लगता है ना कि जिंदगी यही तो है, जिंदगी जी भर कर जीना।
0: लेट नाइट ग्रूव्स,
2: RM2, रेडियो मस्ती।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
3: अच्छा, बॉलीवुड मूवीज देखने के बाद एक सवाल तो पैदा होता है कि अगर हमारी जिंदगी पर एक बॉलीवुड मूवी बनती तो उसका जॉनर क्या होता? कॉमेडी, रोमांस या फुल ऑन एक्शन? सोचिए सोचिए। लेकिन जिंदगी ना कभी एक ही तरह की नहीं होती, इसमें सब कुछ है। इसमें रोमांस भी है, कॉमेडी भी है, फुल ऑन एक्शन भी है। तो चलिए अपनी मन घड़ंत कहानी बुनिए और अपना साउंड ट्रैक चुनिए।
0: लेट नाइट ग्रूव्स
1: RM2 Radio Musti

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: भाई रात गहरी हो रही है और यादें भी तो गहरी हो रही है ना। ऐसा लगता है शायद साथ में कहीं बैठ गई हैं, कोई पुराना दोस्त, कोई स्कूल का दिन, कोई स्पेशल मेमोरी। कौन सा गाना आपको उस वक्त में वापस ले जाता है, सोचिए सोचिए। अगर नहीं आया अभी तक तो हो सकता है आप नेक्स्ट।
1: लेट नाइट ग्रूव्स RM2 रेडियो मस्ती।

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: दोस्तों कभी कभी फोन साइड में रखकर सिर्फ म्यूजिक सुनना भी सेल्फ केयर होता है। ऐसा नहीं कि म्यूजिक चल रहा है, फोन आपके हाथ में और आप उसको स्क्रॉल किए जा रहे हैं। हाँ ठीक है, कभी कभी जरूरत होती कुछ करने की, लेकिन म्यूजिक को असली मायने में अगर एंजॉय करना है तो वातावरण ऐसा होना चाहिए जहाँ पर सब कुछ शांत हो और म्यूजिक जैसे एक जज्बात कानों से सीधा दिल में उतर रहा हो। बॉलीवुड की अपनी ट्यून, आप है हमारे सुपर हीरो, हमारे स्टार लिसनर्स, दिस वन फॉर यू।
2: लेट नाइट ग्रूव्स,
0: RM2 रेडियो मस्ती।

0: जो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: कभी वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
3: अच्छा, वक्त हो गया आपकी एनर्जी का लेवल चेक करने का भाई, क्योंकि अब मिड शो में आ चुके हैं। और अगर आप अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको बता दें कि स्माइल करने का वक्त है, म्यूजिकल होने का वक्त है। आपने आज का दिन कंप्लीट कर लिया है और उस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने का दिन है। अरे साहब, बॉलीवुड के गानों के साथ
2: लेट नाइट ग्रूव्स
1: RM2 रेडियो मस्ती।

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: ऑडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी की भागा दौड़ी में कभी कभी लगता है कि भैर जैसे थोड़े से थक गए हैं। वैसे क्योंकि एक्साइटमेंट नहीं है, वो क्यूरोसिटी नहीं है, एक एक जज्बा जुनून होना जरूरी है। अरे साहब, अगर आप अपना कुछ काम करते हैं और उसमें इतनी ही मेहनत करते हैं लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं है तो फिर वो काम बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं, इसलिए क्यों ना हम जो भी करते हैं उसमें अपना फुल ऑन दें 100%। जैसे आपके लिए म्यूजिक वॉल्यूम बढ़ाइए 100%।
0: लेट नाइट ग्रूव्स
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: Radio Musty.
1: Your life is not complete until you have a little musty in your life. Radio Musty. All the way. The latest news and the greatest mix of music. Radio Musty.
0: Radio Musty.
2: रात के समय में दिल की आवाज़ थोड़ी ज़्यादा क्लियर सुनाई देती है। अगर कल सुबह आप एक नई हैबिट शुरू कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं। इसके बारे में हो सकता है आप कुछ पता लगाएं। आजकल तो इंटरनेट पर जाने क्या क्या, लेकिन हाँ, आपको अपनी चॉइस, अपनी पर्सनल लाइकिंग के हिसाब से चूज़ करनी होगी कि कल वो क्या है जो कुछ नया कर सकते हैं पहली बारी के लिए। उससे एक्साइटमेंट पैदा होगी और हो सकता है कि आप उसमें किसी और को भी इन्वॉल्व करें। एक टीम वर्क, डबल सेलिब्रेशन, क्यों नहीं।
0: Late night grooves.
1: RM2 Radio Musty.

0: मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: ऑडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: भाई बॉलीवुड की बात करें तो इसमें प्यार है, दोस्ती है, सपने हैं, उम्मीद है, सब कुछ। बस यही है कि हमारी बॉलीवुड की कहानी कौन सी होगी, ये सोचिए। भाई आज का सवाल तो यही है कि कौन सी बॉलीवुड लाइन या डायलॉग आपको हमेशा मोटिवेट करता है। सोचिए सोचिए, अपने आप से बोलिए और यही तरीका सही है अगर अपने आप को मोटिवेट करना है, क्यों नहीं।
2: Late Night Grooves. RM2 Radio Musti.

0: You're listening to RM2, a Radio Masti.
1: भाई जैसे जैसे घड़ी मिडनाइट की तरफ बढ़ रही है वैसे वैसे हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक से बढ़कर एक गाने, कुछ अलग स्टाइल के, हमेशा चेंज होते हुए। तो चाहे आप नाइट शिफ्ट में हो या बेड टाइम मोड में, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे स्माइलिंग, क्योंकि जिंदगी की जो क्लॉक है ना, वो तभी आगे बढ़ती है जब उसमें एनर्जी हो प्यार की, इश्क की और मोहब्बत की।
0: लेट नाइट ग्रूव्स,
2: RM2, रेडियो मस्ती।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: कभी वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
3: भाई आज की जो रात है वो खत्म होने से पहले एक प्रॉमिस खुद से कीजिए, कल का दिन थोड़ा और पॉजिटिव, थोड़ा और काइंड और थोड़ा और म्यूजिकल बनाएंगे। तब तक बॉलीवुड के साथ ये खूबसूरत सफर जारी रहेगा। गुड वाइब्स ओनली RM2 पर लेट नाइट ग्रूव्स, और कल सुबह एक बार फिर से मुलाकात होती है। टिल देन यू टेक केयर, गुड नाइट एंड जल्दी मिलते हैं।
0: लेट नाइट ग्रूव्स
1: RM2 रेडियो मस्ती।

0: RM2
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
1: RM2 Radio Musti.

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है। ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: You're listening to RM2, a Radio Masti.

स्टेशन तेरे मेरे दो दिलों की मंजिल तो है लव स्टेशन। सबसे पहले आई हूँ करने दिल का रिजर्वेशन, तू जो चाहे ले ले मेरे दिल का एग्जामिनेशन।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।